2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 17वीं तिथि। तदनुसार 7 मई सन

हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजे हैं। अब आप हिंदी समाचार सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। समाचार के तुरंत बाद हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ तत्व, चिकित्सा उत्पाद, विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
1: हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है।

सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से 40 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए देशव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत करेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और NDA के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और JDU के 14 विधायकों के मंत्री पद के शपथ लेने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये है विविध भारती।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

वंदनवार कार्यक्रम में पहले सुनिए आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, संसार को सुंदर बनाने के दो ही औजार हैं, शब्द और विचार। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति संगीत।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा में सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ। 6:35 से आज सुनिए भाग 181। सुबह 6:45 पर संगीत सरिता में श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुनवाई जाएंगी। आज सुनिए इस श्रृंखला का 5वां भाग। कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, गायन सहभाग अनुजा जोकरकर, तबला यति भागवत, हारमोनियम ज्ञानेश्वर सोनवनी। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप आज शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। 7 गूंजेगी सदा भूले बिसरे गीत की और 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम है राही प्यार के। 8 समाचार प्रभात होगा और 8:15 पर आप सुनेंगे त्रिवेणी। त्रिवेणी का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 2:00 से। चित्रलोक कार्यक्रम होगा सुबह 8:30 से।

9:30 पर सुबह और रात 9:30 पर सुनिए आज के फनकार जो केंद्रित है गीतकार संगीतकार प्रेम धवन पर। 10 बजे पिटारा में आज के मेहमान कार्यक्रम होगा और 11 बजे से सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग। 12 बजे समाचार सुनिएगा। 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी और 1 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। 2:15 पर आप समाचार सुनेंगे और 2:30 से गुनगुनाइए विविध भारती के साथ सदाबहार नगमे। 3 बजे सखी सहेली कार्यक्रम होगा और 4 बजे सुनिए हेलो फरमाइश। 5:30 पर कार्यक्रम सुनिए तराने नए पुराने। 6 बजे हिंदी में समाचार और 6:35 से सुनिए कार्यक्रम संध्या रंजन।

7 बजे जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इंजमिलिय कार्यक्रम में सुनिए गिटारिस्ट अनिकेत गुंडेवार से जयंत पात्रिका की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले। रात 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी मंगल में जंगल। लेखक हैं राजकुमार दाग और निर्देशक हैं दीनानाथ। 8:15 पर कार्यक्रम सुनिए चित्रलोक। 9 बजे कार्यक्रम होगा आपके लिए और रात 10 बजे सुनिए छाया गीत। 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात और 11 बजे कार्यक्रम होगा रंग तरंग। झरोखा में आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

शोक संताप और ग्लानि के सागर में डूबते उतराते सुमंत्र ने सारा दिन अयोध्या नगरी के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर बिताया। जब शाम का अंधकार घिरने लगा तो उन्होंने नगर में प्रवेश किया। महामंत्री का अकेले वापस आना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल प्रेतों के निवास स्थल जैसे लगने लगे। सुमंत्र को मौन तथा व्याकुल देखकर रानी कौशल्या उन्हें अपने महल में लिवा ले गईं। वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। आभूषण रहित मलिन राजा दशरथ धरती पर पड़े हैं। वाणी के नाम पर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी मात्र यही शब्द सुनाई पड़ते हैं। सुमंत्र ने जय जीव कहकर प्रणाम किया तो राजा ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 181।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को ममता सिंह का नमस्कार। कल्पना जी, विविध भारती के स्टूडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: अलग अलग महिला बंदिशकारों की रचनाओं के स्वरूप अलग अलग होते हैं, तो उनके बारे में बताइए और उनकी विविधता के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हर कलाकार का घराना, उसकी तालीम, उसकी सोच, उसकी बुद्धिमत्ता, ये सब उसकी गायकी से झलकता है।
1: जी,
2: वैसे ही रचनाकार जब कोई बंदिश बनाता है या महिला जो भी बंदिश बनाने की सोचती है या उसके मन में जब कुछ आता है कि मुझे ये जो पारंपरिक बंदिशें हैं इससे मैं कुछ अलग कहना चाहती हूँ,
1: जी जी,
2: तब

0: उसके मन के भाव और उस समय की जो शब्दों की जो बुनावट उसके मन में आती है उसके हिसाब से वो रचना बन जाती है
1: जी।
0: और कई रागों में ऐसा हमें महसूस होता है कि हम जो चाहते हैं वो रस भाव उसमें नहीं मिल रहा है
1: जी जी,
0: या हमको कुछ कम समय के लिए बंदिश प्रस्तुत करना है, और जब विलंबित ख्याल बहुत बड़े बड़े हैं
1: जी,
0: उतना समय हम नहीं उसके साथ बांट सकते, तब हमें ये विचार आता है मन में कि हमें उस समय के और उस प्रसंग के अनुसार हम जो बंदिश के द्वारा अपनी कला प्रस्तुत करना चाहते वो मुझे प्रॉपर मिल नहीं रही है, तो हम वो बंदिश को बनाने की कोशिश हैं। करते हैं और अच्छी बन जाती है
1: जी।
0: तो उस बंदिश में जो भाव आते वो तो उनको जो तालीम मिली है गुरु से और उनके घराने की जो बातें वो तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा हर कलाकार अपने से दूसरे घरानों के बड़े बड़े कलाकारों को भी सुनते आते हैं
1: जी।
0: और जो श्रवण विद्या हम लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी मानी जाती है संगीत के क्षेत्र में, तो हमने कई अलग अलग कलाकारों को सुना रहता है, उनकी कुछ अच्छी बातें भी हमारे गायकी में आ ही जाती है
1: जी जी,
0: झलकती हैं, तो वो सब मिलाकर हम चाहते हैं कुछ अलग तालों में बंदिश बन जाए या कुछ प्रसंग के अनुसार उसमें रस भाव की निर्मिति होती हो उस समय के हिसाब से बंदिश, तो ऐसे हर कलाकार के मन में उस समय के भाव उस राग की जो आवश्यकता है
1: जी,
0: उसके अनुरूप बंदिशें बनती जाती है।
1: बिल्कुल, और चुनौतियां निश्चित रूप से रही होंगी क्योंकि महिलाओं के लिए आज भी हर क्षेत्र में चुनौती रही है, तो शास्त्रीय संगीत में चुनौती होना वाजिब है। तो आज किन महिला रचनाकार की चर्चा करेंगी आज की इस कड़ी में?
0: आज हम बात करेंगे डॉक्टर अलका देव मारुलकर जी के बंदिशों के बारे में
1: जी।
0: बहुत सारी उन्होंने बंदिशें बनाई हैं और उन्होंने संगीत की शिक्षा अपने पिता पंडित राजा भाऊ देव जी से प्राप्त की एवं ग्वालियर किराना जयपुर घराने की गायकी की छाप उनके गायकी में दिखाई देती, और उन्होंने उपशास्त्रीय संगीत के भी बहुत से प्रकारों को रचना बनाई है उन्होंने, और बहुत अच्छे से मनन चिंतन करके विचार पूर्वक गहन अध्ययन करके अपनी गायकी को उन्होंने समृद्ध किया है
1: जी।
0: तो ऐसी कलाकार हैं डॉक्टर अलका देव मारुलकर जी
1: जी। तो उनकी रचनाओं में क्या कुछ विशेष मिलता है कि भक्ति भाव या विरह प्रेम, ऐसा कोई विशेष रस होता है उनकी रचनाओं में?
0: हर राग की बंदिश में अलग अलग रूप दिखाई देते हैं
1: जी।
0: उस राग की प्रकृति
1: कैसी,
0: उस समय रचना बनाते समय के भाव और मनस्थिति जो होती
1: कैसी
0: है
1: थी?
0: वो फिर साहित्य अपने आप जो शब्द हमारे मन की भावनाओं को प्रकट करते
1: जी।
0: तो ऐसे करके वो बंदिश का स्वरूप बन जाता
1: बदल जाता है
0: जी
1: जी। तो अब डॉक्टर अलका देव मारुलकर की कौन सी बंदिश आप इस समय प्रस्तुत करेंगे?
0: उनकी बनाई हुई बंदिशों में से मैं विभास राग में
1: राग विभास जी
0: उनकी बनाई हुई बंदिश को प्रस्तुत करती हूँ।
1: किस थाट पर आधारित है ये राग?
0: भैरव थाट का प्रातःकालीन राग है
1: जी जी,
0: और इसमें मध्यम निषाद वर्जित है
1: जी,
0: ऋषभ धैवत कोमल है
1: जी,
0: तो अर्थात ही इसकी जाति औड़ो औड़ो है
1: जी,
0: वादी स्वर इसका धैवत एवं संवादी ऋषभ है, शांत एवं गंभीर प्रकृति का ये राग
1: है।
0: बहुत सुंदर राग है, भक्ति भाव को प्रकट करता है
1: जी।
0: तो इस राग का मैं थोड़ा चलन बताती हूँ
1: जी। स्वागत है।

0: वाह, बहुत सुंदर, विलंबित गति में निबद्ध थी ये रचना
1: जी, जी।
0: और मंत्रमुग्ध कर दिया आपने कल्पना जी,
1: जी
0: सचमुच
1: जी।
0: आपने कहा था कि ये शांत और गंभीर प्रकृति
1: जी,
0: का
1: जी।
0: राग है, राग विभास, तो सच में ये बंदिश सुनते हुए हम जैसे एकांत में चले गए जहाँ पर बिल्कुल शांति मिलती, असीम शांति। तो अब इस शांति से हम बाहर आकर फिर आपसे जानना चाह रहे हैं कि अब कौन सी बंदिश प्रस्तुत करेंगी आप।
1: अब अलका जी का गाया हुआ राग भैरव बहार, उसमें एक विलंबित तीन ताल की बंदिश सुनाते हैं, सरस सुगंध
0: जी, सुनते हैं।

0: आज की इस कड़ी में डॉक्टर अलका देव मारुलकर की चर्चा थी और उनकी गाई बंदिश हमने सुनवाई अपने श्रोताओं को। तो अब इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं, अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: महिला रचनाकारों की बंदिशें, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

सुप्रभात। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज गीतकार संगीतकार प्रेम धवन की याद का दिन है, तो आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में उनके लिखे और संगीतबद्ध किए कुछ गाने सुनवा रहे हैं।

शरदचंद चट्टोपाध्याय के बंगला उपन्यास बिराज बहू पर इसी नाम से फिल्म बनी बिराज बहू का ये गीत अभी आपने सुना। श्यामल मित्रा और लता मंगेशकर की आवाज़ों में सलील चौधरी का संगीत था और प्रेम धवन के बोल। समय के बदलाव को बड़ी खूबसूरती से दर्शाया है इस गीत में। गाती बहारों के संग आओ गीत गा लें। अब सुनते हैं ये गाना।

फिल्म शेर खान का गाना आपने सुना आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। एस एन त्रिपाठी के बोल थे और प्रेम धवन का संगीत था। एस एन त्रिपाठी की शब्द रचना में सुरों का सुंदर संयोजन रचा है प्रेम धवन ने। अब जो अगला गाना सुनवा रहे हैं वो दारा सिंह फिल्म से है, शमशाद बेगम की आवाज़ में। हंसराज बहल के बोल हैं, प्रेम धवन का संगीत।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं किसान और भगवान फिल्म का गाना मन्ना डे की आवाज़ में। प्रदीप के बोल हैं और धुन बनाई है प्रेम धवन ने।

पूरा हुआ अंतराल हम फिर हाजिर हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में, और आज हम याद कर रहे हैं गीतकार संगीतकार प्रेम धवन की फिल्मों के गीतों के साथ उन्हें। सुनते हैं एक साल फिल्म का ये गाना हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। शब्द रचना प्रेम धवन की है और धुन बनाई है रवि ने।

आप सुन रहे थे एक साल फिल्म का गाना, रवि का संगीत था और अब अनिल बिस्वास का संगीत। शब्द रचना प्रेम धवन की, मोती की तरह शब्दों को पिरोने वाले इस गीत में आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। फिल्म का नाम है लाजवाब।

हृदय की पीड़ा हो या मन के मखमली एहसास, प्रेम धवन की कलम का जादू बांध लेता है। सुनते हैं एक था अली बाबा फिल्म का ये गाना। आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में प्रेम धवन के बोल हैं, हंसराज बहल का संगीत।

गीतकार प्रेम धवन और संगीतकार रवि ने बड़ा जादुई संगीत संसार रचा है। वचन फिल्म के इस गाने को सुनवा रहे हैं, जिसे गाया है आशा भोसले ने, संगीत रवि का।

श्रोताओं, अभी आप विविध भारती का प्रसारण सुन रहे थे, जिसे हम अपने आकाशवाणी सासाराम केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

श्रोताओं नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। ज्ञान मनोरंजन और खबरों से ओतप्रोत आज के इस नए अंक में मैं रागिनी एक बार फिर उपस्थित हूँ। तो चलिए कार्यक्रम का आज भी आगाज करते हैं सुविचार से। भारत के महान विद्वान, उपन्यासकार, निबंधकार, गीतकार और नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जो कुछ हमारा है वो हम तक तभी पहुंचता है जब हम उसे ग्रहण करने के लिए अपने भीतर क्षमता विकसित करते हैं।

अब आइए डालते हैं नज़र 7 मई की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं पर। श्रोताओं, 7 मई 1861 को महान कवि, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता, साथ ही भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ। 7 मई को 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन के आविष्कार का पेटेंट मिला। 1907 में 7 मई को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को ब्रिटिश हुकूमत ने पहली बार गिरफ्तार किया। 1940 में आज ही के दिन विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 1973 में आज ही के दिन 7 मई को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की आधारशिला रखी गई। और श्रोताओं, आज ही का वो दिन है 7 मई, जी हाँ, जब ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा किया गया था और आज उसका एक वर्ष पूरा हो रहा है। और थोड़ी सी जानकारी 7 मई को जन्मे प्रमुख व्यक्ति पर, तो बता दें आपको कि 7 मई 1910 को प्रसिद्ध गायक और रविंद्र संगीत के उस्ताद शांति देव घोष का भी जन्म हुआ। 7 मई 1912 को प्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार पन्नालाल पटेल का भी जन्म हुआ। अगर बात करें 7 मई को दिवंगत हुए कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में, तो आपको बता देते हैं कि भारतीय गुरु परमहंस योगानंद का देहावसान 1952 में आज ही के दिन हो गया। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार प्रेम धवन का निधन भी 2001 में आज ही हो गया। मशहूर संगीतकार वनराज भाटिया का निधन 2021 में आज ही के दिन हुआ था। श्रोताओं, हर साल 7 मई को युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। तो ये था 7 मई का इतिहास। और अब चलिए कार्यक्रम में सुनते हैं एक भक्ति रचना। मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ ये भजन है, संगीत सचेत परंपरा का है, आवाज़ें सचेत टंजन के साथ परंपरा टंजन की, तो सचेत और परंपरा की खूबसूरत आवाज़ से सजा हुआ ये भक्ति गीत आदि पुरुष फिल्म से लीजिए, सुनिए।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: और अब आइए लेते हैं गतिविधियों के बारे में थोड़ी जानकारी। जी हाँ, स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ क्या रहीं आपको बताते हैं कल के बारे में। तो रोहतास जिला में चल रहे जनगणना कार्य का कल पदाधिकारियों द्वारा किया गया निरीक्षण। अभी जनगणना का पहला चरण चल रहा है, जिसके तहत प्रगणक घर घर जाकर मकान सूचीकरण का कार्य कर रहे हैं। रोहतास जिला के संझौली प्रखंड में आगामी 19 मई समस्याओं का निष्पादन सहयोग शिविर में किया जाएगा। जी हां, बिहार सरकार की नई जनहितकारी पहल सहयोग शिविर को लेकर संझौली प्रखंड में तैयारियां जोरों पर हैं और इसके लिए कल SDM की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में इस पर विचार किया गया कि आगामी 19 मई को समस्याओं का निष्पादन किया जाएगा। बिहार सरकार का यह एक अनोखी पहल है सहयोग शिविर, जिसका मकसद है आम नागरिकों की समस्याओं का घर के द्वार पर ही त्वरित समाधान उपलब्ध कराना। इस सहयोग शिविर का उद्देश्य है कि जन शिकायतों का तुरंत निपटारा हो, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, प्रमाण पत्र, जाति, आय, निवास बने, राजस्व एवं जमीन संबंधी समस्याओं का समाधान ऑनलाइन सेवाओं में भी मदद दिया जाए। बढ़ती गर्मी और उमस के बीच चमकी रोग को लेकर रोहतास जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर रोहतास जिले में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और कल भी चलाया गया, और बच्चों को इस बीमारी से सुरक्षित रखने के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। रोहतास जिला सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन ने बताया कि अत्यधिक गर्मी और नमी के मौसम में चमकी बुखार का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सभी अभिभावकों को कहा गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए, विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर में झटके या बेहोशी जैसे लक्षण अगर बच्चों में दिखाई देते हैं तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही लक्षण दिखते ही आशा कार्यकर्ता को सूचित करना है, तुरंत 102 इस पर कॉल करके एम्बुलेंस या वाहन की उपलब्धता

के लिए कॉल करना है और बच्चे को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाना है। समय पर इलाज मिलने से चमकी बीमारी से बचाव संभव है। श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको कहा कि 7 मई को आज विश्व एथलेटिक्स दिवस है और इसी के मद्देनज़र आगामी 15 मई से रोहतास जिला में डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स मीट का किया जा रहा है आयोजन। जी हां, एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स मीट 2026 का आयोजन 15 मई से 17 मई तक रोहतास जिला मुख्यालय के सासाराम में किया जाएगा। इस बात की जानकारी संघ के सचिव ने देते हुए बताया कि प्रतियोगिता में रोहतास जिले के अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 एवं ओपन वर्ग के बालक बालिका खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। उन्होंने बताया है कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों का निबंधन अनिवार्य है और निबंधन शुरू हो चुका है। निबंधन की अंतिम तिथि 13 मई निर्धारित की गई है। निबंधन शुल्क मात्र 100 रुपये प्रति खिलाड़ी रखा गया है। प्रतिभागी एक आयु वर्ग में अधिकतम 2 स्पर्धाओं में हिस्सा ले सकेंगे। कल बुधवार को रोहतास जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न बैठक हुई और यह निर्णय लिया गया है।

रोहतास जिला में नोखा प्रखंड मुख्यालय में सहयोग शिविर का कल DGC ने किया समीक्षा। अब प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को अलग अलग पंचायतों में लगेंगे शिविर। कैमूर शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन सख्त। जी हां, जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में नो एंट्री और वन वे नियमों पर कल भभुआ जिला में किया गया बैठक और कल दिनांक 6 मई 2026 को अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ की अध्यक्षता में शहर में बढ़ते जाम की समस्या से निजात दिलाने और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से समीक्षा बैठक की गई। भारी वाहनों के प्रवेश के लिए निर्धारित नो एंट्री समय सीमा का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों पर भारी जुर्माना लगाने की बात कही गई है। भभुआ शहर के सक्रिय और व्यस्त बाजारों में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए कुछ मार्गों को वन वे घोषित करने पर सहमति बनी है। इससे पीक आवर्स के दौरान लगने वाले जाम से आम जनता को राहत मिलेगी। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और पुलिस बल को सड़कों के किनारे अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वाहनों की आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। शहर के मुख्य चौराहों और अत्यधिक भीड़भाड़ वाली सड़कों को नो वेंडिंग जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों में सड़क किनारे ठेले, खोमचे या किसी भी प्रकार की अस्थायी दुकान लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शहर के भीतर बेतरतीब खड़े होने वाले ई रिक्शा और ऑटो के लिए विशिष्ट पड़ाव चिन्हित करने पर भी कल चर्चा हुई। DTO भभुआ को रूट चार्ट और परमिट की जांच तेज करने का कैमूर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद भभुआ को शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में पार्किंग स्थल विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शहर की सड़कों पर सुगम यातायात सुनिश्चित करना जिला की प्राथमिकता है। आम नागरिकों से जिला पदाधिकारी ने अपील किया है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करें और वन वे व नो एंट्री के नियमों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ ने स्पष्ट किया है कि मुख्य चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जाएगी और CCTV कैमरे के माध्यम से यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर नजर रखी जाएगी।

वाहन 10:30 पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार रोहतास के तत्वाधान में रोहतास जिला के व्यवहार न्यायालय सासाराम तथा इसके अनुमंडल विक्रमगंज एवं टिहरी ऑन सोन के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित है और इसमें निम्न बातें रखी गई हैं। जी हां, आपराधिक समझौता योग्य अपराध, प्ली बार्गेन, पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत आने वाले मामले, बैंक वसूली मामले, वित्तीय मामले, उत्तराधिकार के मामले, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मामले, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत यातायात चालान जिनमें वर्चुअल कोर्ट ई चालान शामिल हैं, वेतन भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सेवा मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, राजस्व मामले, बिजली बिलों से संबंधित विवाद, जल बिलों से संबंधित विवाद, टेलीफोन बिलों से संबंधित विवाद, स्थानीय लोक अदालत मामले, वैवाहिक विवाद, तलाक के मामलों को छोड़कर। संस्था में कार्यवाही से पहले न्यायालय द्वारा संदर्भित पारिवारिक विवाद जैसे FIR से पहले मध्यस्थता, वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम वगैरह, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 और वाणिज्यिक न्यायालय नियम 2018 के तहत वाणिज्यिक मामलों में पूर्व संस्थागत मुकदमेबाजी, मध्यस्थता मामले, उपभोक्तावाद के मामले, दीवानी मामले जैसे मूल मुकदमे, समझौता संबंधी मामले, उत्तराधिकार संबंधी मामले वगैरह और मध्यस्थता या समझौता के लिए उपयुक्त अन्य मामले, तो इनसे संबंधित मामले जो हैं वो 9 मई को वाधिकारीगण उक्त तिथि व समय पर अपने नज़दीक के व्यवहार न्यायालय प्रांगण में उपस्थित होकर अपने मुकदमों का निस्तारण समझौते के आधार पर कराने का सुअवसर प्राप्त कर सकते हैं। इस 9 मई को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी भी प्रकार का न्याय शुल्क देय नहीं है।

और एक और गतिविधि पर डालते हैं नज़र। जी हां, रोहतास और कैमूर जिला में हमारा बच्चा हमारी जिम्मेदारी थीम पर 9 मई को होगी संगोष्ठी। जिले की सभी प्रारंभिक विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में अभिभावकों को शिक्षकों द्वारा अवगत कराया जाएगा कि बच्चों के अधिगम व विकास प्रक्रिया में विद्यालय और अभिभावक दोनों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। साथ ही बच्चों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने व घर पर पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने को लेकर भी अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। और श्रोताओं, इसी के साथ हवाई कार्यक्रम में सुन लेते हैं एक गीत। सुनवाने जा रहे हैं आपको श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की युगल आवाज में प्रसून जोशी का लिखा हुआ ये खूबसूरत गीत, जिसकी धुन बनाई शंकर एहसान लॉय ने और फिल्म है आरक्षण।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: इस विज्ञापन के बाद नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब चलिए डालते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों पर नज़र। हिंदुस्तान अखबार लिखता है कि गांधी मैदान में राज्यपाल दिलाएंगे आज मंत्रियों को शपथ, अधिकतम 30 चेहरे हो सकते हैं शामिल। जी हां, बिहार में आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा और राज्यपाल सभी मंत्रियों को दिलाएंगे आज शपथ। हिंदुस्तान अखबार ने अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा है कि आज ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हो रहा है। इस अवसर पर सेनाओं ने अपनी ताकत और तकनीक बढ़ाने के लिए कुछ सौदेबाजी की है। जी हाँ, चीन की तर्ज पर रॉकेट फोर्स नियर स्पेस कमान बनाने की तैयारी की गई है। वायुसेना के लिए 114 और राफेल विमान खरीदने के सौदे पर आज मुहर लगेगी और 380 इंफ्रो बटालियन में अर्नी प्लांट 2 सैनिक तैनात किए जाएंगे। दैनिक भास्कर लिखता है कि सम्राट कैबिनेट का आज बिहार में होगा विस्तार, निशांत सहित 27 मंत्री ले सकते हैं शपथ। बिहार में मंत्रियों की संख्या 3 से 30 हो जाएगी। मंत्रियों में ज़्यादातर पुराने चेहरे ही, भाजपा से 12, जदयू से 11, लोजपा से 2, हम व रालोमो से 1-1 मंत्री शपथ लेने की बात सामने आई है। मंत्रियों की 6 सीटें खाली रखी जा सकती हैं। दैनिक भास्कर लिखता है कि बिहार की सड़कों पर अब AI से नज़र, 4,750 करोड़ रुपए से शहर बनेंगे अब स्मार्ट। रक्सौल हवाई अड्डे के नौ

निर्माण का टेंडर हुआ जारी, व्यापार, पर्यटन व कनेक्टिविटी को मिलेगी गति। प्रभात खबर ने अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा है कि अगले 48 घंटों में बिहार में आंधी, बारिश और ठनका गिरने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 4 डिग्री तक गिरने की संभावना है। दैनिक जागरण लिखता है कि विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से के 7.8 मीटर पीछे से बेली ब्रिज बनाएगा BRO। और दैनिक जागरण ने यह भी लिखा है कि बंगाल में 8 मई को यानी कि कल भाजपा विधायक दल की बैठक होगी और 9 को शपथ ग्रहण होने की संभावना है।

0: और श्रोताओं, चलिए खेल की तरफ चलते हैं। और आपको बता दें कि आज 7 मई को आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। और अब चलते चलते लेते हैं मौसम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो मौसम विभाग से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब इसी के साथ रागिनी आप सभी से चाहती है अनुमति, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अमित कुमार।
1: राजा रोहित का किलाए बतलाए इतिहास।
0: श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की गोली मारकर हत्या। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। और अब समाचार विस्तार से। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है और वो फिलहाल चेन्नई में है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में नई पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करती है और वो न तो दोबारा चुनाव चाहते हैं और न ही किसी प्रकार का संवैधानिक संकट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेगी। स्टालिन ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि डीएमके अगली सरकार बनाने के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम AIADMK से बातचीत कर रही है। पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता

0: के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविंद्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कल राज्य सचिवालय नावन्न में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह की तैयारियों और चुनाव बाद हिंसा रोकने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी सुनील बंसल, पार्टी नेता सौमित्र खान और ज्योतिमर सिंह महतो भी मौजूद रहे। शमिक भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक कल अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेंगे। शनिवार सुबह 10 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं, तब भी समारोह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये 2 दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIEC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

0: जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन हमलों में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया कि घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इस बीच उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय को भी गोली मारी गई। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारियों के निजी सहायक की हत्या की कड़ी निंदा की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान आज मुंबई में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति लाम मुंबई में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे।
1: वियतनाम के अध्यक्ष तो लाम का मुंबई का एक दिवसीय दौरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शुरू होगा, जिसमें अध्यक्ष लाम द्वारा रिंग द बेल सेरेमनी भी शामिल है। इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। बाद में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ भारत वियतनाम व्यापार मंच में भाग लेंगे। इस मंच का आयोजन CII द्वारा और वियतनाम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जा रहा है। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम लोकभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, मुंबई।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास, सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
2: We have a deep and trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता गहरा और भरोसेमंद है, क्योंकि यह लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव की नींव पर टिका है। भारत इस बात की सराहना करता है कि सुरीनाम आज अपनी विकास यात्रा में बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
2: In its developmental journey.
0: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग नई प्रक्रियाओं के तहत संभव है। हालांकि उसने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है, जिसने जारी अमेरिका नाकाबंदी की अवहेलना करते हुए एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का प्रयास किया था। लेबनान में इजरायली सेना ने बेरूत में एक लक्ष्य पर हमला किया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह हिजबुल्ला के कुलीन रादवान बल से जुड़ा हुआ था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि व्यक्ति इजरायली सैनिकों और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए इजरायली ठिकानों पर हमले और इजरायली बलों के हताहत होने की सूचना दी है। ये घटनाक्रम नाजुक सुरक्षा वातावरण को रेखांकित करते हैं, जबकि वार्ता जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा है कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में आज हम प्रख्यात लेखिका शिव शंकरी से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: I was a Sanskrit student. I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar. My becoming a writer, the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to know that language, to know the habits, the rituals.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका और त्रिनिदाद तथा टोबैगो जैसे देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स

0: को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: फरहत पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे होने पर आज सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शौर्य का 1 वर्ष, जल थल नभ में और सशक्त हुई सेना। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भारत में पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स, किसी भी सैन्य हमले में सबसे पहले करेगी प्रहार। पत्र लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल, अजय हिंदुस्तान के वो 88 घंटे जब हमारे प्रहार से घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर ऑपरेशन सिंदूर पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, आज देश इस सैन्य अभियान की सफलता की वर्षगांठ मना रहा है। इसका संदेश यही है कि भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों है। दैनिक जागरण ने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद शेयर बाजार में तेजी आने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, अमेरिका ईरान वार्ता में प्रगति से बाजार में उछाल, सेंसेक्स 941 अंक चढ़ा, ट्रंप के नरम रुख से क्रूड की कीमतों में आई गिरावट। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश, महाराष्ट्र में पारा 43.5 डिग्री के तक पहुंचा, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभाग
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।
3: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे देशभक्ति संगीत में एक देशभक्ति गीत। तो सुनवा रहे हैं आपको सोनू निगम की आवाज़ में बॉर्डर हिंदुस्तान का, इस फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है ताहिर अम्बालवी ने और संगीत है दिलीप हरी किशन का।

अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत सोनू निगम की आवाज़ में। श्रोताओं, हम भी यही कहते हैं कि ईश्वर हमें ना दौलत दे ना शोहरत दे, ईश्वर हमें ना दौलत दे ना शोहरत दे, लेकिन बस भारत माँ की संतान होने पर यही इल्तिजा है कि जब भी हम शहीद हों तो बस तिरंगे में लिपटा हुआ हमारा बदन दे। और आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पूरे भारत में मनाई जा रही है और हमारा जो देश है वो महकता हुआ एक चमन है जो विश्व गुरु भी रहा है। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ जो कि ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु कहा जाता है सभी देशों का। और बहुत ही महिमामय बात है कि हमारा देश एक ऐसा देश है जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक सभी तरह से परिपूर्ण है, हर मौसम यहाँ पर आता है। तो ये हमारे देश की खूबसूरती है और जब हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं तो इस देश के प्रति हमें हर कीमत पर देशभक्ति करनी होगी और देशभक्ति से ओतप्रोत अपना जीवन जीना होगा। चलिए, अब हमारे कार्यक्रम में समय हो चला है कि हम लेकर हाजिर हों आप सभी के लिए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। पसंद आपकी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ ये पहला पत्र जो हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं वो आया है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित का। राजा बाजार बिहिया आरा से ये पत्र लिखा है सुरेश प्रसाद केशरी, पूनम देवी केशरी, प्रतिज्ञा केशरी और श्रद्धानंद केशरी ने। तो आप सभी श्रोताओं को हम सुनवा रहे हैं बॉर्डर फिल्म से लिया गया ये गीत।

और आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर हमने आपको ये गीत सुनवाया। भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और देश की रक्षा के प्रति उनके अटूट समर्पण को नमन करने के लिए। जी हाँ, आज के दिन हम अपने सभी वीर भारतीय सैनिकों को नमन करते हैं जो घर से महीनों दूर रहकर अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, तैनात रहते हैं, और तभी हम सुकून की छाँव में अपने घरों में रहते हैं। और आज बड़ा ही खास दिन है, और इसी के साथ कार्यक्रम में लीजिए सुनते हैं ये संदेश।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: संदेश के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पसंद आपकी में। और अब पसंद आपकी कार्यक्रम में लेते हैं अगला पत्र। भाई अच्छे लाल रॉय, पानो देवी, मुकेश कुमार रॉय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार की तरफ से आया हुआ, ये सभी लिखते हैं हमें ब्रह्मपुरा मनीगांछी से। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश आई है दीवाना फिल्म के गीत के लिए। थाना मोड़ गढ़ों का रोहतास से हमारे श्रोता हैं मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शाहबाज। फुटानी चौक रेनर एस्टेट से हैं भाई फटफटिया झा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, ललन मिश्रा, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। पठान टोली कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निखत प्रवीण, सदा फारजू, साहिल अरमान, मशकूर आलम, शमा प्रवीण और अलीशा। मदरसा रोड कुआत से हैं हाशिम आज़ाद, खैरुन्निसा, खाकसार अहमद, शेख जफर हसन, बेगम नरगिस जफर। और आप हैं कर्नाटका स्टेट चिन्ना तिरुपति से प्रकाश, श्यामला, अश्विनी, आनंद और मानवित। तो चलिए आप सबको सुनवाते हैं दीवाना फिल्म का ये गीत कुमार सानू और साधना सरगम की सुरीली आवाज़ में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

और अब पसंद आपकी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं की पसंद हम शामिल कर रहे हैं। आप हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, राजेश रंजन, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, बुल्की वाली, फलना झा, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अथर्व कुमार, रंजय कुमार परदेसी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, जयंत कुमार बैरागी, नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन, इशरत अक्रम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, अरहान, हमजा, मुजम्मिल, हुमैरा, सुमैरा, अबीहा, शाहीन नाज, नूरी नाज, बच्चू और चीना। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं फूल और कांटे फिल्म से लिया गया ये गीत, जिसे गाया कुमार सानू के साथ हल्का याग्निक ने है। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

फूल और कांटा फिल्म के इसी गीत के साथ ही हमारा आज का यह पसंद आपकी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अमित कुमार। और इसी के साथ अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
6: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna cbs@gmail.com।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार आज। पटना के गांधी मैदान में हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल होंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल की आज से शुरुआत। पटना के बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल में जांच शिविर का आयोजन। और मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और बांका समेत आसपास के क्षेत्रों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो रहा है। पटना के गांधी मैदान में होने वाले समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा और जदयू के 12-12 सदस्यों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2 तथा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री के कैबिनेट में शामिल होने की संभावना है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
1: माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विशेष रूप से रहने वाले हैं एवं देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, देश के स्वास्थ्य एवं रसायन मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी समेत बिहार के एनडीए के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत पूरे बिहार के लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए आ रहे हैं।
0: मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार के तय फार्मूले पर होने के आसार हैं। इसमें ज्यादातर पुराने चेहरों को जगह मिलने की संभावना है। कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: विधायकों की संख्या के अनुसार राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 36 हो सकती है। आज 28 सदस्यों के शपथ लेने की संभावना है। इनमें भाजपा कोटे से संभावित नामों में विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, नीतीश मिश्रा, रमा निषाद, संजीव चौरसिया, रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, संजय सिंह टाइगर, इंजीनियर शैलेंद्र, मिथिलेश तिवारी और अरुण शंकर प्रसाद के नाम शामिल हैं। जदयू कोटे से अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, भगवान सिंह कुशवाहा, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान, श्वेता गुप्ता, अतिरेक कुमार और रत्नेश सदा के मंत्री बनाए जाने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार समेत कुछ नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2 तथा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री बनाए जाएंगे। लोजपा रामविलास से संजय सिंह और संजय पासवान, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन के मंत्री बनने की संभावना है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से विधायक स्नेह लता को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। समाचार कक्ष से मैं अनुपम कुमार।
0: शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गांधी मैदान और आसपास के क्षेत्रों में 80 दंडाधिकारियों के नेतृत्व में 3,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की व्यवस्था की गई है। समारोह को देखते हुए पटना की यातायात व्यवस्था में आज बदलाव किया गया है। इसके चलते सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक गांधी मैदान की ओर जाने वाले कई मार्गों पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। शेखपुरा मोड़ से हवाई अड्डा की ओर सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर भी रोक रहेगी। पटना जंक्शन से डाकबंगला चौराहे की ओर तथा भट्टाचार्य चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर भी सभी वाहनों के

प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा भी कई अन्य मार्गों पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं राजधानी पटना के पीएमसीएच और आईजीआईएमएस समेत कई अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने बताया कि 10 बेड और एक मेडिकल टीम को अलर्ट पर रखा गया है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर पटना के बिहटा स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के तहत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। रसायनों, विषैले पदार्थों और भारी मशीनों के साथ काम करने वाले खतरनाक कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए उम्र की परवाह किए बिना स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी। प्रदेश के विभिन्न अदालतों में 9 मई को राष्ट्रीय लोक

0: दे।
1: प्रेम धवन की शख्सियत के कई पहलुओं में से एक था उनका संगीतकार वाला पहलू। हालांकि उन्होंने कई फिल्मों में संगीत नहीं दिया, गिनी चुनी फिल्में हैं उनके संगीत निर्देशन में। प्रेम धवन के दोस्त और मशहूर अभिनेता और निर्माता निर्देशक मनोज कुमार ने जिद करके फिल्म शहीद के संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी प्रेम धवन को सौंपी।

0: ये सन 1965 की बात है। इस फिल्म के निर्माण के दौरान प्रेम धवन ने शहीद भगत सिंह की मां से मुलाकात की। ये उनके लिए बहुत जज्बाती अनुभव था और उन्होंने इस यादगार मुलाकात को एक गाने में ढाल दिया और वो गाना है मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गाना।
1: तू न रोना के तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी।

0: फिल्म शहीद के बाद प्रेम धवन ने पवित्र पापी फिल्म में संगीत दिया। इस फिल्म के ज्यादातर गाने किशोर कुमार की आवाज में थे।
1: तेरी दुनिया से होके मजबूर चला

0: धवन ने नृत्य की तालीम भी ली थी और फिल्म संसार में जब जब मौका आया उन्होंने कोरियोग्राफी की। सन 1949 में फिल्म सिंगार के लिए उन्होंने नर्तकी कुक्कू को कोरियोग्राफ किया था। फिल्म नया दौर के इस गाने का नृत्य निर्देशन प्रेम धवन का ही था। प्रेम धवन एक बेमिसाल कलाकार, एक नायाब गीतकार, एक अद्भुत संगीतकार और प्रतिभाशाली कोरियोग्राफर, बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी प्रेम धवन को हमारा नमन। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति
1: 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। इन हमलों में 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछले सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री के पद की शपथ लेने की संभावना है। केरलम के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे भी मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 14 बिंदुओं वाला ये मसौदा 30 दिन की बातचीत का रास्ता खोल सकता है, ताकि एक व्यापक समझौते तक पहुंचा जा सके। ईरान ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को नियंत्रण

प्रेम धवन की संगीत निर्देशन वाली कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनके हीरो रहे हैं तारा सिंह। इन फिल्मों के नाम हैं वीर अभिमन्यु, किसान और भगवान, मेरा देश मेरा धर्म, भारत के शहीद। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रेम

0: में बताया, लेकिन चेतावनी दी कि बातचीत असफल होने पर सैन्य कार्रवाई फिर शुरू हो सकती है। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा कि चार्ल्स डी गॉल विमान वाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतावली और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप हिंदी समाचार सुन रहे थे, इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी साहित्यिक कार्यक्रम में एक वार्ता। डॉक्टर प्रेम सुंदर तिवारी से हम सुनवा रहे हैं आपको ये वार्ता, जिसका विषय है भारत में नदियों को जोड़ने की आवश्यकता।
2: कृषि कार्य के लिए भूमि के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है। भारत की भौगोलिक परिस्थिति तथा वर्षा की मात्रा इस प्रकार की है कि सफलतापूर्वक कृषि कार्य करने के लिए धरातलीय जल संसाधन आवश्यक है। देश का धरातलीय जल संसाधन समान रूप से वितरित नहीं है। भारत में प्रति वर्ष 4000 क्यूसिक किलोमीटर वर्षा होती है। यह वर्षा की मात्रा प्रतिवर्ष भिन्न रहती है। किसी वर्ष यह बहुत ही कम होती है तो किसी वर्ष बहुत ही अधिक होती है। जिस वर्ष वर्षा कम होती है उस वर्ष सूखा पड़ता है तथा जिस वर्ष अधिक होती है उस वर्ष बाढ़ आती है। दोनों ही स्थितियों में देश का खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होता है। मानसून द्वारा लगभग 85% वर्षा ग्रीष्म ऋतु में हिमालय की गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों के अपवाह क्षेत्रों में होती है। इस प्रकार जहाँ देश के पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र, गंगा और महानदी बेसिनों में जल की प्रचुरता है, वहीं पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग में इसकी भारी कमी है। वर्षा ऋतु में बड़ी मात्रा में सतही जल बहकर समुद्र में चला जाता है। जुलाई से सितंबर तक अत्यधिक वर्षा होने के बावजूद भी वर्ष के शेष भाग में पीने के पानी की कमी देखी जाती है। वर्षा ऋतु में जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा भाग सूखा से प्रभावित होता है। इस प्रकार नदियों को जोड़कर बाढ़ तथा सूखा एवं पीने की पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु भी नदियों को जोड़ना आवश्यक है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में पिछले दशक से गिरावट दर्ज हुई है। इसके बावजूद भी प्रति वर्ष यह 1 से 1.5 करोड़ बढ़ रही है, जिसकी खाद्यान्न आपूर्ति हेतु अच्छी फसल उत्पादन तथा प्रति इकाई उत्पादन वृद्धि आवश्यक है। यह तभी संभव है जब देश के प्रत्येक भाग में पर्याप्त जल सिंचाई हेतु उपलब्ध हो। यह कार्य नदियों को जोड़कर पूरा किया जा सकता है। नदियों को जोड़ने से एक और लाभ होगा, देश में सस्ता एवं सर्वसुलभ परिवहन का साधन उपलब्ध हो जाएगा। भारत में सड़कों पर वाहनों का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। नदियों को जोड़ने से सड़कों पर व्यावसायिक वाहनों का बोझ कम होगा तथा नहरों के माध्यम से भारी खनिज पदार्थ एवं अन्य उत्पादों का परिवहन कार्य किया जा सकता है। नदियों को जोड़ने से भूमिगत जल स्तर में भी वृद्धि की जा सकती है। पिछले कई वर्षों से अत्यधिक भूमिगत जल दोहन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में जल स्तर काफी नीचे चला गया है, जिससे पीने, सिंचाई और औद्योगिक आवश्यकताओं हेतु पानी की कमी हो गई है। नदियों को जोड़ने से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि दर्ज की जा सकती है। नदियों को जोड़ने से जल विद्युत के उत्पादन में वृद्धि होगी तथा जिन क्षेत्रों में विद्युत की कमी है उसे भी दूर किया जा सकता है। अब हम भारत में नदियों को जोड़ने के इतिहास पर नजर डालें। औपनिवेशिक शासनकाल में 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश

इंजीनियर आर्थर कोटोन ने भारत की प्रमुख नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, जिसका मुख्य उद्देश्य सामानों का परिवहन था, साथ ही साथ अत्यधिक जल वाले क्षेत्रों से जल को सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक सिंचाई हेतु पहुंचाना भी था। अत्यधिक खर्च के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात 1970 में तत्कालीन पूर्व सिंचाई मंत्री श्री के एल राव की अध्यक्षता में केंद्रीय जल और शक्ति आयोग द्वारा राष्ट्रीय जल ग्रिड का सुझाव दिया गया। इस आयोग द्वारा इसके लक्ष्य बताए गए जो इस प्रकार हैं: नहरों और नदी बांधों द्वारा नदियों के अतिरिक्त जल को उत्तर से दक्षिण और दक्षिण पश्चिम तथा पूर्व से पश्चिम जलाभाव वाले क्षेत्रों में उपयोग हेतु अंतरित करना, सागर में बह जाने वाले बाढ़ के जल को जल के अभाव में और सूखा प्रवण क्षेत्रों की ओर ले जाना, जिससे जलापूर्ति में असमानता को दूर किया जा सके, अतिरिक्त जल की प्राथमिकता के आधार पर दीर्घकालिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग करना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उक्त केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग ने भी सुझाव दिए। सोन, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और पेन्नर के बेसिनों से गुजरने वाली गंगा से कावेरी को जोड़ने वाली नहर का निर्माण, ब्रह्मपुत्र गंगा लिंक का निर्माण, नर्मदा से पश्चिम राजस्थान के लिए लिंक नहर का निर्माण, चंबल से नहर द्वारा मध्य राजस्थान तक जलापूर्ति, सतलुज, ब्यास और रावी नदियों को नहरों द्वारा उत्तरी राजस्थान तक जलापूर्ति, महानदी से नहरों द्वारा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों तक जलापूर्ति तथा पश्चिमवाही नदियों को पूर्व से जोड़ना। सन 1999 में भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नदियों को जोड़ने पर एक बार पुनः बल दिया गया। सन 2005 से सन 2014 के बीच केंद्रीय सरकार द्वारा कई कमेटियों का गठन कर सुझाव मांगे गए। कई कमेटियों ने पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों से नदियों को जोड़ने की योजना पर आपत्ति भी दर्ज की। इस प्रकार इस क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हो पाई। अभी सितंबर 2015 में गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ है। भारत की नदियों को दो वर्गों में बांटकर उनके जोड़ने की योजना बनाई जा सकती है, हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियों को जोड़ने का कार्य गंगा, ब्रह्मपुत्र, उनकी मुख्य सहायक नदियों पर भारत तथा नेपाल के जल संग्रहण भंडार बनाकर तथा उससे नहर निकालकर एक दूसरे को जोड़ा जा सकता है। ब्रह्मपुत्र का जल गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों में पश्चिम की तरफ स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे 220 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध हो सकेगा तथा लगभग 300 लाख किलोवाट जल विद्युत का भी उत्पादन संभव हो सकेगा। इसका एक लाभ यह भी होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ पर भी नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना का लाभ भारत के साथ ही साथ नेपाल तथा बांग्लादेश को भी मिल सकेगा। हिमालय की नदियों पर कुल 14 अंतर नदी लिंक योजनाओं को भी बनाया जा सकता है, जो इस प्रकार है: गंगा यमुना लिंक, शारदा यमुना लिंक, यमुना राजस्थान लिंक, राजस्थान साबरमती लिंक, कोसी घाघरा लिंक, कोसी मेची लिंक, मानस संकोच तिस्ता गंगा लिंक, जोगी घापा तिस्ता फरक्का लिंक, गंगा दामोदर स्वर्ण रेखा लिंक, फरक्का सुंदरबन लिंक, गंगा गंडक लिंक, चुनार सोन बराज लिंक तथा सोन बांध गंगा की दक्षिण सहायक नदी लिंक। इस प्रकार प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने हेतु हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को चार भागों में विभाजित कर सकते हैं: महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी को आपस में जोड़ना, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों को आपस में जोड़कर इसमें से मुंबई से उत्तर वाली नदियों को एक में तथा दक्षिण

चंबल नदियों को एक में जोड़ना। केन नदी को चंबल नदी से जोड़कर तथा पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के जल को पूरब की तरफ मोड़कर इस प्रकार प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ने से अतिरिक्त 250 लाख हेक्टेयर धरातलीय जल की उपलब्धता होगी तथा 100 लाख हेक्टेयर भूमिगत जल में भी वृद्धि हो जाएगी। हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा गंगा कावेरी लिंक नहर की योजना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत गंगा का वर्षा ऋतु का अतिरिक्त जल दक्षिण में कावेरी नदी तक 2635 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा ले जाने का प्रस्ताव है। इसमें पटना के पास निर्मित बराज, जिसकी ऊंचाई 45.7 मीटर से एक दक्षिणवर्ती नहर निकाली जाएगी, जिससे 1700 क्यूसेक जल का उपयोग दक्षिण बिहार, झारखंड, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई हेतु किया जाएगा। शेष जल को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पहुंचाया जाएगा। इस जल को कावेरी नदी तक ले जाने के लिए सर्वप्रथम नर्मदा सोन जल विभाजक तक सोन नदी के सहारे निर्मित लिंक द्वारा प्रवाहित किया जाएगा, जिसके लिए कई बांधों और जलाशयों के निर्माण का प्रस्ताव है। सोन लिंक से जल बारगी जलाशय में डाला जाएगा। इस जल को बेनगंगा, प्राणहिता और गोदावरी के प्राकृतिक अपवाह मार्ग के सहारे ले जाएगा। इसके आगे लिंक नहर कृष्णा और पेन्नर नदियों को पार करती हुई ऊपरी अनिकट से कावेरी नदी में मिल जाएगी। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें बड़े खर्च, विस्तृत सर्वेक्षण, दृढ़ प्रशासनिक निर्णय और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। इसमें कई प्रशासनिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कठिनाइयां भी हैं। यही कारण है कि अभी तक इस पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रस्तावित ग्रिड के जल का उपयोग सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई हेतु किया जाएगा। इससे न केवल सिंचन क्षमता में वृद्धि होगी, सूखे का प्रभाव कम होगा, बहुशस्यन को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक क्रियाओं को विविधता मिलेगी, वरन बाढ़ों पर भी नियंत्रण हो सकेगा। भौम जल का संरक्षण होगा, जल विद्युत का उत्पादन होगा तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रिड के अधीन बने नहरों और नदी बांधों का उपयोग जल कृषि के संवर्धन हेतु किया जा सकता है। ग्रिड में इतनी जल विद्युत निर्माण होगा कि जिसे ग्रिड उपयोग के अलावा स्थानीय उद्योगों एवं कृषि विकास में लगाया जा सकता है। मकर

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, हिंदी साहित्यिक कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए डॉक्टर विजेंद्र पाठक से एक वार्ता, जिसका विषय है वाल्मीकि के राम की प्रासंगिकता आज के संदर्भ में।

महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि और उनकी रचना रामायण को आदि काव्य होने का गौरव प्राप्त है। रामायण की कथा का प्रारंभ देव ऋषि नारद और महर्षि की वार्ता से होता है। चूंकि नारद समस्त लोकों में अहर्निश भ्रमण करने वाले लोक संग्रही पुरुष हैं, वे राजाओं के प्रासादों से लेकर दीन दुखियों के नित्य कुशल के आकांक्षी हैं। वाल्मीकि को ऐसे चरित्र की खोज है जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसके चारित्रिक वैशिष्ट के अक्लुष आकाश की छाया तले संतरस्त मानवता को शीतल छाया मिल सके। उन्होंने पूछा कि ऋषिवर, इस समय इस संसार में गुणवान, चरित्रवान, वीर्यवान, धैर्यवान, सत्यवादी, दृढ़ प्रतिज्ञ, सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यवान, सुंदर, मन पर अधिकार रखने वाला, अक्रोधी, कांतिमान, किसी की निंदा नहीं करने वाला तथा संग्राम में कुपित हो जाने पर देवता भी जिससे डरते हों, वैसा सर्वगुण संपन्न मनुष्य कौन है? महर्षि के प्रश्नों का देवर्षि नारद ने जो उत्तर दिया वह संपूर्ण महाकाव्य का विषय बना। उन्होंने बताया कि इस समय धरती पर इक्ष्वाकुवंशी रामचंद्र जी एकमात्र ऐसे पुरुष हैं जो समस्त सद्गुणों के एकत्र आगार हैं। यह बात लोक विस्तृत है कि कौशल्यानंदन राम माता के आनंद को बढ़ाने वाले, गंभीरता में समुद्र के समान और धैर्य में हिमालय के समान हैं। वाल्मीकि को ब्रह्मा जी ने आदेशित किया कि जिस राम के चरित्र को नारद जी ने बतलाया उसे लोक शिक्षण एवं लोक पोषण के निमित्त काव्य की भाषा में आबद्ध करें। ब्रह्मा से आदेशित एवं नारद से उत्प्रेरित वाल्मीकि ने राम के चरित्र को केंद्रीभूत कर लोक के समक्ष प्रस्तुत किया। उनके मन में यह भावना थी कि संकटग्रस्त एवं संतरस्त मानवता के समक्ष सद्गुणों से संपन्न, सामर्थ्यवान, चारित्रिक औदार्य के उदाहरण को रखें, जिससे चरमराती, टूटती एवं बिखरती मानवता सुस्थिर हो सके। निर्विवाद वाल्मीकि के राम काल्पनिक नहीं है। यह सत्य है कि कवि कर्म की मौलिकता को ध्यान में रखकर कवि ने घटनाओं को संजोने, सजाने एवं संवारने जैसे कार्य को संपादित किया। यह सत्य है कि कवि कर्म देशातीत एवं कालातीत होता है। उसकी वाणी में त्रिकाल सत्य की समस्त संभावनाएं निहित हुआ करती हैं। वह युग का दृष्टा, स्रष्टा एवं चिंतक होता है। यही कारण है कि कालजयी पुरुष को वह काव्य सृजना का केंद्र बनाता है जो उसकी कथा का नायक होता है। वाल्मीकि के प्रश्नों में सांप्रतम और अस्मिन लोके शब्द का प्रयोग हुआ है, जो इस अर्थ को प्रतिपादित करता है कि इस समय इस धरती पर कौन मनुष्य है जो मानवीय गुणों से संयुक्त एवं सामर्थ्यवान हो। वाल्मीकि की दृष्टि में सामर्थ्यहीन, सद्गुणी से संकटापन्न मानवता का कल्याण असंभव है। जब उन्होंने जाना कि इक्ष्वाकुवंशी राम समुद्र की गंभीरता एवं हिमालय की धीरता से युक्त हैं, तब उनके मन में आशा की किरणें जगती हैं कि राम के आदर्श चरित्र को विश्व मंच पर प्रस्तुत कर चारित्रिक संकट को दूर किया जा सकता है। प्रत्येक युग में सत्यासत्य का संघर्ष होता है। जब जब चरित्र बल की अवहेलना से मानवता कराहने लगती है, तब तब युग पुरुष का साक्षात्कार कराकर युग का मनीषी, जो स्वयंभू कवि हुआ करता है, बचाने को अग्रसर होता है। राम कर्मयोगी राजर्षियों की परंपरा से संपोषित इक्ष्वाकुवंशी हैं। परिणाम स्वरूप उनके जीवन में कर्म की प्रधानता है। वे सूर्य की तरह निरंतर कर्म पथ के अविराम पथिक एवं शवों को विश्रांति तथा चेतना प्रदान करने वाले हैं। वाल्मीकि ने जिस राम का वर्णन किया है उस पर यदि सामान्य रूप से विचार किया जाए तो वे केवल मनुष्य रूप में वर्णित हैं। लक्षणा का प्रतीकात्मक अर्थ काव्यशास्त्र की परंपरा में गौण माना जाता है। कौशल्यानंदन राम का चरित्र लोक के समक्ष प्रस्तुत करना ही उनका लक्ष्य रहा, जिससे आने वाली मानवीय परंपरा को नवीन आलोक मिल सके। क्योंकि वे सर्वगुण संपन्न, सत्यम, शिवम, सुंदरम से संपृक्त मानव मात्र के सच्चे आदर्श हैं। महर्षि की दृष्टि में मोह रूपी रावण, अहंकार रूपी बाली एवं कुंभकर्ण, क्रोध रूपी ताड़का को न तो ज्ञान रूपी राम मार सकते हैं और न देवता रूपी राम ही। उसे तो केवल मानव राम ही मार सकते हैं, जो हमारे जीवन पथ के सहचर एवं सुख दुख के साथी हैं। चरित्र, धर्म, सत्य, सहनशीलता, सदाचार, सद्ज्ञान एवं सामर्थ्य के अन्वेषी वाल्मीकि की दृष्टि में राम के कार्य व्यापार, लोक रक्षण एवं लोक शिक्षण के कारक हैं, जिनकी उपादेयता, प्रासंगिकता कालातीत है। यह सत्य है कि धर्म, सत्य एवं सदाचार के निर्वहन में अनेक बाधाएं आती हैं। श्रेष्ठ पुरुष उन बाधाओं को पार करते हुए निरंतर नैतिक

की रक्षा में सन्नद्ध रहता है। धर्म का अर्थ होता है जो धारण किए हुए हो, अर्थात जिसके सहारे सुस्थिर रहना संभव हो। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम वद धर्म चर, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। राम के जीवन आदर्श ही हैं सत्य का आचरण एवं धर्म का संपोषण। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव की शास्त्रानुमोदित वाणी को राम ने अपने आचरण में उतार कर लोक के समक्ष प्रस्तुत किया। तभी तो वाल्मीकि को कहना पड़ा, रामो विग्रहवान धर्म। श्री राम मूर्तिमान धर्म है, उनके रूप में धर्म ने शरीर धारण किया है, जिसके जीवन में कभी भी अवांछनीय कार्य व्यवहार नहीं दिखलाई पड़ते। वे युग युग तक धर्माचरण एवं सत्याचरण के उदाहरण बने रहेंगे। किशोरावस्था में ही राम के जीवन में संघर्षों का संघात पाते हैं। विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के निमित्त निशाचरों का वध, पुरुष प्रधान समाज से उपेक्षित, प्रताड़ित एवं तिरस्कृत अहिल्या का चरण स्पर्श, मिथिला नरेश के यहाँ रखे हुए विशालकाय शिव धनुष का भंजन, सीता से विवाह, मार्ग में आए परशुराम का गर्भहरण जैसी घटनाएं उनके भावी जीवन की भव्यता एवं विराटता को संकेतित करती हैं। पिता की इच्छा के विरुद्ध सत्य की रक्षा के लिए एवं स्वधर्म पालन के निमित्त वनवास की अवधि को सहर्ष स्वीकार कर अंतर्कलह पर विराम लगा देने की उदात्त भावना कालातीत प्रासंगिक है। यह दुस्सह वनवास के 14 वर्षों की अवधि के अंतराल में राम के पावन चरित्र का चरमोत्कर्ष अनुगमनीय एवं मननीय है। उनकी धर्म भार्या सीता ने समझाया कि जटाजूट एवं बलकल से सुशोभित मुनि के वेश में धनुषबाण की क्या आवश्यकता है। शस्त्रास्त्रों से सज्जित देख दुष्ट असुरों के आक्रमण की संभावना बनती है, अतएव आप इन्हें किसी ऋषि के आश्रम में रख दें। सीता की बातों का राम ने जो उत्तर दिया वह उनकी धीरता, वीरता एवं लोक रक्षण की भावना का अप्रतिम उदाहरण है। राम ने कहा कि सीते, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को भी छोड़ सकता हूँ, किंतु दुष्टों के दलन एवं सज्जनों के संरक्षण की जो प्रतिज्ञा मैंने की है उसे नहीं छोड़ सकता, अतएव धनुष बाण भी नहीं छोड़ सकता। यहाँ हम राम को एक सच्चे लोकनायक की भूमिका में पाते हैं, जो अपने दायित्व निर्वाह के प्रति सदैव सजग एवं जागरूक हैं। वनवासी राम ने असुर संस्कृति का उन्मूलन कर आर्य संस्कृति की स्थापना की। उपेक्षित जनसमूह को समुचित सम्मान देकर मैत्री की स्थापना की। दलित नारी का प्रतिनिधित्व करने वाली शबरी का आतिथ्य ग्रहण कर लोक के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया। सुग्रीव से संबंध स्थापित कर मदांध एवं स्वार्थांध बाली का संहार किया। वनवासी समूह की सदिच्छा सहायता एवं सूझबूझ से विपन्नावस्था में भी सेतु निर्माण जैसे दुष्कर कार्य का संपादन किया। शत्रु के भाई विभीषण को आश्रय देकर कूटनीति का परिचय दिया। रावण, कुंभकर्ण जैसे दुर्दमनीय शत्रुओं का संहार कर जिस आत्मबल की पराकाष्ठा को लोक के समक्ष रखा वह मानव मात्र के लिए प्रेरणाप्रद एवं प्रासंगिक है। राम ने स्वर्णमयी लंका से जन्मभूमि अयोध्या को श्रेष्ठ माना और अविलंब माता एवं मातृभूमि के दर्शनाभिलाषी राम अयोध्या लौटे। प्रवासी भरतवंशियों के लिए राम के उपरोक्त चरित्र की प्रासंगिकता को भला कैसे नकारा जा सकता है। राज्यारोहण के उपरांत कतिपय लोभ का अपवाद के कारण राम अपनी प्राण प्रिया सीता को परित्याग कर इस सत्य संकल्प की स्थापना करते हैं कि राजा का व्यक्तिगत सुख एवं उसके जीवन की शांति लोकापवाद एवं प्रजा की संतुष्टि के समक्ष तुच्छ है। तभी तो हम आज भी कहने को विवश हैं, राजा हो तो राम जैसा। लाखों वर्ष बाद भी हम राम राज्य की परिकल्पना में आत्मविभोर हो जाते हैं। राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष राम के इस पावन चरित्र की महानता एवं प्रजारंजन की भावना की प्रासंगिकता स्वयं सिद्ध है। वर्तमान समय में विश्व के समक्ष समस्याओं का संघात सूरसा की तरह मुंह बाए निगल जाने को आतुर है। नैतिक मूल्यों की गिरावट एवं चारित्रिक अस्खलन ने मानव के सुंदर मुखमंडल को स्याह बना दिया है। चरित्र एवं धर्म बल के अभाव में आज मानवीय गरिमा नष्ट हो रही है। परिणाम स्वरूप हम कुंठाग्रस्त एवं आत्मघाती जीवन जीने को विवश हैं। हमारी स्वार्थपरता ने जीवन को जंजाल बना दिया है। राम का जीवन आदर्श हमारे वैयक्तिक एवं पारिवारिक जीवन को संवार सकता है। सुसंस्कृत, सुंदर एवं सुस्थिर परिवार से सुस्थिर, संगठित एवं शक्ति संपन्न राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। विघटित परिवार की मानसिकता में पला

0: बड़ा बालक राष्ट्र की राष्ट्र को संगठित कैसे कर सकता है। अतएव राम के पारिवारिक जीवन का आदर्श आज की अनिवार्य प्रासंगिकता है। राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन में चतुर्दिक असत्याचरण एवं असत संभाषण की पराकाष्ठा हो गई है। परिणाम स्वरूप हम दिग्भ्रमित एवं आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। आत्मपोषण की भावना ने जीवन को विषवत बना दिया है। अनावश्यक वासनाओं की संतुष्टि हेतु हम सतत प्रयत्नशील हैं। परिणाम यह है कि हम सब कुछ पाकर भी रीते रीते लगते हैं। राम का जीवन दर्शन हमें यह बतलाता है कि कर्तव्यों के निर्वाह में वास्तविक में सच्चे सुख की प्राप्ति संभव है। स्वयंभू जन नायकों के समक्ष राम के चरित्र का आदर्श, उनके कार्य संपादन का कौशल, वाणी विचारों कार्यों की एकता चुनौती बनकर खड़ी है, जिसे अपनाने की त्वरा में ही सबका कल्याण समाहित है। गांधी जी ने राम राज्य का सपना देखा था और वह सुशासन तभी संभव है जब जन नायकों के आचरण एवं वाणी में समानता हो। कर्तव्य बोध विस्मरण की इस विषम बेला में राम के जीवन चरित्र की ज्योति को अपनी अंतरात्मा में जलाकर उसके प्रकाश से स्वयं आलोकित होने एवं अपने परिवेश व परिस्थिति को आलोकित करना ही वाल्मीकि के जीवन व वाल्मीकि के राम की आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता है, क्योंकि उन्होंने धर्म के तत्व को सर्वांश में आत्मसात किया और स्वजनों से कराया भी। वाल्मीकि के राम का जीवन स्वयं में एक आलोक पुंज है, जिसकी प्रासंगिकता त्रिकाल सत्य एवं सर्वकालिक है।
1: श्रोताओं, अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वजेंद्र यादव से, और इस वार्ता का विषय था वाल्मीकि के राम की प्रासंगिकता आज के संदर्भ में। तो इसी के साथ हमारा आज का हिंदी साहित्यिक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हो चुके हैं। लोक माधुरी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अब कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए ये देशभक्ति लोकगीत भरत शर्मा व्यास के स्वर में।

शारदा सिन्हा के गाए हुए इसी भोजपुरी एल्बम लोकगीत के साथ ही लोक माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं और अब रसधार कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। सबसे पहले सुनवाते हैं आपको भरत शर्मा व्यास की आवाज़ से सजा हुआ ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। एल्बम है निमिया के दाढ़ मैया।

0: दिल कह रहल बा कदम तू बढ़ा द, मोहब्बत पुकारे। जी हाँ, इस एल्बम में अभी आप सुन रहे थे हैं बद्री बहार की आवाज़ में ये एल्बम सॉन्ग। और अब इसी के साथ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का हमारा आज का कार्यक्रम रस्तार यहीं संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम। इसे हम अपने सासाराम केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार। सुनते रहिए आकाशवाणी का सासाराम केंद्र। जुड़े रहिए हमसे।
1: विविध भारती से अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

रंग तरंग कार्यक्रम की शुरुआत हमने सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म की इस रचना के साथ की। लता मंगेशकर का स्वर था, पंडित नरेंद्र शर्मा के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हरि बिन तेरो कौन सहाय। हरि ओम शरण संतवाणी से आप ये भक्ति रचना सुन रहे थे। दिलराज कौर की आवाज़ थी, सुरेंद्र कोहली ने धुन तैयार की थी। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये अगली रचना।

जगजीत सिंह की आवाज और उन्हीं के संगीत का जादू। आप सुन रहे थे ये गीत, इंद्रजीत हसनपुरी ने इसे लिखा था। और अब हम पढ़ेंगे आशा भोसले की आवाज।

सालों लग जाते हैं, लेकिन रिश्ते टूटने में पल भर भी नहीं लगता। अपने हर रिश्ते को सहेज कर रखिए। बहरहाल आपको बता दें, आशा भोसले की आवाज़ थी, गुलजार की रचना राहुल देव बर्मन की, संगीत से सजी, और एल्बम था दिल पड़ोसी है। एक बार फिर आशा भोसले की आवाज़, लेकिन इस बार उनके साथ हैं अदनान सामी।

0: हम भी तो हैं तुम्हारे, कभी तो नजर मिलाओ एल्बम से। ये गीत आप सुन रहे थे, आशा भोसले और अदनान सामी की आवाजें थीं। अदनान सामी का ही संगीत और कलाम था रियाजुर रहमान सागर का।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

साहिर लुधियानवी की रचना थी रोशन की तर्ज पर, आवाजें आशा भोसले और साथियों की, फिल्म थी दिल ही तो है। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। चलिए अब हम बढ़ेंगे जसपिंदर नरूला की आवाज की ओर। एल्बम है कुछ कुछ दिल में।

कुछ कुछ दिल में एल्बम से आप सुन रहे थे जसपिंदर नरूला की आवाज, और अब आप सुनेंगे श्रीकांत एल्बम से जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाजें। श्लोक लाल के बोल हैं और तनिष्क बागची का म्यूजिक।

श्रीकांत एल्बम से आपने सुना जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार का गाया ये गाना। श्लोक लाल ने इसे लिखा था, तनिष्क बागची का सुरीला संगीत था और अब निदा फाजली का कलाम, जगजीत सिंह की आवाज़, एल्बम गम बड़े आते हैं।

जगजीत सिंह की गई इस गजल के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: हमारा प्रसारण आप सुन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। एक रिपोर्ट।
2: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैनिक क्षमता विषय पर आयोजित ये 2 दिवसीय सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। ये पहल व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और देश के कार्यबल के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे सब कभी तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे नहीं झुके। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी केरलम में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है, वे इस समय चेन्नई में हैं। प्रवर्तन निदेशालय पंजाब के मोहाली और चंडीगढ़ में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये कार्रवाई ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण GMADA से भूमि उपयोग परिवर्तन लाइसेंस प्राप्त करने में हुई धोखाधड़ी और जनता से करोड़ों रुपए की ठगी के सिलसिले में की जा रही है। निदेशालय नितिन गोहल की तलाश कर रही है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

निगाहों की जादूगरी। आप सुन रहे थे ये गाना शबनम फिल्म से, लता मंगेशकर का स्वर था, प्रेम धवन की रचना और उषा खन्ना का संगीत। साथियों, आज के यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने शामिल किए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार और संगीतकार प्रेम धवन के कुछ नायाब गीत।

0: प्रेम धवन की ये रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम के, युगल स्वर थे, फिल्म थी सावन। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।
0: चलिए अब

यादों की महफिल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले गाने की ओर बढ़ते हैं, जो प्रेम धवन की रचना है, सलिल चौधरी का संगीत, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर, फिल्म का नाम तांगे वाली।

गांगे वाली फिल्म का ये दो गाना आप सुन रहे थे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गीतकार और संगीतकार प्रेम धवन की रचनाएं। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ें जिसमें स्वर हैं लता मंगेशकर और साथियों के। इस गाने में गीत और संगीत प्रेम धवन का, फिल्म का नाम शहीद।

0: प्रेम धवन की ये रचना आप सुन रहे थे, जिसका संगीत तैयार किया था संगीतकार चित्रगुप्त ने। आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। जबक फिल्म का ये दो गाना भी आप सुन रहे थे। बढ़ेंगे अगले गाने की ओर, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

बड़ा आदमी फिल्म का ये गीत प्रेम धवन की रचना थी और संगीतकार थे चित्रगुप्त। चलिए अब बढ़ते हैं अगले गाने की बात। वल्लाह क्या बात है।

वल्लाह क्या बात है। जी हाँ, ये नाम है फिल्म का जिसका गीत आपने अभी सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। प्रेम धवन के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार रोशन ने। और अब आगे बढ़ते हैं एक फूल दो माली फिल्म के इस गाने के साथ।

0: एक फूल दो माली फिल्म से आपने ये गीत सुना। आशा भोसले और सखियों के स्वर थे। प्रेम धवन की रचना थी, रवि का संगीत। अगले गाने में भी रवि का ही संगीत है, प्रेम धवन की रचना है और इस बार आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी का स्वर है। ये दो गाना आप सुनेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में तराना फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रेम धवन के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार अनिल बिस्वास ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे हंसराज बहल के संगीत से सजा गाना मिलन फिल्म से, जिसे प्रेम धवन ने लिखा था। अगली रचना में गीत संगीत प्रेम धवन का, किशोर कुमार की आवाज़, फिल्म का नाम पवित्र पापी।

तेरी दुनिया से होके मजबूर चला।

पवित्र पापी फिल्म से ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाए जा रहे हैं सुप्रसिद्ध गीतकार

और संगीतकार प्रेम धवन की रचनाएं। और अब आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, प्रेम धवन का संगीत, मन्ना डे का स्वर, फिल्म का नाम काबुलीवाला।

मन्नाडे के गायक काबुली वाला फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, समय और जिंदगी दुनिया के दो बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ शिक्षक माने जाते हैं। जिंदगी सिखाती है समय का सदुपयोग और समय सिखाता है जिंदगी की अहमियत। तो चलिए आज का सुरीला सफर शुरू किया जाए, और उससे पहले आपको वो इबारत, वो टेक्स्ट पढ़कर मैं फिर से एक बार आपको सुनाऊंगी, ताकि आप उस टेक्स्ट में शब्द ढूंढ के गाने ढूंढ सकें। तो साथियों, आज के लिए जो टेक्स्ट हमने पोस्ट किया है आप तक पहुंच भी गया है, मैं आपको एक बार फिर से पढ़कर सुनाती हूँ। समय कभी रुकता नहीं, हर घड़ी हर पल, इसके साथ हमारी ज़िंदगी भी कई रंगों में बदलती रहती है। बचपन की नादानियाँ, यौवन के सपने और वृद्धावस्था का अनुभव, ये सभी समय के अलग अलग पड़ाव हैं। बचपन में छोटी सी टॉफी भी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। यौवन का दौर खुशी के मायने बदल देता है। सपने बड़े हो जाते हैं, आँखों से दिल में उतरने लगती है किसी की तस्वीर। समय के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। बदलते रिश्तों में कुछ करीबी पीछे छूटते जाते हैं, कुछ अजनबी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। समय के साथ जिंदगी में बदलाव आना निश्चित है। समय का दामन थामे कल आज और कल के साथ जिंदगी बदलती रहेगी। तो समय के साथ तुम भी चलो, हम भी चलें, हंसते हंसते अपनी जिंदगी के सुहाने सफर को सुरीला बना लें। तो साथियों, ये था आज का टेक्स्ट, आप तक पहुंच भी गया है, और मैं बीच में एक बार फिर इस टेक्स्ट को रिपीट करूंगी और उन शब्दों पर थोड़ा सा पॉज करूंगी, ताकि आप समझ सकें कि वो शब्द कौन से हैं जो हमने चुने हैं। बहरहाल, आपने बहुत सारे मैसेजेस में भेजे हैं, वो काफ़ी हद तक हमसे मिलते जुलते हैं, है ना। वैसे हमारी एक साथी लिखती हैं कि जीवन एक बहती नदी की तरह है, जो समय के किनारों से टकरा कर अपने रास्ते बदलती रहती है। ये बदलते मौसमों की तरह है, जहाँ बचपन की बेफिक्र बहार, यौवन की चिलचिलाती धूप और बुढ़ापे की ठंडी शामें सब अपनी अपनी खूबसूरती लिए हुए हैं। वक्त के इस सफ़र में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ आते हैं, बचपन के खिलौने, पुराने घर और वो दोस्त जो अब सिर्फ यादों में बसते हैं। पर साथ ही हम बहुत कुछ नया पाते भी हैं, नए रिश्ते, नए जिम्मेदारियाँ और नए तजुर्बे। सच तो ये है कि ठहराव मौत की निशानी है और चलना ज़िंदगी का नाम, तो क्यों ना वक्त की रफ्तार के साथ कदम मिलाकर चलें, हर मोड़ पर मिलने वाले नए रंगों को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी की किताब के हर पन्ने को मुस्कुराहट की स्याही से लिखकर इसे एक हसीन दास्तान बना लें। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां आपने लिखी हैं। तो साथियों, विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आज आपके साथ हूं मैं, शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए भाई, आप सबके कमेंट्स के सिलसिला हम जारी रखेंगे। अब फिलहाल हंसते मुस्कुराते हम भी शुरू करें आज का सुरीला सफर। सुनिए ये गीत, और हाँ, जरा बताइए तो आप समय के कितने पाबंद हैं।

हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई वाह शानदार गीत से आगाज, हंसते हंसते कट जाएं रास्ते। तो भाई जिंदगी का सफर है, हंसते मुस्कुराते कटे तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी को हमने पूछा था कि आप समय के कितने पाबंद हैं, तो भाई सभी ने अपनी अपनी पाबंदियां लिखी हैं कि हम कितने पाबंद हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हम तो समय के बहुत पाबंद हैं, उठना सोना खाना पीना पूजा पाठ सब समय के अनुसार होता है। सच बात है भाई, समय के साथ चलना भी पड़ता है। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि इस चिलचिलाती धूप में भी सुरीले गानों की बौछार विविध भारती से होगी, जो हम श्रोताओं को ठंडक का सुकून प्रदान करेगी। विविध भारती सचमुच मनभावन चैनल है, जो दिल को तरोताजा कर देती है। एक साथ ही लिखते हैं कि समय समय की बात है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जीवन की बगियार नए गुजरते बचपन जवानी बुढ़ापा के साथ जिंदगी, रिश्तों के हंसती बिखरती रिश्तों, जिंदगी बदलते रिश्तों के साथ जीना अवश्य सिखा देती है। और आगे लिखा है तो घबराए नहीं, जिंदगी सुख दुख दोनों में बदलते रिश्तों की बुनियाद भी रखती है। तो आगे दूसरे साथी क्या लिखते हैं कि समय के पाबंद पूरी तरह से तो नहीं है हम, पर हैं जहां समय पर पहुंचना

0: एक बात बिल्कुल सही। चले भाई, आपने एक बात बिल्कुल सही लिखी है, वैसे तो सारी बातें
1: ठीक लिखी हैं, अच्छी लिखी हैं, सही लिखी हैं कि जीवन में परिवर्तन भी जरूरी है। जी हाँ, तो वैसे ही परिवर्तन हुआ है हमारे कार्यक्रम में। नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, सुरीला सफर। ये छोटा सा परिवर्तन है और आप धीरे धीरे इसके इसमें ढल जाएंगे। शुरुआत में हर सफर, हर एक जो परिवर्तन होता है, थोड़ा कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन जब हमें उसकी आदत हो जाती है तो वही सफर, वही जो परिवर्तन रहता है, वो बहुत आसान हो जाता है।

बहरहाल हम भी समय के साथ आगे बढ़ेंगे, और वैसे तो समय अपने हिसाब से ही चलता है, लेकिन हम उससे रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि भाई तुम थोड़ा सा तो धीरे चलो, हमें अभी इस कार्यक्रम में कुछ और गीतों का आनंद लेना है, कुछ और आपके मैसेजेस पढ़ने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और ज़रा बताइए तो इस

चल समय। आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया कर्म फिल्म का ये गाना था। भाई हमने समय से एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप थोड़ा सा तो धीरे चलिए, क्योंकि अभी बहुत समय हमें लेना है, हमें अपने साथियों के कमेंट्स लेने हैं और गाने सुनवाने हैं। बहरहाल हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं समय का पाबंद हूँ या नहीं, पर समय पर रहना मेरा सगुल है। मैं ना किसी को इंतजार करवाता हूँ और ना ही कभी कहीं देर से पहुँचता हूँ। इंतजार कर सकता हूँ और बड़े ही धैर्य के साथ, पर कभी किसी से नाराज नहीं होता। अगर कोई इंतजार करवाता है तो क्योंकि सोचता हूँ कि उसकी कोई मजबूरी होगी। मैं कई बार वहाँ का जिलाधिकारी से मिलने गया था जो मेरे ही विद्यालय से था और बहुत जूनियर था, पर उसने 4 घंटे इंतजार करवाया, पर मैंने धैर्य नहीं खोया और मिलकर ही आया। जी बहुत अच्छी बात है कि जब हम किसी कोई हमें इंतज़ार करवाता है तो कभी कभी हम एकदम से चिढ़ जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये धैर्य बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात है। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि आपने तो मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मैं बचपन से लेकर आज तक कभी भी समय का पाबंद नहीं रहा। अपने दोस्तों अपने जान पहचान वालों में मैं लेट लतीफ के नाम से मशहूर हूँ। तो वैसे बताइएगा कि आप स्कूल भी लेट जाते थे। वैसे आगे इन्होंने लिखा है कि मैं स्टेशन पर तब पहुंचता हूं जब ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी होती है। अरे वाह भाई, तो फिर ट्रेन में चढ़ते कैसे हैं आप। आगे लिखते हैं कि लोगों की शादियों में लेट पहुंचता हूं, हद तो तब हुई जब मैं अपनी ही शादी में भी 1 घंटा लेट पहुंचा। मेरी बीवी तो कहती है कि थोड़ा और देर करते तो मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से करा देते। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि समय के साथ न चलने वाले जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। हम तो समय के साथ चलने में मानते हैं। बिल्कुल समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है और साथियों कुछ परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, उन्हें हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। तो वहीं एक साथी ने क्या लिखा है कि मेरी आदत यह है कि हमें किसी भी प्रोग्राम, मीटिंग, शादी या किसी से मिलना हो काम काज पर, समय से पहले जाने की आदत है। मेरा मानना है कि 12 बजे का समय दिया गया हो तो 11:45 पर हमें वहां होना चाहिए। भाई ये भी बात अच्छी है कि हम बिफोर टाइम हम वहां पर पहुंच जाएं। एक और कमेंट है कि वैसे तो मैं समय का पाबंद हूँ, पर कभी कभी मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि भाई बारिश शुरू हो गई है और आपका प्रोग्राम इतना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। एक और कमेंट आया है कि लवली सॉन्ग्स, व्हाट इज द थीम, वी डोंट नो, आवर फोकस ऑन ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो थैंक यू सो मच। एक साथी ने लिखा है समय के साथ इतने पाबंद थे कि 40 वर्षों तक सुबह 4 बजे उठना और गाड़ियों की अनलोडिंग लोडिंग कराकर नो एंट्री टाइम तक शहर से बाहर भेज देना रोज का काम था। ताजुब करेंगे कि 4-5 गाड़ियां तो रोज रहती थी, इससे ज्यादा भी, और मौसम चाहे बरसात हो या कड़कड़ाती सर्दी, रोज करते कंपनी को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेकिन समय ने ऐसे करवट ली कि फालिज मार गया और फिर सब छोड़कर स्वास्थ्य के लिए 5 सालों से घर पड़े विविध भारती सुनते समय गुजार रहे हैं। तो आप अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखें। एक साथ ही लिखते हैं कि जिंदगी का फलसफा यही सिखाता है कि हर खुशी के पीछे एक इम्तिहान छुपा होता है और हर दर्द के बाद सुकून का एक नया सवेरा आता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक बार टेक्स्ट एक बार फिर से आपको पढ़कर सुनाऊंगी, तो एक बार फिर मैं आपके साथ टेक्स्ट शेयर कर रही हूँ। समय कभी रुकता नहीं, हर घड़ी इसके साथ हमारी जिंदगी भी कई रंगों में बदलती है। बचपन की नादानियाँ, यौवन के सपने और वृद्धावस्था का अनुभव, ये सभी समय के अलग अलग पड़ाव हैं। बचपन में छोटी सी टॉफी भी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। यौवन का दौर खुशी के मायने बदल देता है। सपने बड़े हो जाते

लगते हैं, आंखों से दिल में उतरने लगती है किसी की तस्वीर। समय के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं, बदलते रिश्तों में कुछ करीबी पीछे छूट जाते हैं, कुछ अजनबी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। समय के साथ जिंदगी में बदलाव आना निश्चित है। समय का दामन थामे कल, आज और कल के साथ जिंदगी बदलती रहेगी, तो समय के साथ तुम भी चलो, हम भी चलें, हंसते हंसते अपनी जिंदगी के सुहाने सफर को सुरीला बना लें। तो साथियों, बात करें बचपन के दौर की, तो वो समय, वो नादानियां, जो एक बार गुजर जाता है ना, फिर वो नहीं आता। अपने बचपन की कुछ नादानियां, शैतानियां, शरारतें याद हो तो साझा कीजिए, कुछ पुराने दिनों को तरोताजा कीजिए आज हमारे साथ। हमारे एक साथी ने लिखा है कि जो संदेश, जो टेक्स्ट है, उसमें आखिरी में जो संदेश दिया है, हंसते हंसते अपनी जिंदगी के सुहाने सफर को सुरीला बना लें, असली में यही जीने का तरीका है। तो भाई, बिल्कुल यही तरीका है कि हंसते मुस्कुराते जीवन जिया जाए। तो बहरहाल, हम बचपन के दौर में चल रहे हैं, इस वक्त बातें उसी की कर रहे हैं, तो जरा अपने बचपन की शैतानियों को हमारे साथ साझा कीजिए और सुनिए ये गाना। जरा फिल्म का नाम तो बताइए।

तो गीता दत्त और आशा भोसले की आवाजों में बचपन से जुड़ा ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना और हमने पूछा था कि इस फिल्म का नाम क्या है। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि गानों के बारे में अगर आपसे कोई जानकारी मांगी जाए तो आप ना दें। बहरहाल आप सभी ने लिखा कि सुजाता फिल्म का ये सुंदर मधुर गीत बहुत अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा ये गाना सुनकर और आप सबके कमेंट्स देखकर। हमारी एक साथी ने लिखा है कि मैं मोबाइल महाराज को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूं कि मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, कि मैं कई बार समय से लेट हो जाता हूं अनेकों जिम्मेदारियों के कारण। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि मैं भी समय

की बहुत पाबंद हूँ, स्कूल की ओर हो या किसी भी कार्यक्रम में हो या शादी ब्याह जन्मदिन, सब में समय से पहुंच जाती हूँ। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि मैं समय हूँ, निरंतर चलता रहता हूँ, जैसे अपना जीवन को समय के साथ ढाल देना चाहिए, नदी की तरह बहना चाहिए। शुरुआत में छोटा झरना होता है, चलते चलते वन पहाड़ों जंगल कठिन रास्तों से गुजरती मैदानों को चीरती हुई कहीं गाँव कस्बों और शहर के सफर निरंतर करती समुन्दर की और मिलन में अपना अस्तित्व मिटा देती है। समय के साथ चलना चाहिए, बिल्कुल समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। तो भाई, हमारी एक सखी लिखती हैं कि महिलाओं पर लोग हंसते हैं कि वो कभी समय पर नहीं पहुंचेंगी क्योंकि वो तैयार होने में बहुत समय लगाती हैं। बहरहाल, आप बताइएगा कि आप कितना समय लगाती हैं तैयार होने में। तो एक साथी ने भेजा है कि आज के गीत हो सकते हैं हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, समय तू धीरे धीरे चल, सपने सुहाने लड़कपन के, आंखों से जो उतरी है दिल में, अजनबी कौन हो तुम, हम भी चलें तुम भी चलो। तो भाई देखते हैं कौन कौन से गाने हमारे आपके मिलते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात तो कभी बिना सामान चले, आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू, जिंदगी कैसी है पहेली इसी दौरान, आंखों से उतरी है दिल में और तस्वीर है एक अनजाने की, अजनबी तुम जाने पहचाने लगते हो तब उनसे कहिए कि तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। एक साथी ने लिखा है कि यौवन के सपने अक्सर भविष्य को लेकर आशावादी होते हैं, इसमें करियर प्यार और एक बेहतर जीवन की कामना होती है। यौवन के सपने सिर्फ करियर तक सीमित नहीं होते बल्कि इसमें भावनात्मक और संबंधों से जुड़े सपने भी शामिल होते हैं। युवा अवस्था में इंसान नए विचारों और कल्पनाओं से भरा होता है जो उनके सपनों को रंगीन बनाते हैं। इसे अक्सर जीवन का सबसे प्रभावशाली और यादगार समय माना जाता है। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि देखिए ना, एक छोटा बच्चा होता है वो कब बड़ा हो जाता है, फिर स्कूल जाता है, नौकरी करता है, अपना घर बसाता है, इस दौरान उसको कितने पड़ावों से गुजरता है और ये जो युवावस्था होती है वहां पर उसकी सोच भी बदलती है, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं। एक कमेंट में आया है कि जिंदगी में बदलाव ही एकमात्र निरंतर सत्य है, इसे रोकने के बजाय इसके साथ ढलना ही जीने का असली सलीका है। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ, वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, ये जो समय होता है ना, ये हमें अपने और परों की जो पहचान है वो करा देता है। हमारे जीवन के कठिन समय में, उस समय जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, अपने पराए अच्छे बुरे की पहचान हमें हो जाती है। देखने में आता है कि अक्सर जिंदगी के जो कठिन दौर होते हैं, कठिन समय होता है, उसमें अपने भी साथ छोड़ देते हैं लेकिन कोई अजनबी साथ दे जाता है। बहरहाल, हम बात कर रहे हैं एक यौवन के सपनों की, एक युवावस्था के, बचपन के बाद युवावस्था में आकर जो सपने आंखों में बुने जाते हैं अपने जीवन के सुनहरे काल के लिए, तो हम उस पे बात कर रहे हैं। क्या आपने अपने इस दौर में कौन से सपने बुने थे, जरा बताइए। तो और बहरहाल सुनिए, ये बहुत ही प्यारा सा गीत है जिसमें संगीत हेमंत कुमार का है।

बहरहाल लड़कपन के सपने आंखों में लिए, ये बड़ा ही प्यारा सा गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म थी 20 साल बाद। तो हमारी एक सखी लिखती हैं कि अगर आज टाइम मशीन होती तो सबके सब अपने बचपन में वापस जाना चाहते। भाई ये बात तो बिल्कुल आप 100% सही कह रही हैं, हमारा भी ऐसा ही मन करता है। और बताइएगा आप में से किस किस का ऐसा मन करता है। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि बचपन की प्यारी सी मासूमियत नादानी और शैतानियों को मधुर बनवा देती है, गुनाहों को माफ करवा देती है। और एक सखी लिख रही हैं कि देखो आपकी बातों ने हमें अपने साथी की फिर इतनी प्यारी सी बात याद दिला दी जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर वो समय से पहले ही चलते थे, हमेशा कहते थे थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए, कभी ट्रैफिक में फंस गए तो हम थोड़े लेट लतीफ। भाई आपने ये बात कह के हमें भी अपनी बात याद दिला दी कि मेरे भी पापा ऐसे ही कहा करते थे कि जहां जाना है वहां समय से पहले पहुंचना चाहिए। तो भाई दूसरे साथी ने लिखा है कि भाई क्या बात है, आज लॉटरी लग गई, अभी तक 3 गाने बजे मेरी लिस्ट में से। वाह क्या बात है भाई, हमारी आप सबकी पसंद काफी हद तक मिल रही है। तो दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि हमारे पापा जी ने हम बच्चों को समय का मूल्य अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि समय सभी कीमती है, हमारा भी और दूसरों का भी, तो न कभी अपना समय नष्ट करो न दूसरे का। समय के साथ चल सको तो बहुत अच्छा, पर समय से पीछे होना जीवन में कभी कभी दुखदायी हो सकता है, विशेषकर परीक्षा के लिए। जब किसी को आपने समय दिया हो या किसी ने आपको दिया हो तब समय को प्राधान्यता देनी चाहिए। बहुत सटीक बात है। तो कुछ बचपन की यादें ताज़ा हुई हैं। भाई हमारे साथियों की लिखा है कि बचपन में हम आम के बागीचे में आम मारते थे और बगीचे के मालिक से पकड़े जाने पे कहते थे कि अब आम नहीं मारेंगे, लेकिन फिर वही गलती दोहराते थे और बगीचे में जाकर आम मारते थे। ऐसा कौन करता था ज़रा बताइएगा। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि अपना बचपन भी बड़ा कमाल का हुआ करता था, न कल की फिक्र न आज का ठिकाना हुआ करता था, वक्त से पहले ही वो हमसे रूठ गई है, बचपन की मासूमियत न जाने कहाँ छूट गई है। बचपन के दिन भी कितने अच्छे होते थे, तब दिल नहीं सिर्फ खिलौने टूटा करते थे, अब तो एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं होता और बचपन में जी भर कर रोया करते थे। अजीब सौदागर है ये वक्त भी, जवानी का लालच देकर बचपन ले गया। एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट है, बचपन की बात क्या कहूँ, सचमुच बचपन तो बचपन ही होता है। आज तक वो खुशियां नहीं मिली जो स्कूल के दोस्तों के साथ मिली थी। जैसे ही पीरियड खाली रहता है बस स्कूल के पीछे इमली का पेड़ था, पैंट की जेब में इमली भरकर लाया करते थे और पूरी क्लास में अपने अपने टेबल के नीचे कचरा करते थे, लेकिन जिस दिन पकड़े जाते हैं उस दिन खूब पिटाई होती और इमली भी जब्त हो जाती है। मेरे ख्याल से ऐसी शरारतें हम सभी किया करते थे। तो वहीं हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बचपन की बहुत सारी चीज हम मिस करते हैं। जब बारिश हो जाती थी और हम स्कूल से लौटते थे तो सड़कों पर पानी भरा रहता था और हम उसमें पानी में छपक छैया करते हुए एक दूसरे से को उस पानी से भिगोते थे। आज भी सड़कों पर पानी देखती हूँ तो मुझे डम डम डिगा डिगा वो राज कपूर साहब वाला स्टाइल करने को मन करता है, पर जब अगल बगल लोगों को देखती हूँ

बस ये रह जाता है। ओहो एक कमेंट में लिखते हैं कि वक्त हमें सिखाता है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। पुराने दोस्त पीछे छूट सकते हैं, नए लोग जुड़ते हैं और परिवार की अहमियत सबसे ऊपर आ जाती है। हम रिश्तों में शब्दों से ज्यादा उपस्थिति और भरोसे को तलाशने लगते हैं। बचपन में जो छोटी सी बात दुनिया का अंत लगती थी, उम्र के साथ समझ आता है कि वो सिर्फ एक अनुभव था। समय हमें प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रतिक्रिया को चुनने की समझ देता है। बिल्कुल साथियों, समय के साथ साथ बहुत बदलाव होते हैं, हमारे सपने बड़े हो जाते हैं और फिर आंखों से दिल में किसी की तस्वीर, कोई एक नया चेहरा हमारी जिंदगी में शामिल होने लगता है।

ओपी नैयर का यादगार संगीत आप सुन रहे थे। फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म का ये गाना आशा भोसले की आवाज में आपने सुना। बिल्कुल साथियों, यही वो दौर होता है जब आंखों में एक तस्वीर उभरती है और कोई अजनबी जिंदगी में शामिल होता है। वैसे जब हमारे अपने हमारा साथ छोड़ देते हैं तो कोई अजनबी ही होता है जो हाथ थामता है और यही कहता है कि घबराओ मत, मैं हूं ना। ढेर सारे हमारे कमेंट्स हैं हमारे पास और अपने अपने कुछ अनुभव साझा किए हैं, यादें साझा की हैं साथियों ने। हमारे एक साथी लिखते हैं कि बाहर कहीं नहीं पर स्कूल में आम के पेड़ पर आम के टिकोले के लिए पत्थर मारा करते थे, तब पूरी स्कूल को सजा मिलती थी, कान पकड़कर क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ता था।

तो साथी दूसरे लिखते हैं कि समय जिस तरह बदलाव होता है उसी तरह रिश्तों में भी बदलाव आ जाता है। वो बचपन का समय क्या खूब होता है जो आज तक नहीं भूल सकते। अच्छा, एक साथी लिख रहे हैं कि देखिए हमारी और आपकी पसंद मिल गई आंखों से जो उतरी है दिल में गाने को लेकर, और आगे लिखा है कि आप जब कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी तो बैकग्राउंड में वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ उसका म्यूजिक बजता था। तो भाई देखिए जब बदलाव हो रहे हैं तो हमने भी सोचा क्यों ना इस बदलाव में हम भी शामिल हो जाएं, तो इसलिए हमने ये थोड़ा सा बदलाव कर लिया है। एक साथी लिखते हैं कि देखो आपकी बातों ने हमें कुछ बातें हमें याद दिला दी, ऐसा इन्होंने अगर कुछ हमें लिखकर भेजा है। वो मुझे क्लियर नहीं इसमें दिख रहा है, कुछ इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है। आगे हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आज के सुरीला सफर, रोमांचक सफर में इबारत के रहस्यों के बीच कई फिल्मों के गाने हमें सुनने को मिल रहे हैं। और एक साथी ने लिखा है कभी कभी एक अजनबी इंसान आपको उतना समझ लेता है जितना आपके करीबी भी नहीं समझ पाते। कुछ लोग किस्मत बनकर जीवन में आते हैं और धीरे धीरे रूह यानी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं। ये अजनबी जो शुरुआत में अजनबी होते हैं समय के साथ यादों और भावनाओं का अहम हिस्सा बन जाते हैं, और ये जीवन की अनिश्चितता और मानवीय रिश्तों की सुंदरता को दर्शाता है कि अनजान लोग भी जीवन को कैसे खुशनुमा और खास बना देते हैं। बिल्कुल, और जब अजनबी का साथ हो तो थोड़ी सी चूहल भी हो जाती है एक दूसरे को जानने के लिए। बहरहाल ये गाना सुनिए और जरा फिल्म का नाम बताइए।

अजनबी से बन के करो ना इशारा, हमने पूछा था ये गाना किस फिल्म का है। तो भाई आप सबने लिखा कि ये फिल्म है एक राज, किशोरदा की आवाज का जादू है इसमें और साथ लता मंगेशकर का। एक साथी लिख रहे हैं कि सुरीला सफर के साथ एक घंटा कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो भाई दूसरे साथी बड़े खुश हैं, वो लिख रहे हैं कि आज मेरी लिस्ट से अभी तक 3 गाने बच चुके हैं, आभारी हूं आपका और विविध भारती का। भाई हम आभारी हैं आपके इतने सारे कमेंट्स के लिए और इतने शिद्दत से हमारे साथ जुड़ने के लिए, शब्दों को चुनने के लिए, गानों को चुनने के लिए। तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि समय के साथ रिश्तों में भी बदलाव आ गया है। पहले ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थीं जहां सब रिश्ते हुआ करते थे, पर अब न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं जहां रिश्ते 4 लोगों में सिमट कर रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बहरहाल कहीं कहीं आज भी जो ज्वाइंट फैमिलीज हैं वो रह रही हैं और बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि बहुत याद आता है अपना बचपन, पीछे मुड़ के देखती हूँ तो माँ पापा दीदी छोटा भाई और भरा पूरा परिवार था, लेकिन सबने साथ छोड़ दिया, अब हम अकेले रह गए हैं, लेकिन सच तो सच को स्वीकार करना पड़ता है। एक साथी ने लिखा है कि बहुत ही खूबसूरत और गहन चिंतन है समय के इस अनमोल प्रवाह पर, आपकी ये पंक्तियां बचपन की मासूम खुशियों से लेकर यौवन के सपनों और वृद्धावस्था के अनुभवों तक जीवन के हर पड़ाव को इतनी कोमलता से बुनती हैं कि मन झूम उठता है। समय का वो दामन जो रिश्तों को नए रंग देता है, कभी छोड़ कर जाता है, कभी नए मेहमान लाता है, सचमुच जीवन का सार है।

आदमी और इंसान फिल्म से ये गाना आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज़, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस गाने को पसंद किया। एक साथी ने लिखा है कि वाओ, मेरा तीसरा गाना भी आपसे, आपकी चॉइस से मिल गया। देखिए ना, हम सब की चॉइस कितनी मिलती है। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं कि भाई, मेरी लिस्ट का ये चौथा गाना फिल्म एक राज का, जो आपने अभी इससे पहले सुना था, वो जो किशोर कुमार जी का था, वो भी मिल गया। तो दूसरे साथी ने लिखा है, कुछ बातें याद की हैं कि हमारे समय में माता पिता और घर के बड़े बुजुर्ग शादी ब्याह कराते थे और जीवन साथी मिलना तो दूर, फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकते थे, और आज तो लड़का लड़की की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। ये जीवन का बहुत बड़ा बदलाव है और परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। बात तो बिल्कुल सही है। एक साथी लिखते हैं कि विविध भारती के सभी साथियों को राधे राधे, और मेरे पापा बोलते थे कि हमेशा समय पर जहां जाना, समय पर जाना, समय कितनी जल्दी निकल जाता है। पापा ने भी जाने की बहुत जल्दी की, समय से पहले ही चले गए, बस उनकी यादें रह गई। ये बात आपने शायद मेरे मन की जान ली। जो बहरहाल, आपकी ये बात मुझसे बहुत मिलती जुलती है। एक साथी ने लिखा है कि बचपन, यौवन और अंतिम पड़ाव के अनुभव मनुष्य को अपने जीवन के चार पड़ाव पार करने होते हैं। सभी का अनुभव जीवन को खूबसूरत बनाता है, अगर हम सकारात्मक सोच के साथ सभी को साथ लेकर चलें। गलती

उसे सबक लें, आज खूबसूरत गजल ये दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, मेरा एक सपना है, मेरा नाम करेगा रोशन, तमाम गाने इन्होंने लिख भेजे हैं। तो भाई बिल्कुल, अगर हम एक दूसरे को साथ लेकर चलें, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ें, तो ज़िंदगी बेहद खूबसूरत हो जाएगी।

हमारे एक साथी लिखते हैं कि तुम भी चलो हम भी चलें, सुरीला सफर अब अंतिम पड़ाव पर रुकना नहीं है, हमें तभी आगे बढ़ाना है प्रोग्राम को। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि बहुत रोचक और एक शानदार लाजवाब कार्यक्रम, कब एक घंटा पार हुआ, वक्त का पता ही नहीं चला। तो इसी के साथ हम भी चलते हैं और मिलेंगे आपसे कुछ थोड़ी देर के बाद अगले कार्यक्रम में। बहरहाल आप सभी का दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के सुरीला सफ़र कार्यक्रम को और सुरीला और सुहाना बनाने के लिए। यूं ही जुड़े रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: सबसे पहले श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, लेसी सिंह, निशांत कुमार और दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, अशोक चौधरी, दामोदर रावत और संजय सिंह टाइगर को शपथ दिलाई गई। शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, सुनील कुमार, श्रेयसी सिंह, मोहम्मद जमा खान, नंद किशोर राम और प्रमोद कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। रमा निषाद, संतोष कुमार सुमन, भगवान सिंह कुशवाहा, मदन सहनी और अरुण शंकर प्रसाद को भी राज्यपाल ने शपथ दिलाई। अंत में रामचंद्र प्रसाद, संजय कुमार, श्वेता गुप्ता, संजय कुमार सिंह, मिथिलेश तिवारी और दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मुख्य मंच पर मौजूद थे। इस दौरान गांधी मैदान में भारी संख्या में एनडीए गठबंधन दलों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का सबसे अधिक मंत्री बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 5 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। जनता दल यू की ओर से 4 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विधायकों को मंत्री बनाया गया है। राज्य मंत्रिमंडल में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मंत्रियों की कुल संख्या 9 हो गई है। सम्राट मंत्रिमंडल में 5 महिला मंत्रियों को जगह दी गई है। इनमें भाजपा से जमुई विधायक और पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह और मुजफ्फरपुर के औराई से विधायक पूर्व मंत्री रमा निषाद शामिल हैं। वहीं जदयू कोटे से पूर्णिया के धमदाहा से विधायक और पूर्व मंत्री लेसी सिंह, मधुबनी के फूलपरास से विधायक और पूर्व मंत्री शीला कुमारी और शिवहर से विधायक श्वेता गुप्ता को कैबिनेट में जगह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना हवाई अड्डे से समारोह स्थल गांधी मैदान तक सड़क के रास्ते गए। इस दौरान सड़क के दोनों किनारों पर उत्साहित लोगों की भीड़ ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से अलग अलग जगहों पर पारंपरिक नृत्य और गीतों की प्रस्तुति दी गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल की शुरुआत की। इस अवसर पर पटना के बिहटा स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के विभिन्न भागों में आंधी बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज भी पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका समेत राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवा के साथ बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना जिले में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ बारिश हुई है। इस अवधि में पूर्वी चंपारण के तेतरिया में सबसे अधिक 59.2 मिलीमीटर, सीवान के महाराजगंज में 54.2 और समस्तीपुर के पूसा में 52.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: अच्छा ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
0: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभवाणी,
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के 9175 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम पद के अनुसार 23 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। अंतिम तिथि 19 मई 2026 है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.crpf.gov.in। कर्मचारी चयन आयोग ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए स्टेनोग्राफर के 731 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम ग्रुप डी के लिए 27 और ग्रुप सी के लिए 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 15 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता है www.ssc.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार प्रसारित करें। दोपहर समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
5: नमस्कार, समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने

0: 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक क्षण बताया जब भारत ने शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास में इस दिन को भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत और उसके सटीक निशाना लगाने की क्षमता तथा देश की खुफिया एजेंसियों की सूझबूझ के लिए जाना जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौतियों का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।
0: भारतीय सशस्त्र बलों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडरों का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान दृढ़ संकल्प के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ एक नारा मात्र नहीं रह गया है। श्री घई ने बताया कि भारत के 65% से अधिक रक्षा उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत के सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभक्ति दर्शाने वाली रंगोली बनाई। देशभक्ति के विषयों और राष्ट्रीय प्रतीकों से सजी इन रंगोलियों को एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। इसमें स्थानीय निवासी और महिला प्रतिभागी शामिल थीं। आज के ही दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने अत्याधुनिक मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग करके ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
2: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
3: विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीते, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए ना प्रीति। जी श्रोताओं, बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान

0: और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। सिंदूर नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। ये अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुण भुजंगक्ष्व राज्यम समृद्धम मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन।
1: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जेडीयू के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री है। मंत्रियों ने पहले 5-5 के समूह में और फिर 6-6 के समूह में शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 13 ने आज गांधी मैदान में शपथ ली। श्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अप्रैल में सम्राट चौधरी के साथ शपथ ली थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री नामित किया गया था। 243 सदस्यीय विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी है। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। श्री विजय ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। कल उन्होंने पार्टी विधायकों की सूची और कांग्रेस का समर्थन पत्र राज्यपाल को प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत दिखाने के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसी के नेता थिरु मावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद श्री विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। उनके पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि केरलम में नए मुख्यमंत्री का नाम पार्टी आलाकमान तय करेगी। हालांकि आज तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस के पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बैठकें कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों का उद्देश्य सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के विचारों को जानना और उनकी मंशा को दल के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना है। राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री का नाम रविवार तक तय होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविंद्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
4: बंगाल के नया मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चल रहे अटकलों पे

0: विराम लग सकता है। उस दिन शाम 4 बजे न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधानमंडल दल की पहली बैठक बुलाया गया है। उसी बैठक में औपचारिक रूप से विधानमंडल दल की नेता का चयन हो सकता है, अर्थात बंगाल का नया मुख्यमंत्री के ताज किसके सर सजेगा, इसके संकेत इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से मिल सकता है। राजनीतिक महल की नजर एक और बात पर भी टिकी हुई है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कलकत्ते में मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेतृत्व चाहते हैं कि नेता के चयन सर्वसम्मति से हो, साथ ही सरकार गठन के पहले विधायकों को एकजुट रखने का संदेश भी देना चाहते हैं दल। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे कभी नहीं झुके। इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 सदस्य विशेष जांच दल का भी गठन किया है। कल रात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी तथा अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के दौरान लागू आचार संहिता को हटा दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान होने के कारण वहां आचार संहिता लागू रहेगी। फलता में मतदान 21 मई को और मतगणना 24 मई को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2: आज से 1 दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
1: अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से अब आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। गुजरे जमाने के कुछ दिलकश, कुछ नायाब, कुछ अनमोल सदाबहार नगमों के साथ हाजिर हैं हम। स्वागत है आपका कार्यक्रम आपका अपना सदाबहार नगमे।

नमस्ते जी, फिल्म का ये गाना बना आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। लता मंगेशकर की आवाज़, अनजान के बोल, जीएस कोहली का संगीत। अगला गाना क्या कहता है दिल की बात, आइए सुने साथ साथ।

0: भाई ये दिल की बातें हैं दिल ही जाने। बहरहाल गेस्ट हाउस फिल्म का गाना सुन रहे थे आप लता मंगेशकर की आवाज़ में। प्रेम धवन के बोलों को सुरों में ढाला था चित्रगुप्त ने। बढ़ेंगे आगे एन दत्ता के संगीत से सजे गाने की ओर, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मेरे दिल पे हाय इतना तुम्हें इख्तियार क्यों है। बड़ी ही खूबसूरत सी बात ब्लैक कैट फिल्म के इस गाने में आपने सुनी। जानिसार अख्तर के बोल थे, एन दत्ता का सुरीला संगीत, लता मंगेशकर की कर्णप्रिय आवाज।
1: हर तरफ

मदन मोहन के संगीत से सजा ये गाना आपने सुना, कैफी आजमी के बोल थे, मन्ना डे का स्वर, फिल्म का नाम हिंदुस्तान की कसम। अब बढ़ते हैं शंकर जयकिशन के संगीत की ओर। शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज़। क्या कहता है ये गीत, आइए सुनें।

लता मंगेशकर के स्वर में पतिता फिल्म का ये गाना आपने सुना। अगले गाने में भी स्वर लता मंगेशकर का है। राजा मेहंदी अली के खां के बोल हैं, मदन मोहन की तर्ज। आइए सुने दुल्हन एक रात की इस फिल्म का ये गाना।

महेंद्र कपूर की आवाज़, असद भोपाली के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आप सुन रहे थे फ्री लव फिल्म का गाना और यही थी आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। सखियां आ चुकी हैं स्टूडियो में, सखी सहेली कार्यक्रम शुरू होने में बस चंद मिनट बाकी। फिलहाल आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाज़त, आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और एक लंबे अरसे के बाद इस मंच के साथ आपकी और हमारी भेंट हुई है।
1: बिल्कुल। और इस भेंट में ये देख रही हूँ कि निजात, इतनी भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए आपके चेहरे पर जो सुकून दिखाई दे रहा है ना स्टूडियो में एसी की ठंडक में, वो अलग ही बता रहा है कि आप भीषण गर्मी से हाल बेहाल हैं सब लोग, हम सब।
2: हाँ, सभी का इन दिनों तो कह सकते हैं कि देश के हर हिस्से में जिस तरह से गर्मी ने अपना प्रचंड रूप ले लिया है तो हर कोई त्रस्त है और वो यही देखता रहता है कि कहीं कोई छांव मिल जाए।
1: और ऐसे तो छांव सड़क पे, खुली सड़क पे तो छांव ढूंढते रहते हैं, तो एक जरा सी छाया मिलती है, पेड़ जब पत्तियां हिलती हैं तो एक जरा सी हवा चलती है, ठंडी हवा जिसे हम कह सकते हैं। हाँ। लेकिन गानों की छांव ऐसे सुकूनदेह है कि ठंडी हवा के जब गाने सुनते हैं तो सचमुच हमें सुकून मिल जाता है। लेकिन ठंडी हवा की छांव में चलने से पहले जरा आज के विषय पर हम गौर फरमा लें।
2: हाँ, तो जो हमारे साथी जुड़ चुके हैं और अभी तक उन्होंने फेसबुक की पोस्ट नहीं देखी है, जो फेसबुक से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी पता लग जाएगी किन विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो आपने जब ठंडी हवा की बात करी ना, तो भाई उसके लिए पर्यावरण का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी होता है।
1: बिल्कुल।
2: ताकि पर्यावरण अच्छा रहे, पेड़ पौधों से भरा हुआ वातावरण हो, तो एक ऐसी महिला जिसने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया उनकी आज हम बात करेंगे। और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये हैं तुलसी गौड़ा, इनकी आज बात होगी।
1: पर्यावरणविद हैं, इनके बारे में बताएंगे। और गर्मी से निजात पाने के लिए कपड़ों का ध्यान रख रखाव भी ज़रूरी है कि हम कौन सी पोशाक पहनते हैं गर्मी के मौसम में। कई बार बहुत सिंथेटिक कपड़ा या सिल्क पहन के धूप में, तपती दोपहरिया में, या बहुत डार्क कलर पहन के निकल जाते हैं तो आपको गर्मी का एहसास और ज़्यादा होता है, बल्कि पसीना ज़्यादा आता है। गर्मी में कॉटन कपड़े पहन के निकलें तो ज़्यादा आपको ठंडक महसूस होगी।
2: और आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कुछ कपड़े जिन्हें कई बार हम थोड़े ही दिन पहना, उन्हें बस यूज़ नहीं हो रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उनको फिर से अगर पहनने का मन करे तो उनको एक नया रूप देकर किस तरह से पहना जा सकता है। या कई कपड़े बहुत बार पहनने के बाद भी कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, कपड़ा अभी तक चल रहा है, तो अब इसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो तरीके हैं कि पुराने कपड़े को किस तरह से एक नया लुक देना है, इसके बारे में बात।
1: बिल्कुल, तो ये ज्ञान की बातें हो जाएंगी। और गर्मी के मौसम में सड़क पर चलते हैं तो कैसा लगता है, खुली सड़क पर जब निचाड़ धूप होती है तो बहुत तकलीफ होती है ना। तो
2: कई बार ऐसा होता है ना कि लगा हुआ है रेड सिग्नल, लेकिन क्योंकि धूप में खड़े नहीं रहना तो सिग्नल तोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। कि यातायात के नियमों का उल्लंघन कई बार गर्मी से बचाव में भी हो जाता है, लेकिन सड़क पर चलते हुए खुद के लिए भी और जो अन्य लोग चल रहे हैं, चाहे वो वाहन में है या पैदल हैं, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इसलिए कुछ बातें सड़क सुरक्षा की।
1: एक और ज़रूरी बात है, वो कौन सी है बताइए ज़रा, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं।
2: बिल्कुल, क्योंकि गर्मियों की जब बातें इतनी सारी चल ही रही हैं तो एक बहुत विशेष उपकरण है रेफ्रिजरेटर, जो सबके घर में है। और कई बार उसकी अगर साफ सफाई ना की जाए या कुछ सामान ऐसे रख दिया जाए जिनमें से गंध अलग तरह की आने लगती है, तो जो अन्य खाने की सामग्री रखी है उसको भी वो प्रभावित कर देता है। तो उस गंध से कैसे बचा जाए, इसके टिप्स हमारी सखियां हमारे साथ जरूर साझा करें।
1: और हम अब साझा कर रहे हैं ये ठंडी छांव और सुकून दे गाना, जिससे हमें छांव मिलेगी, ठंडक भी महसूस होगी
2: जी,
1: और पर्यावरण के रखरखाव, पर्यावरण की सुरक्षा की भी बातें हम सोच सकते हैं इस गाने को सुनते हुए। सुनते ही ये गाना।

0: ठंडी हवा के झोंके जब चलते हैं तो यादों का कारवां भी चलता है
1: जी।
0: और छांव तो मिलती है, सुकून मिलता ही है। और हमने कार्यक्रम की शुरुआत में चर्चा की है चंचल जी कि आज पर्यावरण विद तुलसी गौड़ा के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि इस तपती दोपहरी में, तपती गर्मी में जहाँ भीषण गर्मी है, पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है, ऐसे में पर्यावरण की बातें करके पर्यावरण की ओर ध्यान देना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी प्रजाति के वृक्ष की, मातृवृक्ष को पहचानने की उनकी क्षमता के कारण तुलसी गौड़ा को वन का विश्वकोश कहा जाता था। वृक्ष देवी के नाम से भी वे जानी जाती थी, क्योंकि उन्हें वनों का बहुत गहरा ज्ञान था। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा एक प्रेरणा बनी रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को भी हमारी पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रेरित करती रहेगी।
1: और बहुत से पर्यावरणीय परिवर्तन और प्रदूषण जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी मनुष्यों की गतिविधियां, जैसे जो औद्योगीकरण बहुत बढ़ रहा है या वनों की कटाई हो रही है, इसके कारण जो भी उत्पन्न होते हैं उनसे वनों को भी बहुत क्षति पहुँचती है। इन्हीं वनों के संरक्षण के प्रति उनकी जो गहरी प्रतिबद्धता थी, इस क्षति को कम करने के लिए वो सहायक हो सकती थी। और इनकी शुरुआती जीवन की अगर हम बात करें तुलसी गौड़ा की, तो इनका जन्म हुआ साल 1944 में कर्नाटक के होन्नाली गांव में। बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ और जब वो सिर्फ 2 साल की थी तभी पिता का साथ भी छूट गया। इसलिए जब वो बड़ी हो रही थी तो अपनी माँ, जो वो काम किया करती थी एक स्थानीय नर्सरी में दिहाड़ी मजदूर के रूप में, उनके साथ वो चली जाया करती थी। और औपचारिक शिक्षा वैसे तो इन्हें कभी नहीं मिली, ना इन्होंने स्कूल जाकर कभी सीखा, लेकिन तुलसी गौड़ा कर्नाटक वन विभाग में नर्सरी में जो भी उगाए जाने वाले बीज थे उनके देखभाल का कार्य किया करती थी। उन्होंने बीजों के संरक्षण में अपने कार्यों और वनस्पति विज्ञान को देखते हुए स्थायी पद की पेशकश के लिए जाने

0: तक अपनी माँ के साथ नर्सरी में दिहाड़ी मजदूर के रूप में 35 सालों तक काम किया और 70 साल की उम्र पूरा होने तक यानी कि सेवानिवृत्त होने से पहले करीब करीब 15 वर्षों तक नर्सरी में इसी स्थायी पद पर उन्होंने काम किया था।
1: और इसके अलावा नर्सरी में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भूमि के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए वन विभाग के वृक्षारोपण प्रयासों में भी योगदान दिया और प्रत्यक्ष रूप से काम किया। पौधों को रोपने के साथ साथ उन्होंने वन्य जीवों को नष्ट करने वाले शिकारियों और जंगल की आग को रोकने के लिए भी काम किया।
0: तुलसी गौड़ा ने कर्नाटक वन विभाग में रहते हुए करीब 60 सालों से भी अधिक समय तक सेवा की इन जंगलों की, इन पेड़ पौधों की, और इसने एक सामुदायिक अभयारण्य, 5 बाघ अभयारण्य, 15 संरक्षण अभयारण्य और करीब 30 वन्य अभयारण्य शामिल हैं। और उनका उद्देश्य गांवों को प्रकृति से फिर से जोड़ देना था, क्योंकि लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं ना, इसीलिए। और तुलसी गौड़ा को पर्यावरणविदों ने वन का विश्वकोश कहा, जैसा कि आपने शुरू में बताया, और वृक्ष देवी के रूप में भी वो जानी जाती रहीं, क्योंकि उन्हें वन और पौधों का बहुत ही गहरा ज्ञान था। और वन में कहीं भी लगाए हुए पेड़ों की प्रजाति के जो मात्र वृक्ष हैं, उनकी पहचान किस तरह की जाती है, इसमें उनको एक अद्भुत क्षमता हासिल थी। तुलसी गौड़ा बीज इकट्ठा करने और उन्हें पहचानने में भी विशेषज्ञ थी। सभी तरह के जो पौधे होते थे, उनकी प्रजातियों को फिर से जीवित किस तरह से करना है, दोबारा उनको विकसित करने के लिए मात्र वृक्ष से बीज किस तरह निकालना है, ये एक बहुत कठिन प्रक्रिया होती है, लेकिन तुलसी गौड़ा इसमें सक्षम थी।
1: और इसके अलावा तुलसी गौड़ा खुद भी कभी किसी को ये नहीं समझा सकी कि उन्होंने जंगल के बारे में इतना ज्ञान कैसे पाया, लेकिन वो ये ज़रूर कहती थी, ऐसा लगता है जैसे वो जंगल की भाषा बोल सकती हैं। उनके समुदाय की परंपराओं में मातृसत्ता प्रकृति से जुड़ी हुई है और भूमि की देखभाल भी करती है।
0: ऐसा अनुमान ममता जी लगाया जाता है कि तुलसी गौड़ा ने कर्नाटक में अकेले ही करीब 1,00,000 के करीब उन्होंने पेड़ लगाए हैं, और उनके गांव के आसपास के क्षेत्र में तुलसी गौड़ा को वहां का गौरव भी लोग मानते हैं। उन्हें जंगल और औषधीय पौधों का अमूल्य ज्ञान था। उन्होंने जो भी पौधे लगाए उनमें बहुत ज़्यादा जो पौधे थे वो औषधीय पौधे भी थे, और इनका उपयोग उस वक्त बहुत ज़्यादा किया गया जब गाँव के लोग बीमार पड़ जाया करते थे।
1: हालाँकि एक समय जब वो कर्नाटक वन विभाग से सेवानिवृत्त हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपने गांव के बच्चों को जंगल के महत्व के साथ साथ बीज खोजने और उनकी देखभाल करने के बारे में सिखाना जारी रखा।
0: तुलसी गौड़ा ने अपने गांव की महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया, और जब कुछ कहा सुनी के बाद कई ऐसे भी मामले होते हैं कि कुछ मार पिटाई भी हो जाती है, कुछ झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे मामलों में भी वो आगे आई और किसी निरपराध को उन्होंने कभी सजा नहीं होने दी। और पुरस्कार और सम्मान भी जब कोई ऐसा काम करता है तो वो भी उन्हें दिए जाते हैं। अब उन्हें क्या क्या मिला इसके बारे में बताते हैं। साल 1986 में तुलसी गौड़ा को इंदिरा प्रियदर्शिनी वर्ष मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसे IPVM पुरस्कार के नाम से भी हम जानते हैं। और ये पुरस्कार वनीकरण और बंजर भूमि विकास के योगदान के लिए किसी व्यक्ति या किसी संस्थान को दिया जाता है। इसके बाद साल 1999 में तुलसी गौड़ा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ, जो कर्नाटक राज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और साल 2020 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च सम्मान है। और ये सम्मान मिलने पर भी तुलसी गौड़ा का कहना ये था कि पद्मश्री प्राप्त करके उन्हें खुशी तो है, लेकिन फिर भी जंगल और पेड़ों को वो ज़्यादा महत्व देती हैं।
1: और उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी समुदायों को शामिल किया जो आसपास के समुदाय थे। इससे सामूहिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित हुई लोगों में और लोग खुद भी पहल करने के लिए आगे आए। उनके प्रयास से कर्नाटक के बहुत सारे बंजर क्षेत्रों को पुनर्जीवित करके फिर से पर्यावरण के संतुलन को बहाल किया गया, और उन्होंने आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जंगलों और उनके संसाधनों के संरक्षण के महत्व के बारे में भी शिक्षित किया, जिससे देश और समाज का कल्याण हो सकता है।
0: और फिर आया 16 दिसंबर 2024 का दिन, जब उनकी उम्र करीब 86 साल की थी। इस समय वो इस संसार को छोड़कर, हम सभी को छोड़कर चली गई, और तुलसी गौड़ा की विरासत हम सबके लिए प्रेरणा है और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली है। उन्होंने हमें समझाया कि कोई भी पहल पर्यावरण में बदलाव ला सकती है। उनका जीवन हमें प्रकृति की देखभाल और जुड़ाव की महत्वपूर्ण संस्कृति को विकसित करने का संदेश देता है।
1: और जब हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तो ये बात अपने आप से कह सकेंगे।

0: तो भाई ये बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज़ थी, भरत व्यास की ये रचना थी, सतीश भाटिया का संगीत था।
1: अच्छा ममता जी, इससे पिछली बार जब हम मिले थे विविध भारती में और हम जब गेट पर ही थे तब उल्टी दिशा में आप जा रही थी बड़ी तेजी से।
0: अरे बड़े ध्यान से आप देखती हैं।
1: भाई क्या होता है ना, सीधी दिशा में तो सभी चल रहे थे, अचानक आपको जब उल्टी दिशा में जाते देखा मैंने, तो मैं समझ नहीं पाई कि कारण क्या है। तो आज जब मुलाकात हुई तो लगा यही पूछ लूं।
0: ठीक, सवाल बिल्कुल सही है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बाएं तरफ चलो
1: जी,
0: और एकदम किनारे किनारे चलो।
1: हाँ।
0: जो सड़क के किनारे जो बना रहता है, जिसको हम पैदल यात्रियों के लिए चलने के लिए बना रहता है, वहां चलना चाहिए, ये सिखाया जाता है हमें।
1: इसीलिए सिखाया जाता है ना कि भाई सुरक्षा के मद्देनजर ये जरूरी भी तो है।
0: और सड़क सुरक्षा के बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन कुछ लोग तो बहुत सदाशयता

0: के साथ करते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। तो वो नियम उस दिन पालन मैंने नहीं किया, लेकिन आपने पूछा कि क्यों चल रही थी, उसकी एक वजह है। देखो, सड़क के किनारे चलने के लिए जो कई बार छायादार वृक्ष लगे होते हैं, बाईं तरफ हम चलते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सड़कें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, और ख़ासतौर से हाईवेज जो होते हैं, वहाँ पर तो आपके लिए पैदल चलने के लिए कुछ बना नहीं होता है। और हाईवे ना हो तो भी कुछ सड़कों पर जहाँ पर किनारे चलने की जगह ना हो, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि उल्टा चलना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बाईं तरफ चल रहे हैं, पीछे से बाइकर्स इतनी तेज़ रफ्तार में आते हैं कि उन बाइकर्स की आवाज़ से अपना बैलेंस बिगड़ जाता है और गिरते गिरते बचते हैं, और ऐसे हादसे हमने आँखों के सामने देखे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब जहाँ पर पैदल यात्रियों के लिए जगह नहीं बनी रहती, तो मैं उल्टा चलती हूँ, क्योंकि सामने से वाहन आता हुआ दिखाई देता है तो हम सतर्क रहते हैं पहले से।
1: और आपने जब बात की ना कि कई बार लोग हॉर्न बहुत तेज बजाते हैं, तो हम नियमों की बात तो करते हैं, उसमें इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी गाड़ी में कितने ज्यादा तेज आवाज की हमें जरूरत है। हम उतना ही, कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए या कहते हैं कि शो ऑफ करने के लिए, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इतनी तेज आवाज वाला हॉर्न अपनी मोटरसाइकिल में या अपनी गाड़ी में लगा लेते हैं, और इससे कई बार लगता है कि जैसे कान के पर्दे कहीं फट ना जाए। तो इन चीजों का भी ध्यान रखें। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सड़क सुरक्षा के बारे में, और इसका मतलब होता है कि सड़क पर होने वाली जो भी दुर्घटना है उसके खतरे को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। सड़क पर होने वाली जो भी दुर्घटनाएं हैं उनको कम करने के लिए यातायात के कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों का पालन करना ना सिर्फ खुद की सुरक्षा के लिए बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग, गति सीमा का पालन करना, नशे में गाड़ी ना चलाना, रेड लाइट का सम्मान करना। ये सारे नियम ऐसे हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं और जीवन रक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। और आज के समय में सड़कों पर वाहनों की संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक से हर कोई बेहाल है और इनसे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये बातें हम करते तो हैं, ये सिर्फ नारा नहीं लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी भी होती है। यातायात के जो भी नियम हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि सड़कों पर वाहन और पैदल चलने वाले जितने भी लोग हैं उनका संतुलन वो बना रहे, कोई दुर्घटना ना हो, जान माल की हानि ना हो।
0: बिल्कुल। और कुछ नियम हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए, जैसे कि लेन का पालन करें। और हमने तो भाई देखा है कि तुरंत यहाँ मुंबई की सड़कों पर लेन अगर गलत तरीके से चेंज किया तो चालान हो जाता है, और आजकल तो ऑटोमेटिक चालान आपको पता भी नहीं चलता, आपके जब पैसे कटते हैं तो पता चलता है।
1: जब खासतौर पर हम हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ आपकी गति के हिसाब से लेन बनाई हुई होती है, तो जिस गति में आपकी गाड़ी चल रही है, आप चला रहे हैं, उसी लेन में आपको रहना जरूरी है ताकि अगल बगल जो भी लोग चल रहे हैं अपनी गाड़ी को लेकर उन्हें कोई दिक्कत।
0: मुंबई की बात करें तो मुंबई में खास तौर से जो मुंबई का शहरी इलाका जिसको मुंबई महानगर कहा जाता है, जैसे कि जहाँ पर विविध भारती का स्टूडियो है, ये तो उपनगर है बोरीवली, लेकिन मरीन लाइंस और दादर इस तरह इन इलाकों में लेन का एक रूल है, अगर लेन बदला तो आपको फाइन भरना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप बाईं तरफ ही चलें, वो ट्रैफिक रूल के आपको ट्रैफिक रूल समझ लेना चाहिए मुंबई की सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए। और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है, वरना उसके लिए भी फाइन हो जाता है। और हम सब एक आध बार सीट बेल्ट के लिए कार में बैठकर फाइन भर चुके हैं, हमें लगता है।
1: कई बार लोग कहते हैं ना कि कुछ लड़के खासतौर पर कहते हैं कि हीरोपंती में गाड़ी चलाने के लिए वो हेलमेट नहीं पहनते, सिर्फ जब उनको ट्रैफिक सिग्नल पर से निकलना होता है कि सिग्नल आने वाला है, कहीं कोई ट्रैफिक पुलिसमैन ना हो तो उनसे बचने के लिए वो हेलमेट पहनते हैं। लेकिन आपको हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पहनना है, इस बात का ध्यान रखना है। और वाहन चलाते समय निर्धारित जो गति सीमा है उसका पालन करना जरूरी है, क्योंकि तेज गति जो है वो कई बार दुर्घटना का कारण बन जाती है। इसी तरह से ट्रैफिक के जो भी सिग्नल हैं उनका पालन करें। रेड लाइट का मतलब है कि आपको थोड़ी देर रुकना है, पीली बत्ती है कि आप तैयार हो जाएं, हरी बत्ती का मतलब है कि आप आगे बढ़िए। इसी तरह से मादक पदार्थों का सेवन करने के बाद ड्राइविंग ना करें, और ये कानूनन अपराध भी है। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बात कभी ना करें।
0: चंचल जी, जी यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि मोबाइल फ़ोन पर बात करते समय वाहन न चलाएं। ये कहना तो बड़ा आसान है लेकिन कोई मानता नहीं है। अब तो ईयर प्लग लगा के कार में तो आराम से लोग बातें करते हुए जाते हैं, अब तो कार में ये सुविधा भी है कि आप फ़ोन करो और आपका स्पीकर चल जाता है तो स्पीकर पे बात करते हो, वो भी कहीं ना कहीं ख़तरनाक है। और जो मोबाइल बाइक पर हेलमेट के अंदर ईयर प्लग लगा के

0: आराम से बात करते हुए जाते हैं। जब ये ईयर प्लग नया नया आया था बाजार में, तो कई लोगों को हमने देखा कि ये पागल है क्या, बंदा अपना बाइक पे चला जा रहा है और बातें करते हुए जा रहा है अपने आप से। तो बाद में पता चला कि ये सुविधा भी है कि आप आराम से बाइक चलाते रहो और बातें करते रहो। ये बहुत ख़तरनाक होता है। कहाँ पर आपका आपसे बात करने वाला कोई ऐसी बात कर रहा है कि आपका ध्यान भटक जाए,
1: बिल्कुल सही,
0: वो बहुत ख़तरनाक होता है।
1: इसी तरह से जो वाहन की लाइट्स होती हैं उनका भी सही उपयोग ज़रूरी होता है। कई बार हमें लेफ़्ट या राइट जब लेना होता है, अपनी गाड़ी को टर्न करना होता है, मोड़ लेना होता है, उस वक्त के लिए कुछ बत्तियां हमारी गाड़ी में निर्धारित होती हैं, तो कई बार उनका लोग प्रयोग किए बिना ही आपने अगर सिग्नल पे से आपने टर्न ले लिया, तो जो पीछे वाले जो लोग हैं जो अपने वाहन पर हैं उनके लिए चीज़ ख़तरा बन सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई जाती है, इसीलिए जब भी ट्रैफिक रुकता है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर जो लोग चल रहे हैं उन्हें रास्ता ज़रूर दें और अगले वाहन से एक उचित दूरी ज़रूर बनाकर रखें ताकि दुर्घटना को टाला जा सके। दूसरे वाहनों को अगर दाईं ओर से ओवरटेक करने की नौबत आती है तो बड़ा सावधानीपूर्वक करना है ताकि आप भी सुरक्षित हों और जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हैं उनको भी कोई नुकसान ना हो। ज्वलनशील जो भी पदार्थ होते हैं उनको वाहन में ना लेकर जाएं। वाहनों का समय समय पर उचित रखरखाव जो है या प्रदूषण की जांच है ये भी करवाना ज़रूरी है। ये सड़क सुरक्षा का नियम नहीं है लेकिन ये आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अपने वाहन को उसी सड़क पर
0: वरना धुआं उगलता हुआ वाहन आपके लिए नुकसानदेह है और सड़क पर जो चल रहे यात्री उनके लिए भी नुकसानदेह।
1: सड़क सुरक्षा का महत्व खुद के लिए भी और दूसरों के जीवन रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए यातायात के जो भी नियम हैं उनका पालन अगर करेंगे तो दुर्घटना या अकाल मृत्यु दोनों से बच सकते हैं और ट्रैफिक जाम को भी हम कम कर सकते हैं। आवागमन तेज़ हो सकता है इससे। अगर इन नियमों का हम उल्लंघन करते हैं तो जुर्माना, सज़ा कुछ भी हो सकता है। सिर्फ इनसे बचने के लिए नहीं अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी आप करिए। और कई बार तो हमें कहना चाहिए कि छोटे बच्चे जब, क्योंकि कई बार छोटे बच्चों को भी हम वाहन हाथ में दे देते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में उन्हें समझ हो। पहली बात, उन्हें वाहन देना नहीं हाथ में, लेकिन बच्चे जब बड़े होकर वाहन चलाने लगे,
0: 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तो वाहन देना ही नीचे कानूनन अपराध है। और देखिए, सड़क सुरक्षा के बहुत सारे नियम हैं। बच्चों को सड़क पार करने का तरीका भी सिखाएं, जो छोटे बच्चे साइकिल चलाना सीखते नए नए उनके भी जो रूल हैं बताएं कि हेलमेट लगाएं। और देखिए, सड़क सुरक्षा के बारे में अपने जाने माने अभिनेता जॉन अब्राहम क्या कहते हैं, सुनते हैं।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलो।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।
2: सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली।
1: अंतराल में जो गाना बज रहा था बाबूजी धीरे चलना, तो मुझे याद आई हम बात कर रहे थे सड़क सुरक्षा के बारे में। हमारे साथी का कहना है कि सड़क सुरक्षा के विषय पर मैं यही कहना चाहूँगा कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। हेलमेट पहनना बोझ नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। आज की युवा पीढ़ी को रफ्तार से ज़्यादा अपनी और दूसरों की ज़िंदगी की कीमत समझनी चाहिए। याद रखें, सड़क पर आपकी समझदारी ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा है। एक अन्य संदेश में हमारे एक साथी ने लिखा है कि बेहतर सड़क सुरक्षा बेहतर जीवन सुरक्षा। जीवन को बचाना है तो नियमों का पालन करना है, सड़क पर चलना है तो नियमों को जानना है। यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। और क्यों ना ममता जी, अब एक गाना सुन लिया जाए।
0: गाने से पहले एक छोटी सी टिप्पणी है जो श्रोताओं तक पहुंचा दें। हमारे एक सुधीर श्रोता हैं जो नियमित रूप से विविध भारती सुनते हैं। इन्होंने लिखा है कि मोबाइल पर बात करते या ईयरफोन पर गाना सुनते हुए सड़क पार करने की वजह से कई बार लोगों की जान चली जाती है और ट्रेन से भी दुर्घटना होती है। कई बार लोग मोबाइल पर बात करते हुए ब्रिज का प्रयोग नहीं करते हैं और रेलवे क्रॉसिंग से क्रॉस करते हैं, तो इस वजह से भी कई बार दुर्घटनाएं घटती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, हमने वो बातें बताई हैं हालांकि, तो फिर भी इनका कमेंट हम शामिल कर रहे हैं। लिखा इन्होंने कि सड़क सुरक्षा का अर्थ है सड़क का उपयोग करते समय दुर्घटनाओं और चोटों से बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन करना, हेलमेट सीट बेल्ट पहनना, गति सीमा का पालन, नशा न करना, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग, ट्रैफिक सिग्नलों का सम्मान करना इसमें शामिल है। कई बार देखा है कि लोग देखते हैं ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो चलो सिग्नल पार कर जाओ। तो हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ जुमला इस्तेमाल करते हैं कि अगर मान लो ट्रैफिक पुलिस ने नहीं देखा
1: लेकिन कैमरा देख रहा है।
0: कैमरा देख रहा है, जब कैमरा नहीं था तो आपका आपका अपना आपकी नैतिकता देख रही है ना। अगर आप खुद को बताओ कि हम गलत कर रहे हैं तो अपने आप सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन
1: कर। आजकल हर सिग्नल पर, ट्रैफिक सिग्नल पर एक तीसरी आंख यानी कि कैमरा लगा दिया गया है, तो आप ये ना सोचे कि कोई हवलदार नहीं है तो आपको किसी ने देखा नहीं है।
0: अब गाना सुनते हैं एक।

0: ये पतिता फिल्म का गाना था और सड़क सुरक्षा के लिए हमारे श्रोता बहुत सजग है भाई, बहुत सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन ये सच है कि हम उसे उतना महत्व नहीं देते। इस विषय पर हमें बच्चों को स्कूल और घर से ही शिक्षा के एक रूप में देना चाहिए। आजकल पढ़े लिखे नौजवान, खासतौर पर नवयुवतियाँ भी फैशन के चक्कर में बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाते देखे जाते हैं, उनका चालान भी होता है।
1: और नवयुवतियों की जब बात हुई है तो नवयुवतियाँ भी कई बार फैशन में, वो सिर्फ जिस तरह का हेलमेट पहनती है वो सिर्फ एक टोपी जैसा होता है जिसमें सुरक्षा का कोई नामो निशान नहीं होता। ये सिर्फ आपको हम बार बार बता रहे हैं कि चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखने के लिए पहनना है। और ममता जी, आपने जब उल्टा चलने की बात बताई थी ना, इसी बात पर हमारी एक सखी ने कुछ कमेंट लिखा है। वो कहती हैं कि ममता जी आपने बिल्कुल सही कहा, उल्टा चलना कई बार ज़्यादा सुरक्षित है। कुछ साल, अब अपनी अपनी घटना बता रही हैं, कुछ साल पहले पुणे में इसी तरह हम कुछ सहेलियां लौट रहे थे। एक सहेली बाईं तरफ से दाहिनी तरफ जाने लगी तो मैंने मना किया। इस पर उसने कहा कि नहीं, दाहिने से ही चलो, कम से कम उधर से आते हुए वाहन दिखाई तो देते हैं, गाड़ी आ रही है तो हम पीछे हो सकते हैं। तब से मैं भी कई बार इस तरीके को अपनाने लगी हूँ।
0: लेकिन बस सजग रहना बहुत ज़रूरी है कि आप, पता चला मोबाइल देखते देखते चल रहे हो, सामने से कोई वाहन चला रहा तेज स्पीड में, तो आपका बैलेंस तो बिगड़ेगा ही और जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये आपकी सजगता पर डिपेंड करता है। मोबाइल देखते हुए, फ़ोन पर बात करते हुए लोग चले जा रहे होते हैं। आजकल ये जो मोबाइल फ़ोन है वो सब बहुत सारी मुसीबत की जड़ हो गई है।
1: हाँ, लेकिन अगर ये मोबाइल फ़ोन आप कमेंट्स लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छा है, हम कमेंट्स पढ़कर सुनाते हैं। अगला जो हमारा विषय है जिस पर हमें बात करनी थी, यानी कि पुराने कपड़े जिन्हें आपने बहुत पहन लिया लेकिन अभी वो अच्छी अवस्था में है, आपको उनको कोई नया रीयूज़ करना है तो किस तरह करेंगे, इसके बारे में जो कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। इस पर एक कमेंट बड़ा अच्छा आया है कि पुराने कपड़ों को थोड़ी मेहनत के साथ नया रूप दिया जा सकता है। पुराने सूट, साड़ी या जीन्स को नया डिज़ाइन देकर फैशनेबल बनाया जा सकता है। उन पर कढ़ाई, लेस, बटन, पैचवर्क, रंग बिरंगे कपड़ों को जोड़कर आकर्षक लुक दिया जा सकता है। पुराने दुपट्टे से स्टोल, कुशन कवर या बैग भी बनाए जा सकते हैं। पुरानी पैंट के थैले जो कि सामान लाने के लिए बहुत काम आते हैं वो बनाए जा सकते हैं। और ये बनाते हुए हमने अपनी मम्मी को बहुत देखा है। इस तरह पुराने कपड़ों को नया आकार देने से न केवल बचत होती है बल्कि रचनात्मकता भी निखरती है। तो कमेंट्स बहुत सारे हैं, पढ़ेंगे, पहले गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: तो चंचल जी, इस गाने से पहले आप पुराने कपड़ों को नया लुक किस तरह से देना चाहिए बता रहे थे, और हमारी सखियों की बहुत सारी टिप्पणियाँ भी आपने सिखाई हमें, तो याद है बचपन में कि पुराने कपड़ों की बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती थी, यहाँ तक कि टेबल क्लॉथ बना दिया जाता था और कुशन कवर तो बताया ही हमारी सखियों ने, और हमें याद है कि हमारी माँ पुराने कपड़ों से बहुत सारी चीज़ें और डिज़ाइनदार बनाती थी, सिलाई मशीन होती थी घर में, सिलाई मशीन का कवर कपड़ों से तैयार किया जाता था, और पैरपोश उस समय बाजार में बहुत कम मिलता था हमें तो जहाँ तक याद है, तो कपड़ों से ही तैयार किया जाता था, और बहुत सारे तकिए के कवर सुंदर डिज़ाइनदार बना दिए जाते थे, झालरदार झालर बहुत सुंदर लगता था।
1: कई बार अलमारियां जो घर में होती थी, जैसे अब दरवाजे वाली अलमारियां होती हैं, जब पहले नहीं होते थे ऐसे आले होते थे, खुले होते थे, तो उन पर भी पर्दा लगाने के लिए जो घर के पुराने कपड़े हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था।
0: और एक बात और, जो बड़ा सा रेडियो हुआ करता था टेबल पर, एक परिवार के सदस्य की तरह बैठा रहता था मर्फी वाला रेडियो, तो उसके लिए भी कवर बनाया जाता था, और वो बाकायदा डिज़ाइनदार कवर होता था कि वो स्पीकर दिखाई पड़े और कवर से पूरा रेडियो ढका रहे ताकि उसमें डस्ट ना जाए।
1: और कई बार होता है ना कि कोई बड़े चाव से हमने साड़ी खरीदी, कुर्ता खरीदा या कोई भी जीन्स खरीदी, उस पर कुछ ऐसी जगह पे वो अटक गया जिससे हर चीज़ी खरोंच लग गई या कुछ फट गया वो उस जगह से, तो हमें लगता है कि अब दोबारा नहीं पहनेंगे, मन में एक खटास सी आ जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद अलमारी में जब हम फिर से उसी कपड़े को देखते हैं तो मन करता है कि चलो कुछ नया करके इसको पहन लिया जाए। तो इस तरह से जो ये चीज़ें हमारी अन्य सखियों ने लिखी है ना कि पैच वर्क लगा कर, कुछ कढ़ाई बना कर, या उसको कुछ काट छाट कर छोटा बड़ा करके, इस तरह से कई कपड़ों को नया लुक हम दे सकते हैं। और अगर वो दाग वहाँ पर कोई आ गया है तो उन्हें डाई करके, होते ना कई बार हमने मशीन में सारे कपड़े एक साथ में डाल दिए और कपड़े नए के नहीं दाग लगने से खराब हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से अलग तरह से डाई किया जाए, या रंग बिरंगे जो छपाई की जाती हैं, इस तरह से उस कपड़े को हम नया लुक देकर फिर से पहन सकते
0: वैसे
1: हैं।
0: जो डिजाइनदार दुपट्टे होते हैं चुन्नी, उसके तो कुर्ते बनाए हैं आपने भी और हमने भी।

0: ना, तो
1: और
0: वो बहुत सुंदर बनता है।
1: बहुत सारी जो कामकाजी महिलाएं हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता कि वो रोज़ साड़ी पहन सकें, और जब वो अपनी वार्डरोब को खोलती हैं तो लगता है कि हाय इतनी सारी साड़ियां हैं, सभी पसंदीदा हैं। तो उनका
0: ये आप अपने दिल की बात कर रही हैं
1: जी, उनका
0: ना ये
1: इस्तेमाल
0: हम सब
1: करने
0: के
1: के
0: दिल की
1: लिए
0: बात है
1: हम कई बार
0: दरअसल।
1: गाउन बना लेते हैं, कई बार उनसे प्लाजो सेट बना लेते हैं। तो और आजकल आप जाइए डिज़ाइनर्स के पास में तो वो इतने सारे उनके ये रीयूज़ बता देते हैं, और जिन कपड़ों को हम बहुत पहन चुके होते हैं तो उनसे तो आजकल इतनी तरह के बैग बनने लगे हैं, कुशन कवर बनने लगे हैं। तो ये जो रीयूज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा होता
0: और
1: है।
0: बात आपने साड़ियों की निकाली है, तो साड़ियाँ तो ऐसे ललचाती हैं, तो हम उसको रखे रहते हैं कि अब फला मौके पर फला साड़ी पहनेंगे, और उन साड़ियों को कई बार रखे रखे उसमें क्या कहते हैं कीड़े भी लग जाते हैं, ख़ासतौर से सिल्क की साड़ियों में। तो अगर आप टेलर के पास ले जाएं और ये कहें कि इसका एक डिज़ाइनदार जो आजकल बहुत चलन में था पिछले दिनों वेस्टर्न गाउन, जिससे कि आप कहीं बाहर फंक्शन में जाते थे पार्टी में और वो जब खरीदने जाते थे तो महंगे महंगे मिलते थे, तो साड़ियों का डिजाइनदार आप वेस्टर्न गाउन बनवा सकते हैं।
1: बिल्कुल, उनकी कलियां अलग अलग कटवा कर, तो जो खराब हिस्सा है वो
0: अनारकली
1: में कट जाता है, तो छोटी छोटी कलियां कटवा कर उनकी स्कर्ट बन जाती हैं, उनके अनारकली ड्रेस बन जाते हैं। या आप स्कर्ट बना लीजिए, लहंगा बना लीजिए, ऊपर से कुछ कुर्ती या टॉप नया ले लीजिए, तो वो बहुत सारे नए लुक हैं। इस तरह से जो हमारे सुनने वाले हैं उन्होंने भी कुछ आइडियाज हमें दिए हैं। तो पुराने कपड़ों को नया लुक देने के लिए आप ब्लीचिंग या उनको डाई करना, कढ़ाई, पैचवर्क का उपयोग कर सकते हैं। टी शर्ट को क्रॉप टॉप में बदला जा सकता है। जीन्स को डिस्ट्रेट यानी कि फाड़कर स्टाइलिश बनाया जा सकता है। शर्ट पर बटन या लेस लगाकर उनको नया रूप दिया जा सकता है। डाई का उपयोग करके फीके पड़ चुके कपड़ों को फिर से चमकीला बनाया जा सकता है। इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे साथी ने जो हमें लिखकर बताया है कि कुछ रचनात्मक उपाय उन्होंने बताए हैं कि डाई से नया अंदाज किस तरह से दिया जा सकता है। पेंटिंग या कढ़ाई करके किसी भी शर्ट, टी शर्ट या साधारण से कुर्ते को भी फैब्रिक पेंटिंग उस पर लगा दीजिए, हाथ से कढ़ाई कर दीजिए, तो एक फूल पत्ती बना देंगे तो नया डिज़ाइनर लुक आ जाता है। इसी तरह से जीन्स का कई तरीके से इस्तेमाल है। शॉर्ट्स बना सकते हैं, बैग या पाउच बना सकते हैं, कुशन या मोबाइल के स्टैंड बना सकते हैं। इस तरह से लैच और पैचवर्क कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, फिटिंग में बदलाव कर सकते हैं, कुछ एक्सेसरीज जोड़ी जा सकती हैं। और आगे इन्होंने संक्षेप में लिखा है कि इससे पैसों की बचत होती है, पर्यावरण संरक्षण होता है, रचनात्मकता का विकास होता है और यूनिक व्यक्तिगत फैशन का स्टाइल बन जाता है।
0: छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे डिज़ाइनदार कपड़े बन सकते हैं, फ्रॉक है, टी शर्ट है, ये बन सकते हैं। और अब एक गाना सुन सकते हैं।

0: कपड़ों से और क्या क्या बन सकता है चंचल?
1: पुराने जो स्वेटर होते हैं ना उनका भी हम एक नया लुक दे सकते हैं, उनसे टोपी बन सकती हैं, और जो पुलोवर होते हैं उनसे हम कार्डिगन बना सकते हैं।
0: लेकिन ऊन कट जाता है बीच से, फिर उसको कैसे करें?
1: अरे मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ।
0: अच्छा,
1: एक बार हुआ क्या कि ये तो उन दिनों की बात है जब मैं जयपुर में रहा करती थी और वहाँ ठंड बहुत होती है, तो पूरा तैयार हो गई, हेयरस्टाइल वगैरह अच्छे से बना लिया, बाद में आता है कि स्वेटर नहीं पहना है। अब स्वेटर पहनने में रख दिया कि भाई ऊपर से जब गले में से हम डालेंगे सर पे तो सारा हेयरस्टाइल ख़राब हो जाता है, और ये समस्या और भी लोगों को शायद होती होगी। तो उस दिन तो फिर मुझे दोबारा हेयरस्टाइल बनाना पड़ा, लेकिन इससे बचने के लिए मैंने परमानेंटली उस स्वेटर को काट दिया आगे से। और फिर वहाँ पर मम्मी ने, क्योंकि मम्मी सिलाई कढ़ाई किया करती थी, तो वहाँ पर मेरी माताजी ने एक जिप लगा दी और बड़ा सुंदर सा वो कार्डिगन बन गया। तो ये भी एक नया तरीका इस्तेमाल है। अगर आपका कोई पूरा ऐसा स्वेटर है जो आपको गले में से सर पे से डालकर पहनना पड़ता है, पूरा बंद है, और ये समस्या कभी आपके साथ भी हुई हो तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसको आगे से काट लीजिए, और वहाँ पट्टी लग जाती है तो उसको मोड़ दिया जाता है तो ऊन के धागे निकलने का डर भी नहीं रहता, और जिप लगाने के बाद में उसे खोल कर पहनने में बड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप बटन लगाएंगे तो शायद वो ऊन के धागे निकलने का डर रहता है, इसलिए जिप लगाना ज़्यादा सुरक्षित।
0: और एक बड़े काम की चीज़ है कि पुराने कपड़ों को, खासतौर से जो छींटदार शर्टें होती हैं कॉटन की मोटी, तो उसके सुंदर डिज़ाइनदार बैग या झोले बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको प्लास्टिक की थैलियाँ लेनी जानी है, तो झोले तो बहुत सारे घर में चाहिए होते हैं, तो वो डिज़ाइनदार बैग बन सकता
1: है। और इस तरह से ममता जी हम प्लास्टिक के उपयोग को रोक भी सकते हैं। आजकल ज़्यादातर कागज़ के थैलियों में सामान आने लगा है, तो कई बार लटका कर आपको बहुत देर तक कोई भारी वजनदार सामान लाना है तो वो कागज़ की थैलियाँ भी उस वज़न को झेल नहीं पाती हैं, इसलिए बेहतर है कि आप घर पर बना हुआ कपड़े का बना हुआ कोई थैला लेकर जाएं।
0: और थैले से जब सब्जियां लेकर आते हैं ना तो कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। उसकी साफ सफाई देख रेख कैसे करते हैं, जरा बताइए।
1: हाँ भाई, ये तो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में हमारे साथियों ने भी हमें लिखकर भेजा है कि ये जो बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है हमारे रसोई घर में होता है, जो कि होता है खाने को सुरक्षित रखने के लिए और ताज़ा रखने के लिए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ अगर रख दी जो खाने को ताज़ा रखने की बजाय बदबूदार बना दे, या कई चीज़ें बहुत दिन तक रखी हुई हैं तो भी वो एक सड़न या बदबू पैदा करने लगती हैं, तो इससे हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। फ्रिज से जो दुर्गंध आती है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जिन्हें हम कई बार नज़रअंदाज करते हैं, फिर बैक्टीरिया और फफूंद पनपने लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर इस गंध से आपको बचना है तो बेकिंग सोडा का जो घोल है उससे आप साफ कर सकते हैं। ये हमारे साथियों ने ये टिप हमें बताई।
0: कटा हुआ नींबू का टुकड़ा रख देना चाहिए, उससे भी उसकी जो
1: ये जो आपने
0: स्मेल होती है चली
1: ये टिप भी हमारे साथियों ने हम तक लिखकर पहुंचाई है। अगर बेकिंग सोडे के घोल से आप पहुंच नहीं सकते हैं तो एक खुले एक बर्तन में, कटोरी में आप बेकिंग सोडा रख दीजिए तो वो भी गंध को सोख लेता है। और अगर ये बदबू बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है तो सफ़ेद सिरका जो होता है उसे पानी में घोलकर एक मिश्रण तैयार कीजिए और इससे पोंछा लगा दीजिए। और कॉफ़ी के जो दाने हैं उनको भी रखा जा सकता है, ये भी हमारे एक श्रोता की लिखी हुई टिप्पणी है। और नींबू की तो आपने बताई दी है। इसके बाद जो सक्रिय कोयला जिसे एक्टिव चारकोल कहते हैं वो भी गंध सोखने में शक्तिशाली होता है, तो उसे भी रखकर आप फ्रिज
0: नमी सोख लेता है। और अब चलते चलते सुनते हैं ये गाना, फिल्म है भरोसा, लता मंगेशकर की आवाज़।

0: भरोसा फिल्म का ये सुरीला सा गीत था। जी तो चाह रहा है कि पूरा गाना सुनवाए, लेकिन घड़ी की ओर देख रहे हैं तो अब वक्त नहीं कि पूरा गाना, कुछ एक अंतरा बचा रह गया, फिर कभी। अब बस अब श्रोताओं से इजाज़त लेने की बारी है, तो श्रोताओं से लेते हैं इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: रहेंगे आपकी राय, क्या ये बदलाव आपको पसंद आ रहे हैं, कौन सा नया कार्यक्रम दिल को छू रहा है और बदले हुए समय आपकी दिनचर्या में कितने फिट बैठ रहे हैं। तो आइए अपनी बात खुलकर कहिए अपनी आज की हेलो फरमाइश कार्यक्रम की साथी यानी कि मैं नेहा आगरकर देसाई के साथ, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारे हर कार्यक्रम की असली जान है। और आइए अब देखते हैं पहला कॉल किसका है। हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब बात कर रहे हैं?
1: जी हम भोपाल से बोल रहे हैं, राम गोपाल मालवीय।
0: भोपाल से गोपाल जी? जी गोपाल जी, बताइए आप क्या करते हैं?
1: हाँ, हमारा ये लॉन्ड्री का काम है, ये काम वाम करते हैं और एफएम सुनते ही रहते हैं हम तो, सुबह से लेके शाम तक आपके प्रोग्राम विविध भारती के।
0: अच्छा, तो आप बिल्कुल रेगुलर श्रोता हैं?
1: हाँ जी जी जी बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन फोन पहली बार लगाया है।
0: ओहो क्या बात है, पहली बार आपका फोन लग रहा है, खुशी जरूर हो रही होगी।
1: हाँ जी बहुत खुशी हो रही है।
0: अच्छा ये बताइए कि विविध भारती के कुछ कार्यक्रमों में अब बदलाव आए हैं, तो आप उन बदलावों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे लगे आपको ये बदलाव?
1: बिल्कुल अच्छे लगे हैं, जो वो अपना मनचाहेगी, जो अपने पत्रों पे वो आधारित प्रोग्राम शुरू किए हैं संडे और सैटरडे को 3 बजे से, वो प्रोग्राम अच्छे, और हमने 2 पत्र डाल दिए, एक ना एक तो शामिल हो ही जाएंगे हमारे।
0: ओहो हो, हमें भी इंतजार है आपके खतों का और आपकी बातों का। तो अच्छा, मतलब इस बार आपका कॉल भी लग गया है और अब आपको उम्मीद है कि पत्र भी शामिल हो ही जाएगा।
1: हाँ जी जी,
0: यानी चित भी आपकी और पट भी आपकी।
1: हाँ जी बिल्कुल, एक छोटा सा बदलाव आपने किया है ठीक है, लेकिन मंगलवार को वो जो नया प्रोग्राम शुरू आने वाला है, तो ये हेलो फरमाइश एक ही दिन आएगा, सिर्फ गुरुवार।
0: जी एक ही दिन आएगा।
1: अच्छा,
0: और आप उसको रिपीट में भी सुन सकते हैं अगले दिन, जैसे गुरुवार को आप नया प्रोग्राम सुनेंगे और शुक्रवार को वही कार्यक्रम सुबह 10 बजे सुन सकेंगे, तो रिपीट में भी आप इसे सुन सकेंगे। जरा अपने दिल को थाम के रखिए, क्योंकि हम नए कार्यक्रम आपसे परिचित करवाने वाले हैं, तो और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों के साथ भी आपको उतना ही मजा आएगा जितना हेलो फरमाइश के साथ आ रहा है।
1: जी जी।
0: चलिए ये बताइए गोपाल जी, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: संगीत फिल्म का एक गाना है इसमें, सुनो ए हसीनो।
0: सुनो ए हसीनो संगीत फिल्म से, और फिलहाल आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय रेडियो स्टेशन विविध भारती। कहते हैं वक्त के साथ चलना ही जिंदगी की पहचान है, जो ठहर गया वो किस्सों में, जो बढ़ गया वही नई उड़ान है। पुराने कार्यक्रमों की अपनी एक अलग ही खुशबू होती है, यादों से भरी, अपनापन लिए हुए, और नए कार्यक्रम अपने साथ लाते हैं ताजगी, नए विचार और एक नई ऊर्जा। जिंदगी की तरह रेडियो भी हमेशा गतिमान रहता है, क्योंकि बदलाव ही वो धड़कन है जो हर चीज को जीवंत बनाए रखती है। इन्हीं खूबसूरत बदलावों के साथ हमारी रेडियो पर कुछ नए कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है, वहीं कुछ पसंदीदा कार्यक्रम अब नए समय पर आपसे मुलाकात कर रहे हैं। तो आज के इस खास फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में हम जानना चाहते

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन जनाब बात कर रहे हैं?
1: ग्राम नंगला काचियान पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साथी बात कर रहा हूँ। और मैम कैसे हैं?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप क्या करते हैं, कैसे हैं?
1: बढ़िया है, खेती बाड़ी करता हूँ। और आकाशवाणी परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
0: जी बिल्कुल, आपकी दुआ से सब सही है, सब सलामत है।
1: जी सर, सभी को रहना भी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। और आपके कार्यक्रम जितने भी आते हैं वो सुनना चाहिए, जिससे कि वैज्ञानिक भरे हुए भी हैं और मनोरंजन भी है।
0: जी
1: भी है,
0: क्या बात है, इतनी सारी तारीफें आपने की हैं। अब मैं कुछ बातें आपसे पूछ लूं? देखिए आपकी बातों से तो ये समझ आ रहा है कि आप हमारे कार्यक्रम बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। अब ये बताइए कि जो नए बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं?
1: बढ़िया जी, नए नए प्रोग्राम जब चलते हैं तो अच्छा भी रहता है, क्योंकि समय का परिवर्तन जरूरी होता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी जो नए कार्यक्रम शुरू हुए हैं या फिर जिन कार्यक्रमों के बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं? आपके जिन कार्यक्रमों के समय में बदलाव हुआ है वो आपके टाइम के हिसाब से फिट हो रहे हैं?
1: जी जी बिल्कुल।
0: क्या बात है, तो खेती बाड़ी करते हुए आप हमारे कार्यक्रम सुना करते हैं?
1: जी जी, कहीं पर भी सुन सकते हैं, खेत पर भी, घर पर भी, क्योंकि अब मोबाइल ऐप पर जो चालू हुआ है उसके माध्यम से कहीं भी सुना जा सकता है।
0: जी बिल्कुल, न्यूज ऑन AIR ऐप जो है उसके जरिए फोन पर भी सुना जा सकता है। चलिए बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म है गिरफ्तार, धूप में निकला न करो रूप की रानी।
0: गर्मी के हिसाब से गीत को पसंद किया है क्या आपने?
1: बिल्कुल, इसी की वजह से सुनना चाहता हूँ। जैसे मौसम चेंज भी हो रहा है ना, इसलिए, और थोड़ा पानी वगैरह साथ लेकर रखें।
0: ये तो बिल्कुल सही है। मेरा तो ये मानना है कि सिर्फ रूप की रानी क्यों, बल्कि रूप के राजा को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी कि इन धूप के, कड़ी गर्मी के दिनों में किसी को भी बिना वजह या फिर जब तक जरूरी ना हो बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना?
1: जी
0: बिल्कुल। चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश
1: जी। हमारा नाम है चंद्र प्रकाश पात्र
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: रामपुर ग्राम पालीगंज पटना बिहार।
0: क्या बात। तो चंद्र प्रकाश जी बताइए, क्या करते हैं आप?
1: हम तो अभी अप्लाई कर रहे हैं ऑफिसर के ड्यूटी में।
0: ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस क्षेत्र में?
1: आरबीआई के। हम सीएससी रंगराजन, हमारा रुपया है गवर्नर, तो उसी में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी ज्वाइन न किए हैं, सामान वन मंगा लिए हैं और लेंगे आज कल।
0: अच्छा, तो मतलब आपका सिलेक्शन हो गया है?
1: जी वन।
0: अरे वाह, क्या बात है। विविध भारती परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं
1: जी।
0: चलिए ये बताइए, आज कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: जी हमको सुनना है अखियों की झरोखों से फिल्म के हेमलता की आवाज़ में।
0: चलिए चंद्र प्रकाश जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश
1: जी। नमस्ते मैम, मेरा नाम रामेश्वर रैकवार है, मैं ग्राम भगवता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। मैडम जी,
0: रामेश्वर जी बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती का काम निपट गया है।
0: खेती का काम हो चुका है तो फिर अब क्या विचार है आपका आगे?
1: आषाढ़ आएगा ना मैडम, जून के महीने में, तो उसमें बुआई होगी अगली फसल की।
0: कौन सी फसलों की बुआई करेंगे आप?
1: मैडम जी ये उड़दा और मूंग।
0: क्या बात है, तो इसकी पूर्व तैयारी भी कुछ लगती होगी?
1: अभी तो ऐसे खेत खाली पड़े हैं, अभी नहीं है कुछ नहीं।
0: तो फिर अभी आप बिल्कुल फ्री हैं विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनने के लिए?
1: जी मैडम, मैं सुनता हूँ सभी। जो दोपहर में आता है कमेंट वाला वो भी सुनते हैं, और छाया गीत सुनते हैं, हवा महल भी सुनते हैं।
0: तो अब जो कमेंट वाला आता है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं? क्या बदलाव है जानते हैं आप?
1: जी मैडम, पहले गीतमाला था, सुरीला सफर हो गया।
0: पर उसके क्या बदलाव आए हैं कार्यक्रम के अंतर्गत? ये तो आपने नाम का अंतर बताया, कार्यक्रम में क्या बदलाव आए हैं वो बताइए।
1: मैडम जी कार्यक्रम में तो काफी बदलाव है, थोड़ी जानकारी मुझे कम है।
0: चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको एक बार बता देते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे ये पहेली पूछी, बस इसी तरह की एक इबारत यानी कि एक टेक्स्ट उस कार्यक्रम में आता है, और उस टेक्स्ट या इबारत में कुछ शब्द ऐसे शामिल होते हैं जिनके ऊपर कुछ गीत बजने वाले होते हैं, उन शब्दों से शुरू होने वाले, या फिर उन शब्दों को लिए हुए कोई गीत, उस गीत के बीच में कोई शब्द आ सकता है। तो ऐसे गीतों की वो इबारत होती है और आपको पहचानना होता है कि कौन सा गीत बजने वाला है।
1: जी मैडम
0: जी, तो ये तो था यूं ही, ताकि आपको भी और हमारे श्रोताओं को भी पता चल जाए, और हम तो जानना चाहते थे कि आपने उस कार्यक्रम को कितना समझा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी कार्यक्रम नया नया है, 2-3 दिन ही हुए हैं, तो धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा और फिर आपके भी कमेंट्स उसमें आएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं।
1: जी मैडम।
0: अच्छा ये बताइए रामेश्वर जी, कौन सा गाना आज आप सुनना चाहेंगे?
1: मैडम जी पड़ोसन फिल्म का है, चतुर नारकर के सिंगार।
0: तो चलिए रामेश्वर जी आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: यक चतुर

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं राजकुमार यादव बोल रहा हूँ, बड़ा गाँव जलागोना मध्य प्रदेश से।
0: क्या बात है राजकुमार जी, क्या करते हैं आप?
1: किसान हूँ, खेती बाड़ी में व्यवसाय है मेरा।
0: आपकी पसंद का काम है या फिर आपके यहाँ पूर्वज जो आपके पिताजी होंगे, दादाजी होंगे, तो ऐसे करते आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं?
1: जी मैम, वो जो हमारा बचपन से ही काम है खेती बाड़ी का,
0: अच्छा,
1: पहले से ही चलती आ रही है खेती बाड़ी। किसान ही है हमारे गाँव में, सब किसान ही है।
0: इसके अलावा और क्या शौक है आपके?
1: हमारे तो विविध भारती रेडियो सुनना, और थोड़े बहुत समय मिल जाए तो खेती बाड़ी में हाथ बटा लेते हैं।
0: क्या बात है, तो जब आपका शौक है विविध भारती सुनना, तो चलिए आपसे कुछ सवाल जवाब कर लिए जाएं।
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, विविध भारती में जो कार्यक्रमों में बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं?
1: मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और पसंद भी आ रहे हैं मैम। आपकी आवाज भी हम सुनते रहते हैं प्रोग्राम में, जो हेलो फरमाइश है, साकी सहेली है।
0: पसंद आता है आपको कार्यक्रम?
1: जी जी मैम आता है।
0: क्या बात है, चलिए ये बताइए राजकुमार जी, कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे?
1: आज मुझे कच्चे धागे फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम। उसमें एक गीत है लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में, दिल का आना आया परदेसी हो गया, दिल परदेसी हो गया।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए राजकुमार जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं शेर खान बोल रहा हूँ हैदराबाद से।
0: जी शेर खान जी, बताइए क्या करते हैं आप?
1: जी मैं पहले तो सभी सुनने वाले भाई बहनों को, दोस्तों को आपको प्यार भरा सलाम कहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे।
0: जी बिल्कुल, हम भी आपके लिए यही दुआ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नेहा जी, मैं वैसे तो रहने वाला महाराष्ट्र का हूँ और हैदराबाद आके कुछ 7-8 साल हो रहे हैं।
0: अच्छा।
1: मैं बता दूं कि मैं ब्लाइंड हूँ, दोनों आंखें नहीं है मेरी। 3 साल की उम्र में आंखें चली गई थी कैंसर की वजह से।
0: अच्छा,
1: और मैं विविध भारती को बचपन से सुनता हूँ।
0: अच्छा
1: जी हाँ, बचपन से सारा प्रोग्राम सुनता हूँ मैं। पहले भी जो प्रोग्राम आते थे, आज भी जो आते हैं, जो बदलाव हुआ है, बचपन से मेरा साथी है, जीवन साथी बना हुआ है रेडियो और विविध भारती।
0: क्या बात है। तो इन बदलावों के बारे में आपकी क्या विचार है, कैसे लग रहे हैं आपको ये बदलाव?
1: हाँ, बहुत अच्छा है। वक्त के साथ बदलाव भी जरूरी है और भी ज्यादा मजा आ रहा है और भी अच्छा लग रहा है कि आप जो है तो मोबाइल ऐप पे या किसी स्पेशल प्राइमरी चैनल से ये सुनने को मिलता है।
0: जी, तो ऐसा है कि समय के साथ हर चीज में बदलाव आते हैं, हर बात बदलती जाती है।
1: बदलाव आते हैं और बदलाव स्वीकार करना ही इंसान की एक अच्छी कामयाबी है।
0: जी बिल्कुल, स्वीकार करना जरूरी है।
1: हैदराबाद में आके हमको 7-8 साल हो गए, तो यहाँ के रेडियो से ही मेरे कुछ दोस्त बने हैं, चैनल है, भाई बहन बने हैं। कॉल लगना बोले तो बिल्कुल एक चांद को छूले में जैसी कामयाबी है। और मैं भी इतने सालों से ट्राई कर रहा था, आज मेरा कॉल लग गया, बहुत खुशी हो रही है मुझे भी।
0: आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जब भी किसी श्रोता का पहली बार कॉल लगता है और उनकी जो खुशी होती है वो हमें सुनने को मिलती है, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है।
1: और मेरी गाने की फरमाइश है, फिल्म का नाम है हुकूमत, धर्मेंद्र साहब की फिल्म है, मोहम्मद अजीज, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में है गाना। ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा।
0: अच्छा, क्या आप गाते भी हैं?
1: नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं।
0: तो फिर गुनगुना दीजिए थोड़ा सा।
1: ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा, प्यार रहेगा।
0: क्या बात है शेर खान जी, बहुत अच्छा गाया आपने। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका यानी कि श्रोता और विविध भारती परिवार का प्यार भी हमेशा यूं ही बना रहे। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, ना जुल्म ना जालिम का।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश,
0: क्या बात है, जिस तरह से मैंने बोला उसी तरह से उधर से भी रिस्पॉन्स आ रहा है, बिल्कुल जोश के साथ। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम को नमस्कार।
0: बिल्कुल, आपको भी मेरा नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम, मैं उदयपुर वारियों की घाटी से सत्यनारायण वारी बोल रहा हूँ। मैडम
0: बताइए, क्या करते हैं आप?
1: मैडम मैं ऑटो में सवारी घुमाने का, पर्यटक घुमाने का काम करता हूँ।
0: अरे वाह, उदयपुर है तो फिर तो घूमने घामने की बात तो होगी ही होगी।
1: जी बिल्कुल, लेक सिटी।
0: तो जब आप अपने पर्यटकों को घुमा रहे होते हैं तो क्या उन्हें जिस जगह ले जा रहे हैं उसकी जानकारी देते हैं या फिर सिर्फ गाड़ी चलाने का काम करते हैं?
1: नहीं मैडम, कोई पूछना चाहे तो हम उसकी जानकारी बिल्कुल देते हैं।
0: क्योंकि ऐसा कई बार हम भी अनुभव करते हैं कि हम किसी नए शहर में जाते हैं तो हमारे जो ऑटो चलाने वाले भैया होते हैं वही हमारे आधे गाइड बन जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, हम पूरी जानकारी जो मांगते हैं पूरी जानकारी देते हैं मैडम। उसमें जो भी है घूमने की जगह उनको बता देते हैं, ये जैसे उदयपुर में सिटी पैलेस है, जगदीश टेम्पल है, फतेह सागर है, सर्कल है, सेलियों की बाड़ी है।
0: क्या बात है। अच्छा ये बताइए, उदयपुर में किस मौसम में आना चाहिए?
1: उदयपुर में मैडम खासकर तो दीपावली के दिनों के बाद शुरुआत ज्यादा आती है, पर्यटक ज्यादा आते हैं, विशेषकर गुजरात से, मुंबई से।
0: यानी कि ठंड के दिनों में?
1: जी बिल्कुल, दीपावली की छुट्टियां पड़ती है मैडम, उस टाइम ज्यादा टूरिस्ट आता है।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनने का समय आप कब निकालते हैं? ऑटो चलाते समय सुनते हैं?
1: मैडम बिल्कुल चलता रहता विविध भारती हमारा उस समय।
0: तो क्या कभी आपके किसी यात्री ने ऐसा कहा है कि अरे यार क्या आप ये रेडियो सुनते रहते हैं, थोड़ा आवाज कम करिए या फिर ऐसे कुछ?
1: नहीं मैडम, हमारा बिल्कुल ही मध्यम आवाज से चलाते मैडम, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं बिल्कुल। पंच सुने और सवारी सुन सके, बाहर तक आवाज नहीं जाती, इतनी वॉल्यूम रखते हैं मैडम।
0: जी ये बिल्कुल सही बात है,
1: और हमको विविध भारती कभी डिस्टर्ब नहीं करता हमारे काम के अलावा।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ये बताइए कि कौन सा गाना आज आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो।
0: जी और
1: गाने के बोल है ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, क्योंकि उदयपुर में अभी मैडम गर्मी बहुत चल रही है।
0: ठंडे ठंडे पानी की आपने बात कर दी है, उदयपुर क्या पूरे भारत भर में इन दिनों अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है।

0: हेलो फरमाइश।
1: नेहा जी नमस्ते।
0: नमस्ते, आपने आवाज से पहचाना या फिर आपको पहले से पता चल गया था कौन है आज?
1: जी पता चल गया।
0: बताइए कौन बात कर रहे हैं?
1: धर्मपुरी जिला धार मध्य प्रदेश से मोहम्मद तस्लीम से बोलो। नेहा जी
0: जी बताइए क्या करते हैं आप?
1: मेरी फ्लोर मैंने धर्मपुर में बाईपास चौराहे पे और यहाँ से मांडो 23 किलोमीटर है। आइए नेहा जी आप बारिश में।
0: जी मैं मांडो घूम चुकी हूँ। जी जी जब हम स्कूल में थे तब हमें हमारी स्कूल की तरफ से एक ट्रिप गई थी जब हम मांडो महेश्वर मंडलेश्वर तीनों एक साथ घूमे थे। जी तस्लीम जी ये बताइए आप हमारे विविध भारती के रेगुलर श्रोता हैं?
1: जी जी कम से कम मैं 35-40 साल से सुन रहा हूँ।
0: तो फिर आपको इन 35-40 सालों में कार्यक्रमों में जो बदलाव हुए वो भी आपको भली भांति पता होंगे।
1: जी जी और ये अपना SMS के बहाने यूएस के तराने तो बहुत पसंदीदा प्रोग्राम था हमारा।
0: ओ ऐसा, तो अभी जो कार्यक्रमों में बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं?
1: वो अभी मैडम बराबर सुन नहीं पा रहा हूँ, अभी 2-3 दिन के लगभग हुए हैं
0: जी।
1: बराबर मालूम भी नहीं है, वो ज्ञापन सुना करते थे वो सुनते रहेंगे तो वो मालूम पड़ जाएंगे सर।
0: जी मैं आपको बता दूं कि यदि आप

0: को पूरी तरह जानकारी नहीं है तो सुबह 6:30 बजे और शाम में 6:30 बजे इन दोनों समय पर आप झरोखा सुन सकते हैं, जिसके अंतर्गत किस दिन कौन सा कार्यक्रम कितने बजे जाने वाला है उसकी पूरी जानकारी होती है।
1: जी नहीं, मैं सुनता हूँ, सुबह 8 बजे से तो रात 8 फ्लोर में चला करती है, 9-10 भी बज जाती है, गीत तक सुना करता हूँ मैं।
0: क्या बात है, ये बताइए तस्लीम जी, कौन सा गाना आज आप सुनना चाहेंगे?
1: 2 अक्टूबर फिल्म में गीत है साधना सरगम जी और उदित नारायण जी की आवाज में, चांद तारों में नजर आए तेरा तेरा।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: पान बीड़ी सिगरेट तम्बाकू ना शराब, हमको तो नशा है। हेलो फरमाइश प्रोग्राम का जनाब।
0: क्या बात है, नमस्कार नमस्कार। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी बात अमरीश पुरी साहब से हो रही है।
1: यार मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: ओहो, डायलॉग पे डायलॉग, क्या बात है।
1: सतीश गुलियानी, दिलकुशा मार्केट जलंधर, और रहता है अपने दोस्तों के दिल के अंदर। हर टाइम आपको याद करते हैं, आपकी मिलने की फरियाद करते हैं।
0: क्या बात है
1: सतीश, दिल नहीं लगता तो आपको फोन लगाते हैं।
0: ओ हो, क्या बात है क्या बात है। आपकी ये आगाज करने का तरीका बड़ा अच्छा लगा हमें।
1: मैडम जी, सब कुछ आपसे सीखा जी आपने। मैं क्या आता है, हम तो बिल्कुल अनजान है। जो सीखा है रेडियो से, आकाशवाणी से सीखा है जी।
0: जी बिल्कुल सही बात है, रेडियो पर इतनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, विविध भारती पर इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं।
1: अपने तो दिल में ही रहते हैं, बस गैरों को याद किया जाता है। काश मिल जाए आप जैसे अच्छे एंकर दोस्त, जिन्हें अक्सर हेलो फरमाइश में याद किया जाता है।
0: क्या बात है, आपने तो लड़ियां लगा दी हैं शायरियों की, डायलॉग्स की। लगता है आज बातें नहीं होंगी, डायलॉग्स ही होंगे।
1: डायलॉग ही चलेगा जी।
0: ये बताइए सतीश जी, अपने यारों दोस्तों के दिल में तो आप रहते हैं, मगर भौतिक तौर पर कहाँ रहते हैं?
1: मैं जलंधर, दिलकुशा मार्केट, दवाइयों वाली मार्केट है जी हमारी।
0: अच्छा अच्छा जी, और क्या करते हैं आप
1: जी? मैडम अभी तो तंग ही कर रहे हैं घर वालों को।
0: तंग करते हैं घर वालों को?
1: फ्री है जी।
0: अच्छा अच्छा,
1: हो गया ना अब।
0: ओहो, अरे आपकी आवाज से लगता नहीं कि आप रिटायर हो गए होंगे।
1: कहते दिल होना चाहिए था जवान उम्र की रखिया। मैडम सैर करते हैं एक घंटा सुबह एक घंटा शाम, और हर टाइम खुश रहते हैं। मैडम गीत सुनेंगे, राजकुमार फिल्म है जी वो, देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा।
0: ओहो क्या बात है, क्या आप गीत गाते भी हैं?

0: जी हाँ जी, मैं पंजाबी में सुना दूँ हिंदी वाला?
1: कोई भी गीत सुना दीजिए,
0: पंजाबी में सुनाता हूँ आपको।
1: बिल्कुल।
0: ठंडा हो जाओ चूल्हा चौंका, वेड़ा सुनम सुना, दस जा किंज दाल बनावा, किंज आटा गुन्ना, उन्हें नहीं याद आऊगी। ओए होए, मैं क्या नहीं जदों, मैं क्या नहीं जदों तुर जाएंगी, वो पेके जान वाली है। सभी दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि कहीं जा रहे हो तो गाड़ी, मोबाइल में फोन आ जाता है तो गाड़ी जूस साइड पे लगाए।
1: बिल्कुल,
0: और जानवरों को दाना डाले, गर्मी है, अपने कोठों पे वो कटोरे रखे, उनके अपने पानी और दाना जूस डाले।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। चलिए सतीश जी, फिर आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो।

0: हेलो फरमाइश
1: जी आदाब मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी आपकी दुआएं हैं और अल्लाह का करम है, हम भी ठीक हैं। मैं फहीम बोल रहा हूँ, श्रीनगर कश्मीर से।
0: जी फहीम जी, बताइए क्या करते हैं आप?
1: जी मैं एक्चुअली टूरिस्ट गाइड हूँ, टूरिस्ट से रिलेटेड काम करता हूँ, गाइडिंग करता हूँ। अभी मैं डल झील के अंदर हूँ, कस्टमर के साथ उनको गाइडिंग कर रहा हूँ।
0: आप कस्टमर के साथ हैं और आपने फोन भी लगा लिया?
1: हाँ जी, मुझे आपसे बात करने में बहुत टाइम हो गया, तो सोचा आज विविध भारती के हेलो फरमाइश प्रोग्राम में आपसे बात कर लूँ और अपनी पसंद के नगमे यहाँ डल झील के अंदर शिकारे में बैठ के सुन लूँ।
0: क्या बात है, मगर आपके जो टूरिस्ट हैं वो इस पर कोई नाराजगी तो नहीं जताएंगे?
1: नहीं, वो अभी फोटोज के साथ बिजी है, उन्होंने कश्मीरी ड्रेस में वो फोटोज कैप्चर कर रहे हैं अभी। जिस तरह शमी कपूर शर्मिला टैगोर ने वो नगमा जल्दी के अंदर शूट किया था चांसा रोशन चेहरा, तो वैसे ही उन्होंने भी ड्रेस पहने हैं, कश्मीरी ड्रेस और ज्वेलरी के साथ वो अभी फोटोज कैप्चर कर रहे हैं डल झील के अंदर शिकारे में बैठ के।

0: मुझे थोड़ा सा टाइम मिला आपसे बात करने का,
1: तो आपने मौके पे चौका मार लिया।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: अच्छा ये बताइए कौन कौन सी भाषाओं में आप गाइडिंग करते हैं?
0: जी सबसे पहले देश की भाषाएं हमारी हिंदी है
1: जी,
0: मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, कर्नाटका है, थोड़ा सा ये महाराष्ट्र भी आता है।
1: अच्छा आप इतनी सारी भाषाएं बोल लेते हैं?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए आप जो काम करते हैं ये गाइड का, तो आपको किस किस तरह के अलग अलग लोग मिलते होंगे या फिर कुछ अनुभव आते होंगे, कोई अच्छा सा किस्सा किसी टूरिस्ट के साथ हुआ हो तो आप हमें संक्षेप में बता सकते हैं?
0: जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, हर देश के हर कोने से लोग आते हैं यहाँ पे, जो विदेश के लोग हैं वो भी बहुत सारे आते हैं, कश्मीर को एक्सप्लोर करके जाते हैं और बहुत अच्छी मैसेज लेकर जाते हैं। वो तभी जाते हैं जब उनके हम अच्छी गाइडिंग करते हैं, उनका अच्छे से साथ देते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव रखते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि लोग यहाँ से एक अच्छी मैसेज लेके जाए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, तो ऊपर वाले का शुक्र है कि ऐसा ही हो रहा है, लोग यहाँ से बहुत अच्छे खुशी होके वापस जा रहे हैं। एक कस्टमर आया था वो केरला से था, काफी अच्छा रहा है उनके साथ, उनके साथ इतना अच्छे से हुआ कि वो जब नेक्स्ट टाइम आए तो वो डायरेक्ट हमारे घर ही आए थे।
1: तो क्या बात है,
0: ज्यादा अच्छा रहा था।
1: फहीम जी से अच्छी खासी बात चल रही थी मगर शायद उनका कॉल कट हो गया बीच में से और हमारी बातचीत पूरी नहीं हो पाई, इसके लिए हमें बड़ा खेद है। बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी लेकिन हमारे जो साथी होते हैं उन तक ये कौन सा गीत फहीम जी सुनना चाहते थे इसकी जानकारी उन्हें मिल चुकी है, तो आइए फहीम जी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं इज्जत फिल्म का ये गीत, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं।

0: श्रोताओं, आज के इस फोन इन कार्यक्रम में आपने जिस उत्साह से अपनी राय हमारे साथ साझा की, उसके लिए हम दिल से आभारी हैं। आपकी बातें, आपके सुझाव और आपके अनुभव ही हमें बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं, बदलाव से ही निखरती है हर एक कहानी, आपके साथ से ही मिलती है हमें नई रवानी। उम्मीद है कि हमारे नए कार्यक्रम और बदले हुए समय आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे और आपके हर दिन को और भी खास बनाएंगे। साथ ही हम अपने साथियों को बताते चले कि अब आपसे अगली मुलाकात होगी अगले सोमवार को सुबह 11 बजे इसी कार्यक्रम यानी कि हेलो फरमाइश में, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1, जहां हम रिकॉर्ड करेंगे आपसे की हुई बातें। हमारा टेलीफोन नंबर है 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड 022। हमारा दूसरा नंबर है 28670288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर सुने 4002-4662, मुंबई का एसटीडी कोड 022। हमारा दूसरा नंबर 2687-0288, मुंबई का एसटीडी कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण आप सुन सकेंगे गुरुवार को दिन में 4 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार को दिन में 10 बजे। आपसे विनम्र निवेदन है कि जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, वे कृपया अब 2 माह के बाद ही कॉल मिलाएं, ताकि अन्य श्रोताओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सके। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रहा सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। इसी के साथ आज के इस हेलो फरमाइश कार्यक्रम से दीजिए इजाजत अपनी दोस्त नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अडेरकर ने आज लोकभवन में तमिलगा वेत्री कड़गम तिविके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय को आमंत्रित किया। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि बैठक के दौरान राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। उधर केरलम में

कांग्रेस पार्टी नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरेरकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि वर्तमान में भारत स्थिरता का अड़िग स्तंभ है और यह साझा जल क्षेत्रों में त्वरित संकटकालीन सहायता और सुरक्षा की गारंटी देता है। श्री सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में 10वें हिंद महासागर संवाद को संबोधित किया। श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र को सक्रिय रूप से आकार दे रहा है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। बेंगलुरु अंक तालिका में तीसरे और लखनऊ अंतिम पायदान पर है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का किया। सेमीफाइनल में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहत की टीम का सामना चीन से होगा। भारतीय पुरुष रिकर्व टीम को पहले ही राउंड में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि ठीक 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। 5:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे अपने युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

शाम 6 बजे आप सुनेंगे हमारे किसान बहनों एवं भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। 6:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत और 7:15 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार एवं जिले की हलचल आप सुन सकते हैं शाम 7:25 पर और 7:50 पर आप सुनेंगे आपके ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। समाचार संध्या आप सुन सकते हैं रात्रि 8:45 पर।

रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। गजलों की महफिल सजेगी रात्रि 9:15 पर।

विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार आप सुन सकते हैं रात्रि 9:30 पर और रात्रि 10:00 हम आपके लिए लेकर आएंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग। चित्रपट तराने कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा रात्रि 10:30 पर और 10:55 पर हम जानेंगे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार आप सुन सकते हैं रात्रि 11 बजे और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। तो श्रोताओं, ये था आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं डॉक्टर राहुल जोशी की आवाज़ में, गणपति सरस्वती और लक्ष्मी भजन एल्बम के इस गीत से। नीलम बंसल के बोल हैं और डॉक्टर संजय राज गौरीनंदन का संगीत है।

सूर्या गायत्री की आवाज़ में अभी आपने सुना एल्बम पायोजी मैंने का ये गीत, और अब आइए सुनते हैं ये संदेश।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

गोल्डी शर्मा के गाए इसी गीत के साथ ही वंदन कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। शाम के 5:30 पर हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में हम हैं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त सचिन। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, बदलाव जब भी किसी चीज़ में होता है तो युवाओं को हमेशा से ही भाता है, और जब बात मौसम की हो तो क्या बात है। पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिससे कि उमस भरी गर्मी से हम लोगों को काफ़ी राहत मिली है। ऐसे मौसम में चाय के साथ पकौड़े खाने का बहुत मन करता है, या फिर कहें युवाओं के पास मौका होता है पिकनिक महान बनाने का। और अब दोस्तों जान लेते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ है खास। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर युवाओं का सपना होता है अच्छी पढ़ाई कर सरकारी नौकरी पाने का, पर सफलता

जो है सबको नहीं मिलती, क्यों? आज के इस कार्यक्रम में हमारी बात इस विषय पर आपसे होगी। साथ ही साथ आज हम चर्चा करेंगे कल यानी कि 8 मई को मनाए जाने वाला रेड क्रॉस दिवस के बारे में, और चलते चलते हम जानेंगे करेंट अफेयर्स के अंतर्गत सैन्य अभ्यास प्रगति के बारे में। तो चलिए हम और आप मिलकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहद ही खूबसूरत गीत से।

और अब इस खूबसूरत गीत सुनने के बाद हम चलते हैं अपनी बात की ओर। दोस्तों, आज प्रतियोगी परीक्षाओं के इस दौर में जहां लाखों उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं, वहां सफलता का फासला जो है मेहनत नहीं बल्कि हमारा फोकस तय करता है। क्या आप भी किताबें खोलकर बैठे हैं लेकिन दिमाग में सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस आपके चल रहे हैं? क्या आप एक साथ 10 किताबें पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ याद नहीं रह रहा है? अगर हाँ तो दोस्तों, आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है? डिस्ट्रैक्शन, पढ़ाई के बीच से फ़ोन उठाना, इंस्टाग्राम पर रील्स देखना या दोस्तों से चैट करना। दोस्तों, याद रखें, फोकस का मतलब केवल किताबें पढ़ना नहीं है बल्कि अध्ययन के लिए एक शांत व्याकुलता मुक्त स्थान चुनना चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो दुनिया को म्यूट कर दें। अगर आप दिन में सिर्फ 4 घंटे भी पूरी मेहनत से पढ़ते हैं, एकाग्रता से पढ़ते हैं, तो वह आपके 10 घंटे की बिखरी हुई पढ़ाई से कहीं बेहतर है। फोकस आपकी मानसिक क्षमता को बढ़ाता है और याददाश्त में भी सुधार करता है। आपके दिमाग में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम अपना फोकस कैसे बढ़ाएं? तो इसके लिए आप 50-10 का नियम अपना सकते हैं। लगातार पढ़ाई न करें, 50 मिनट की पढ़ाई करें और फिर 10 मिनट का ब्रेक लें। इससे दिमाग हमारा थकता नहीं है। दूसरी बात, आप सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। पढ़ते समय फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें या फिर उसे साइलेंट कर दें। तीसरी बात, पढ़ाई के दौरान रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो पढ़े हैं उसे बिना देखे लिखने की हमें कोशिश करनी चाहिए, यह फोकस को और भी गहरा करता है। चौथी बात, आप अपने हेल्थ पर ध्यान दें। अच्छी नींद, पौष्टिक खाना और योग, ये तीनों मिलकर हमारे फोकस को बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एक लंबी रेस है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसमें आपके साथ निराशा भी आएगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपनी तुलना किसी से करने से बचनी चाहिए हमको।

अपनी तैयारी को दूसरों से नहीं बल्कि कल की अपनी तैयारी से बेहतर बनाएं। अगर आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो खुद को कह सकते हैं धोखा दे रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों फोकस का मतलब है अपने सपनों के लिए हर बोरिंग दिन को मेडिसिन की तरह पीना। तो दोस्तों आज से ही अपना एक एक मिनट कीमती बनाएं, शोर को कम करें और फोकस को बढ़ाएं। तो आप हमारे बातों पर विचार करते रहें। फिलहाल आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में एक और गीत।

दोस्तों, कल आप जानते होंगे कि कल यानी कि 8 मई को रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेट का जन्मदिन है, जिनका जन्म सन 1828 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। 1859 ईस्वी में सोलफेरिनो की लड़ाई में घायल सैनिकों की दुर्दशा देखकर हेनरी ने जो करुणा दिखाई, उसने एक ऐसे संगठन को जन्म दिया जो कि आज दुनिया भर में आपदा, युद्ध या महामारी के समय आशा का किरण बना हुआ है। कल यानी 8 मई 2026 को हम सब इस मानवता में एकजुट के थीम के साथ मना रहे हैं, जो कि हमें याद दिलाता है कि विपत्ति के समय में हम सब एक हैं। दोस्तों, रेड क्रॉस का मतलब सिर्फ खून डोनेशन ही नहीं होता है, या कहीं उससे भी ज़्यादा है। या एक निस्वार्थ सेवा है, या वह स्वयंसेवक है जो कि बाढ़ के पानी में, मतलब कि मलबे के बीच में, या फिर युद्ध के मैदान में अपना जान जोखिम में डालकर हमारा जीवन बचाते हैं, या उन घायलों की मदद करते हैं जिनके पास कि कोई और नहीं होता।

रेड क्रॉस का जो 7 मूल सिद्धांत होते हैं, मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता होती है, जो हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स और वॉलंटियर्स को धन्यवाद हम सभी को देना चाहिए, जो कि मानवता को जीवित रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आप भी अगर चाहें तो रेड क्रॉस से जुड़ सकते हैं, रक्तदान करें, प्राथमिक चिकित्सा सीखें, किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि मानवीय पीड़ा को कम करने में हम सभी की भूमिका है। कार्यक्रम में आगे बातचीत का दौर आपसे जारी रखेंगे। फिलहाल आपको सुनवाते हैं एक और गीत।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अंतराल के बाद पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं और अब चलते चलते बात करते हैं भारतीय सेना के उस महाभ्यास की जो कि दुश्मनों के पसीने छुड़ा रखा है। और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभ्यास प्रगति की। दोस्तों, मेघालय के घने जंगलों और उमरोई के विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत गूंज रहा है। यह केवल एक युद्ध खेल नहीं है, यह हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और स्थिरता के लिए क्षेत्रीय ताकतों की एक बड़ी साझेदारी है। नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका समेत लगभग एक दर्जन देश हमारे जाबाजों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास प्रगति का उद्देश्य केवल तकनीकी साझा करना नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय चुनौतियों का भी सामना करने के लिए एक सुरक्षा ढांचा तैयार करता है। यह अभ्यास सुनिश्चित करता है कि जब भी किसी संकट का सामना करना हो, हमारे मित्र देश हमारी सेना के साथ एक मजबूत मोर्चे के रूप में खड़े हो। सीमा सुरक्षा से लेकर आपसी विश्वास, अभ्यास प्रगति, प्रगति और सुरक्षा का नया अध्याय लिख रहा है। और अब सुनवाते हैं कार्यक्रम में एक और गीत।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। अब लीजिए सुनिए किसान बहनों एवं भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुने वाला सभी श्रोता भाई लोगों के मनु भाई के तरफ से नमस्कार बा, और साथे साथे रनिया बहन रो रो के नमस्कार बा।
1: नमस्कार मनु भाई आ सभी श्रोता भाई बहन लोगन के रनिया बहन का नमस्कार बाटे।
0: देखी रनिया बहन हमनी के पेड़ पौधा तो खूब लगाओ तीन जा, फलदार पौधा भी लगाओ तीन जा, बाकी आज आंधी या पानी इतना बिजुड़ रहा हो, ये आंधी पानी में मत पूछी, बहुत जगह तो बहुत से आम झड़ गई है आ बहुत आम गिरल है, बहुत ये आंधी तूफान में देखते कुछ लैका भी आम बीने खातिर चल दिल।
1: हाँ हाँ आ कड़ाके का बिजली जोन गिरता मनु भाई, कहीं कहीं बर्फबारी जोन होखे लगल।
0: जी जी
1: तो मौसम बड़ा मने
0: प्रतिकूल बा।
1: हाँ एकदम मने कभी इतना ठंडा लगे लगता, कभी गर्मी लगे लगता, कभी देखा था नहीं इतना बरखा बुन्नी होखे लगता है। अभी देखिए काले नहीं दो चार दिन के मने हर आसपास एक दिन दो दिन बीच करके हर जगह आंधी तूफान बवंडर मार आ रहल बाटे।
0: 10 तारीख तक रनिया बहन हमनी के रहे के आसार बा, ऐसन में हमनी के थोड़ा सावधानी बरते के चाहिए, लइकन के ये आंधी तूफान में जब बिजली कड़कता तो आम बीने चाहे कोनो काम में बहरी ना जाए देवे के चाहिए। ऐसे कि हमनी के जीवन के बड़ा महत्व बा, आ बाल बच्चन के तो पूछबे मरी कितना महत्व।
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ अपन अहू पर विशेष ध्यान देवे के बाटे, आ माने अपन बड़ बुजुर्ग के भी साथे साथे मवेशी आ फसल के भी ज्यादा ध्यान देवे के बाटे।
0: बहुत से लापरवाही हमने कर लेते हैं।
1: हाँ, अगर बरखा होखे लगत बा तो अगर निकास नहीं जे हमने बनौले खेत में
0: जी जी
1: जल निकास का साधन, तो समझ लें कि वो जंगा जौन भी फसल बाटे तर तक तरकारी के उस सब मने सड़गल जाई, यही पर हमने के विशेष ध्यान देवे के बाटे, ओकर निकास निकाल देवे के बाटे, व्यवस्था कर देवे के बाटे।
0: इतने नहीं रनिया बहन हमने के घर में भी जहाँ बानी जा तो देखत तन जा कि असार बा बदरी के बारिश होखे वाला बा, तो छत के नाली वगैरह साफ सुथरा कर देल जा, काहे से कि नाली जाम हो जाए तो ओकरा में कचरा वचरा घुस जाए तो पानी बहुत मने एक तरह से जहाँ ना पहुँचे कि तहाँ पहुँचे।
1: इससे हाँ।
0: थोड़ा सा सावधानी हमने के रखे के चाहिए। हाँ आज के कार्यक्रम की थोड़ा संक्षिप्त जानकारी लिहल जा। अभी हमने के देखिए आज की खबरें के तहत कुछ है कृषि संबंधी खबर जानल जाए। आज की बातें के तहत हमने के गर्भित पशुओं के आहार और देखभाल के बारे में एगो वार्ता सुनल जाए। आज के वार्ताकार रहब डॉक्टर राहुल कुमार, आ नई उम्र नई फसल के तहत फलदार बीज से लाभ कावा एकरा बारे में जानल जाए। आज की नसीहत के तहत स्वच्छता है जरूरी ए विषय पर जानकारी ले ली, आ कार्यक्रम में कई संदेश भी सुनल जाए, आ अंत में हमने के मौसम के पूर्वानुमान जानल जाए, आ कुछ लघु और सामान्य सलाह भी जानल जाए। तो देखो तनी कि रुआ खबर।

0: लेके तैयार बनी किसान भाई लोग खातिर। तो
1: हाँ
0: आज
1: हाँ
0: फरिया फरिया के बताई
1: हाँ
0: कि किसान
1: हाँ
0: भाई लोग कृषि संबंधी खबर कौन कौन से लेके
1: देखिए
0: आई लोग।
1: बड़ा बढ़िया खबर बटे मनु भाई।
0: जी जी
1: आ देखिए खबर ये बा कि हमने के बिहार सरकार किसान खातिर के डिजिटल रूप से सशक्त बनावे के दिशा में बड़ कदम उठौले बटे। उ कदम बटे बिहार कृषि ऐप के एकीकृत कृषि प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित कैले बा। यह ऐप के माध्यम से किसानन के सरकारी योजना, उर्वरक उपलब्धता, मौसम पूर्वानुमान, बाजार भाव सलाह, फसल सलाह जौन भी बाटे, मृदा स्वास्थ्य और शिकायत निवारण जैसन सुविधा एक जगह पर उपलब्ध कराई। कृषि विभाग का दावा ये बा कि ये ऐप खेती किसान के से जुड़ल अधिकांश समस्या का समाधान मोबाइल पर ही उपलब्ध कराई। ऐप का उद्देश्य ई बा कि कृषि सेवा के पारदर्शी आ सरल आ सुलभ बनावे के बाटे, जेकरा जरिए किसान घर ही बैठल योजना के जानकारी के साथे साथे ऑनलाइन आवेदन भी कर सके। हम उहे आवेदन के स्थिति जौन बाटे किसान पंजीकरण आ किसान पासबुक जैसन सुविधा भी ओकरा में जुड़ल गई बाटे।
0: बड़ा बढ़िया खबर बा।
1: हाँ आगे बा बिहार कृषि ऐप के AI आधारित चैट सहायता भी ओह पर उपलब्ध सुविधा देहल जाई, जेकरा माध्यम से किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भइल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भइल, चाहे फसल प्रबंधन, पशुपालन, चाहे कृषि वैज्ञानिक के सलाह जैसन जानकारी ओह पर प्राप्त कर सकेला। आ कृषि विभाग का मानना ई बाटे कि एकरा से किसान के त्वरित समाधान मिली आ खेत में आधुनिक तकनीक का भी उपयोग बढ़ सकत बाटे।
0: देखिए बड़ा बढ़िया वो खबर बतेनी। आ हमारा आशा बा कि देखी ये समय हमने किसान भाई लोग खातिर सरकार बहुत कुछ करता। आ मोबाइल के तो मत पूछी, मोबाइल के तो हर वक्त हर समय इतना बढ़िया काम बा,
1: एकरा
0: के हमनी के संभाल के रखे के चाहिए। एगो और खबर बा रनिया बहन हमनी के कि कभी बंजर रहल धरती अब उग रहल बा यहाँ पर समृद्ध फसल। जयपुर के पास गुड़ कुमावतान एगो गाँव बा, एगो बसडीही भी गाँव बा, ओकरा में तकनीकी ने बदलाव देखल गेलो। देखी खेती के तकनीक बहुत बड़ा बदलाव बा, ओहिजा के पॉली हाउस से हो रहल बा लाखों के पैदवार। ये गांव के कहल जात बा आजकल मिनी इजराइल।
1: अच्छा।
0: देखी इजराइल के नाम दिल दे ऐसे कि इजराइल में खेती के बहुत बड़ा एक तरह से कहीं कि माने तकनीक बा नया नया जो उनकी खेती हो जाके लोग कर रहे हैं। जाके वो राम नारायण चौधरी किसान बनी कहत बनी कि क्षेत्र में भूजल स्तर लगातार गिर रहा बा, ऐसा में पॉली हाउस के निकट तालाब बनावल गई, एकरा में बरसाती पानी एकत्र करके सालों भर बूंद बूंद सिंचाई करके मैंने व्यवस्था कर देनी है। पहले गेहूँ जौ प्याज चना के खेती करते हैं परंपरागत, बाकी ओकरा में मुनाफा कम होते रहे। बाकी अब पॉली हाउस में टमाटर खीरा शिमला मिर्च बहुत से खेती करते हैं सब्जियन के, आ एकरा से बहुत लाभ बा। आ हमनी के स्वजन राम नारायण के 50 पॉली हाउस तक बनी लेवन, एक पॉली हाउस पर लगभग 40 लाख रुपया के खर्च होता, सरकार एकरा में 50% अनुदान भी दे रहा बा। तो देखिए पॉली हाउस में फसल के अनुसार तापमान आर्द्रता नमी नियंत्रित कइल जाला, यानी पानी के भी एकरा में 90% के रनिया बहन बचत होला, मौसम के एकरा पर असर ना पड़ेला, इससे हमनी के पॉली हाउस भी बना के लाभ ले सकत बनी जाए। तो आई अब देखी हमनी के वार्ता एगो सुनल जा, वार्ताकार बन डॉक्टर राहुल कुमार जी, आ विषय बा गर्भित पशुअन के आहार और देखभाल कैसे कइल जा।
1: जी सुनल जा सुनल जा।

गर्भकाल वह समय है जब मादा पशु के गर्भाशय में बच्चा पलता है। यह गाय में लगभग 280 दिन, भैंस में 310 दिन, भेड़ बकरी में 150 दिन का होता है। गर्भकाल के समय गर्भित पशु और उसके पेट में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए उचित देखभाल आवश्यक है। पशुपालकों को यह जानना बहुत आवश्यक है कि पशु गर्भित है या नहीं। कई बार पशु गर्भित होने के गलत लक्षण दिखाता है, इसलिए गाभिन होने के लगभग 2 माह पश्चात यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पशु गर्भित है या नहीं। गर्भावस्था का पता लगाने के प्रथम तरीका है, गर्भित पशु स्वतः संकेत देते हैं, जैसे पशु का स्वभाव नम्र होने लगता है। पशु गर्भित होने पर 21 दिन बाद पुनः गर्भ नहीं होती। पशु की स्तन ग्रंथि

ग्रंथियों का विकास होने लगता है। गर्भावस्था में पशु के शरीर पर चर्बी जमने लगता है, जिससे उसकी त्वचा परत चिकनी और चमकदार दिखने लगती है। पशु भारी होने लगता है। बच्चा देने के 14 दिन पहले गायों की स्तन छेमी उभर आते हैं। इन सभी बाह्य व्यवहार को देखकर गर्भावस्था का पता चलता है। वहीं अनुभवी पशु चिकित्सक गर्भावस्था की जांच मलाशय द्वार में हाथ डालकर गर्भाशय एवं अंडाशय की जांच कर 2 माह या उससे अधिक के गर्भ का को बता सकते हैं। आधुनिक तरीके जैसे अल्ट्रासाउंड, हार्मोन एनालिसिस आदि टेस्टों के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। गर्भकाल के दौरान पशु के लिए खान पान की विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। गर्भकाल के 5वें महीने से सामान्य खुराक के अतिरिक्त देसी गाय को 1.25 किलोग्राम तथा संकर गाय या भैंस को 1.75 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए। अधिक दूध देने वाले पशुओं को भरपेट चारा दाना खिलाना चाहिए। अंतिम 2 माह में दाना बढ़ा देना चाहिए। देसी गाय को लगभग 2 किलोग्राम और संकर गाय या भैंस को 4 किलोग्राम दाना देना चाहिए। भरपेट साफ पानी पीने के लिए देना चाहिए। प्रसव के 50 से 60 दिन पहले से गाय भैंस से दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। कुछ पशु में स्वतः ही दूध निकलना बंद हो जाता है, इसे ड्राई पीरियड कहते हैं। इस आराम के समय में पशु अपनी शारीरिक क्षमताओं का विकास करता है, स्तन ग्रंथियों का विकास होता है, जिससे अगले ब्यात में पशु अधिक दूध देती हैं। देसी पशुओं में यह अवधि कई बार अधिक होती है। इस समय सामान्यतः पशु गर्भ के 8 से 9 माह में होती हैं। पशु को उचित खान पान और आरामदायक आवास की व्यवस्था देनी चाहिए। बड़े फार्मों पर प्रजनन योग्य गायों की संख्या का 5% मैटरनिटी पैन बनवाने चाहिए, जिसकी सतह पर फिसलन ना हो। संभव हो तो किसान भाई पशु को इस समय में बाहर चरने नहीं भेजें तो ही अच्छा है। थनैला रोग के नियंत्रण के लिए ड्राई काउ थेरेपी भी इसी समय देनी चाहिए। बहुत कम या ज़्यादा तापमान पशु के शरीर में विभिन्न क्रियाओं को सक्रिय कर देता है। इस समय अच्छे चारे की भी समस्या हो जाती है। गर्मी से बचाव हेतु पशु को नहलाएं, पीने के लिए ठंडा पानी उचित मात्रा में उपलब्ध कराएं। यदि हो सके तो अधिक दूध वाले पशुओं के लिए खसखस की पट्टी, पंखा, कूलर की व्यवस्था करनी चाहिए। पशुओं को हरे चारे रात को उपलब्ध कराने से अधिक खाता है। पशुशाला बनाते समय गर्मी से बचाव का ध्यान रखना चाहिए और आसपास मूलतः पश्चिम की ओर पेड़ लगाना चाहिए। पशु का प्रसव की सही तिथि के ज्ञान के लिए पशुओं का रिकॉर्ड रखना ठीक रहता है। साथ ही साथ पशुओं के प्रजनन, ऋतुकाल, खान पान, टीकाकरण, कृमिनाशक दवाओं का समय पर ध्यान देना और सभी रिकॉर्ड रखना चाहिए। किसान भाई को प्रसव लक्षण की जानकारी भी रहनी चाहिए, जो है पशु खाना पीना कम करके अकेला रहने लगता है, थन और ऐने भारी हो जाती हैं तथा कभी कभी दूध भी आने लगता है। पशु की योनि के पास के जोड़ तथा मांसपेशियां ढीली होने लगती हैं, योनि का आकार भी बढ़ जाता है। पशु को प्रसव का दर्द प्रारंभ हो जाता है। पूरा प्रसव में लगभग 12 घंटे लग सकता है। कोई परेशानी होने पर पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद पशु अन्य झिल्लियां आदि निकालती है, जिसे प्लेसेंटा जेर कहते हैं। प्लेसेंटा निकलने में 6 से 8 घंटा लगते हैं। अगर 8 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो इसे हाथ से निकालना पड़ता है। इस कार्य को भी किसान भाई पशु चिकित्सक के सलाह अनुसार करनी चाहिए। ध्यान रखें, पशु प्लेसेंटा नहीं खाए। प्रसव अवस्था में पशु पर दूर से ही नज़र रखें, उसे परेशान नहीं करें। प्रसव के बाद हल्के गुनगुने पानी से जीवाणुनाशक के घोल से पशु के पिछले भाग को साफ करना चाहिए। यदि बछड़ा पशु से अलग पालना है तो तुरंत हटा लेना चाहिए, अन्यथा पशु को बछड़े को चाटने दें और बछड़े के नथुने साफ कर देने चाहिए। माँ बछड़े को अधिक सर्दी और गर्मी से बचाना चाहिए।
बछड़े का नाल

0: नए ब्लेड से 2 से 3 सेंटीमीटर छोड़कर काट देना चाहिए और उस पर एंटीसेप्टिक दवा टिंचर आयोडीन लगा देना चाहिए। बछड़े को जन्म के आधे घंटे में ही फेनूस पिला देना चाहिए। बछड़े को उसके शरीर भार का 1/10 भाग फेनूस दिन भर में बांटकर बार बार पिलाना चाहिए। यदि बच्चे को खीस उपलब्ध ना हो तो 1/2 चम्मच अंडी का तेल, 1 कच्चा अंडा गर्म दूध में मिलाकर पहले 3 दिन तक दें। इसे दिन में 3 बार नित्य दे सकते हैं। प्रसव के 50 से 60 दिन बाद पुनः पशुओं को गाभिन करवाना चाहिए और 2 ब्यातों के बीच का अंतराल लगभग 14 महीने से कम रखना चाहिए। गर्भवती भेड़ बकरियों की अंतिम 6 से 8 सप्ताह में ही मुख्य रूप से बच्चे की बढ़वार होती है, इसलिए इस समय दलहनी चारा, दाना और चाटने के लिए खनिज लवण की ईंट प्रचुर मात्रा में देनी चाहिए। वहीं प्रसव से कुछ दिन पहले दाना घटाकर चुन्नी बढ़ा देना चाहिए। पशु को भरपेट हरा चारा खिलाने से विटामिन ए और अन्य खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। कृमिनाशक दवाओं को पशुओं के बच्चों को पहले 3 दिन पर, फिर हर माह 1 बार 6 माह के उम्र तक, उसके बाद हर 2 माह पर 6 से 12 माह के उम्र तक, इसके बाद हर 4 माह के अंतराल पर देना अच्छा होता है।
1: देखिए रनिया बहिन, कितना निमन निमन जानकारी डॉक्टर राहुल जी दिलन कि गर्भवती पशु के आहार का होई, एक और देखभाल कैसे की जाओ, ये जानकारी खातिर हमनी के डॉक्टर राहुल कुमार जी के धन्यवाद दे।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब हमनी के आगे देखल जाओ, नई उम्र की नई फसल के तहत फलदार वृक्ष से लाभ का बा।
2: देखिए मनु भाई
1: जी,
2: आज के समय में फलदार वृक्ष, कौनो फलदार वृक्ष होके
1: जी,
2: वो खाली पेड़ नहीं बल्कि हमनी के जीवन का बहुत बड़ सहारा हुए।
1: अरे मत पूछिए।
2: जब हमनी के अपने आस पास आम का पेड़, अमरूद का, लीची का, पपीता का, केला का, मने कौनो तरह के अगर देखी ला जा तो मन में लग से लगे ला कि कतना बढ़िया लगता, एकदम हरियर हरियर बाटे, ओमे फल खिलल बाटे। आ देखी कि प्राकृतिक का ऐसा चीज के हर फल का अलग अलग स्वाद।
1: आ देखी अतने नहीं, पेड़ पौधा फल तो देते बा, साथे साथे ताजा हवा देता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एकदम ताजा हवा जोना से कहेंगे आ पौष्टिक फल, जोना में कोनो दवा के न कोनो कीटनाशक के न कोनो कीटाणु खरपतवार राशि कोनो के ऊपर असर नहीं है। ऐसन में हमनी के देखिए विटामिन मिनरल भरपूर मिलेला, तो ताजा हवा आ पौष्टिक फल यदि लेवे के बा तो हमनी के फलदार वृक्ष लगावे के चाहिए। आ फल इतने ना रनिया बहन, आर्थिक लाभ भी बा एकरा से। फलदार वृक्ष जैसे लगा देनी, आम लगा देनी, नींबू लगा देनी, अमरूद लगा देनी, तो एक बिक्री कर करे हमनी के आय भी प्राप्त कर सकते
2: हैं। हाँ, डॉक्टर भी कहेल कि भाई फलदार वृक्ष अगर, अरे पेड़ पौधा होके फल अपन तो निकाल निकाल तोड़ तोड़ ओकरा के खाइल करी, ओकरा से हमनी के हर तरह का विटामिन मिली, मिनरल मिली, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेला।
1: आम बेसी बात बेची,
2: बेसी बात बेची,
1: ओकरा के
2: आम की आम गुठली का दाम ओकरा से निकल
1: जाए, एकरा से पर्यावरणीय सुरक्षा भी बा।
2: तब का
1: रनिया बहन, ये कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषित करला और ऑक्सीजन के देवेला, ये हवा के शुद्ध करे के काम करला, आ मिट्टी के कटाव भी रोकेला। हमनी के जिससे कि ऑक्सीजन छोड़े नहीं जा, कार्बन डाइऑक्साइड लेबे नहीं जा, तो पेड़ पौधा भी कार्बन डाइऑक्साइड लेवेला, ऑक्सीजन छोड़ेला, यानी दोनों आदमी के संतुलन जोन बा बनौले रहेला। एक तरह से छाया तो बढ़बे करला, सौंदर्य भी बढ़ेला। घर के आगे लगा देनी पौधा, देखिए कितना बढ़िया, ओकरा में आम फरल बा घर दिखाई देता, अब अमरूद फरल बा, कोई मान ली कि हिते गुण आ गई भाई, वो चिखला अमरूद खा ला भाई।
2: अरे खाली ओतने नहीं ना मनु भाई, अभी देखिए अभी जोन कच्चा आम निकलत बाटे ओकरा से अचार बनाई, गुरमा बनाई, एकदम फर्स्ट क्लास के।
1: अरे आजकल तो कुचिला इतना बढ़िया लगता, दाल भात खाई चाहे रोटी सब्जी खाई, थोड़ा सा कुचिला हो जी, जैसे कहले ना चोखा चटनी, तो चटनी बन गई, तो अब ओकर स्वादे बदल गई। इसे देखी हमनी के फलदार वृक्ष से बहुत लाभ बा, आ लाभ लेवे के भी चाहिए। एकरा से देखी वन्य जी जौन जीव बाड़सन उन्हीं के आवास भी मिल जाए, जैसे चिड़ै बिया, अब ओकरा पर खोता लगेलस, अंडा दिलस, बच्चा दिलस, उड़त या फुर फुर अपन, तो एक तरह से उनके अब पेड़ पौधा रहबे ना करी,
2: तो कहाँ से
1: पक्षी कहाँ रही।
2: दूसर की बात यो बना

0: कि हमने के जोन आगे आवे वाला पीढ़ी बटे ओकर एकदम सुंदर उपहार न हो जाइए गो कि दादा परदादा कतना ऊ याद रखी हां।
1: अच्छा अब ये देखी गौरैया चिरई लोक तैसन
0: एकदम ना कौवा नहीं खसल लोक गिद्ध नहीं ख कौनो नहीं खन लेको चिरई
1: पहले गिद्ध रहसन आप पहुंच जसन त हमने के देखी एक तरह से वातावरण के शुद्ध करत रहसन ऊ सब गंदगी साफ कर देत रहसन गौरैया चिरई रहिसन कि हमने के जोन कीट बाड़न कीटाणु बाड़ी सबके निगल जात रही खेती में बहुत फायदा करते यही से कहल जाला किसान के मित्र कुछ बाड़न बकुला बाड़न तो बकुला कितना फायदेमंद बाड़न हमनी के सब माने
0: जितना छोट छोट कीट बालन सन समय खाओ करके ठीक
1: ऐसे हमनी के वृक्ष लगाई
0: अब माटी के बनले न रहेला जवन भी रहेला वो माटी के बनले रहेला अगर नहर के आरार पर लगा दी तो देखिए एकदम बनले रही।
1: हाँ हाँ ऐसे मिट्टी कटाव भी रोके
0: हाँ, मिट्टी
1: देखिए इतने ना ही रनिया भाई हमनी के आत्मनिर्भरता भी बनावेला जैसे हमनी के खुद माने फल खुद उगाई आ व्यवसाय करी तो हमनी के आत्मनिर्भरता बनल रही फल के बेचत भी बनी फल के खात भी बनी ऐसे फलदार वृक्ष एक ना एक साथ अनेक लाभ बा
0: तब का प्रकृति का उपहार के मानल जाला
1: जी जी तो एकरा के हमनी के लगावल जा आ एकरा से लाभ लिहल जा आई कुछ संदेश सुन लिहल जा
0: एकदम
1: फिर आगे हमनी के चर्चा
0: हां हां चल संदेश सुन लिहल जा।

0: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक है। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो

0: है जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं, मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
2: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
3: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।
4: अभी हमने के संदेश सुनत रह जाए, आई आज के नसीहत देखल जा, स्वच्छता काहे जरूरी बा।
5: देखिए मनु भाई, स्वच्छता खाली हमने के एगो आदत नाही, बल्कि हमने के जिंदगी का एगो बड़ जरूरत भी बन गई बाटे। काहे कि अगर हमने के अगर आसपास साफ सफाई रखल जाए, तो हमने के खाली वातावरण ही नाही सुंदर होखी, बल्कि हमने के शरीर भी स्वच्छ हुई सुंदर होखी। अक्सर हमनी के देखी ले जा कि जहाँ गंदगी रहेला, मच्छर मक्खी जहाँ जन्म लेवे ना, वो जंगे बहुत सारा बीमारी भी बढ़त चल जाला।
4: देखी संक्रमण जितना रोग बा, ये गंदगी से ही होखे वाला।
5: हाँ बिल्कुल,
4: संक्रमण फैले वाला कीटाणु जोन बढ़न ये बीमारियन के घर बढ़, चाहे वो माने कोनो बीमारी होखे। खजुली खेसरा तो बढ़ले बा, एकरा साथे साथे भयानक रोग जोन बा,
5: हाँ
4: वो भी हमनी के कीटाणुओं से होखेला बा।
5: दूसर की बात की खाली शरीरे पर नहीं हावी होखेला, हमनी के मन पर विचार पर भी हावी हो जाना। मन हमनी के एकदम उदास हो जाए, शरीर स्वस्थ अस्वस्थ हो जाए, सुस्ती बनल रह जाए, जब बुखार लगी, तबियत खराब रही, तो कारण यह सब होखे लगी।
4: देखी कोनो भी रोग लाग जला रनिया बहिन, तो हमनी के वो रोग पर कांस्टेंट हो जानी आ ओकरे बारे में हमेशा सोचे लागे नहीं जा। आप देखिए हमने के दिमाग काम ना करला, जिससे कि रोग कनी कि मानसिक शांति ना मिली, शारीरिक स्वच्छता ना रही, तो ये तरह से देखिए स्वच्छता के बहुत बड़ा महत्व बा। हमने के शारीरिक स्वास्थ्य रखे के बा, तो दैनिक स्वच्छता जैसे कि स्नान बा, हाथ धोना बा, बैक्टीरिया और वायरस से बचाव खातिर, माने या टाइफाइड बा या हैजा बा, इस सब से बचाव खातिर सबसे पहले हमनी के जरूरी बा स्वच्छ रहल, हाथ पैर धोल। बहुत से आदमी नाखून बढ़ा लेते हैं, नाखून में बहुत से
5: गंदगी रहत,
4: गंदगी बढ़ल। स्कूल में लड़कन के बतावल जाता कि तू नाखून काट के आओ, तो उनका थोड़ा सा खराब लगता कि नहीं काहे नाखून काटी, हमरा बड़ा अच्छा लगता बढ़ा के रख ले।
5: आजकल लड़कीन के शौक हो गया, आदमी लोग के भी देखा नहीं कि लोग नाखून बढ़ा बढ़ा के
4: एक बारे में यदि उनका के बतावल जाओ। अरे अभी देखी एगो घटना याद पड़ो, थोड़ा सा लड़की को नाखून बड़े को बढ़े अपने से अपन गलिया पोकरा चिरा गई, अब बहुत इतना बड़ा घाव मती हो गई, और ये कैसे हो गया जी? तो करे कि अपने नखुनवा सब, इसीलिए कहा जाता है कि नाखून काट के रखो, अपने से अपन घाव बना लिया। तो देखी मानसिक शांति तो बढ़ले बाइकरा में, स्वच्छता रखब तो आत्मविश्वास में भी वृद्धि होला, पर्यावरण संरक्षण भी होला। देखिए पर्यावरण संरक्षण मतलब कि हमने कचरा कचरा वाला डब्बा में रखल जाए, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, सरकार हमने कितना बड़ा जितने
5: साफ सफाई रखब उतने आपके फायदा ही फायदा बाटे, बड़ बीमारी से दूर रहब, पैसा जोन खर्चा होकत बा डॉक्टर के देवे के, वो बचत होगी आपके, स्वस्थ भी रहब, सुंदर भी लगी आपके घर अंगना आस पास सब सुंदर भी लगी।
4: देखी आपन भी व्यक्तिगत स्वच्छता रखी, आ घर परिवार के भी रखी, आ मोहल्ला के भी स्वच्छता मैंने बनावले रखी। आई हमने के कुछ अब
5: जी
4: देखिए मिजाज के तहत देखल जा,
5: भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मनु भाई, 6 तारीख से लेकर 8 मई के दौरान जिला में 1-2 स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चले के संभावना बाटे। हल्का जोन बाकी मध्यम बरखा भी होखे के अनुमान बाटे। अधिकतम तापमान 35-38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21-23 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बाटे। सापेक्ष आर्द्रता सवेरे 70-75% और दोपहरिया में 20-25% रहे के संभावना बाटे। पूर्वानुमान के अवधि में 15-18 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वा हवा भी चले के संभावना बाटे। आ जिला में 1-2 स्थान पर आंधी तूफान के साथ बिजली चमकी आ

0: 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चले के संभावना बाटे।
1: रनिया बहिन, हमने ये कल के देखल जाओ यदि मौसम, कल वर्षा एकदम जीरो एमएम बा।
0: अच्छा,
1: अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आ न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस आ अपेक्षिक अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता जोन बा 70% रहे के उम्मीद बा आ न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 25% रहे के उम्मीद बा। हवा के गति जोन बा 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल सकत बा। तो देखी हमनी के घड़ी भी टिक टिक करके आवाज देता कि अब समय हमनी के समाप्त हो गई। तो ये सारे कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही अमित कुमार जी, आज देखी समय हो गई चलत चलत के बेरा से। सभी लोगन के मनु भाई के तरफ से नमस्कार बा, और साथे साथे रनिया बहन लोगों के नमस्कार।
0: नमस्कार मनु भाई लोगों के, और साथे साथे सभी श्रोता लोगन के रनिया बहन का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे किसान बहनों एवं भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अमित कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म साथी संघाती से, दीपा नारायण और मनोज मिश्रा के आवाज़ में, विनय बिहारी के बोल हैं और राजेश गुप्ता का संगीत है।

दीपा नारायण और मनोज मिश्रा और श्रीजीत की आवाज़ों में अभी आपने सुना साथी संगाथी फिल्म का ये गीत। विनय बिहारी के बोल थे और राजेश गुप्ता का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है सैया से करादा मिलनवा हमार। विनय बिहारी के बोल हैं, तब्बुन और राजेश गुप्ता का संगीत है।

इंदु सोनाली और अभीक चटर्जी की आवाज़ों में अभी आपने सुना प्रेम लीला फिल्म का ये गीत, माइकल बिहारी के बोल थे और मधुकर आनंद का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए अनुराधा गुप्ता और संजीव स्नेहिया की आवाज़ों में लाल फिल्म का ये गीत, शैलेश संगम के बोल हैं, चंदन सिंह का संगीत है।

0: दहेज दानो फिल्म का भी आपने गीत सुना चंदन सी और रंजना झा की आवाजों में। गीतकार थे राजेश कुमार और संगीतकार चंदन सिंह। और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: अपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देहियों के बुलंदियन के पाख।
2: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
1: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
2: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
1: त बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700001-4242 पर।
2: जी हाँ, नंबर बा 8700001-4242।
0: अंतराल के बाद पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं। और अब लीजिए सुनिए मनोज तिवारी और प्रिया भट्टाचार्य की आवाजों में विनय बिहारी के बोल हैं और लाल सिन्हा का संगीत है, फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला।

श्रोताओं, गाने में से बहाने का शेष भाग माफ कीजिएगा। कार्यक्रम ई मनपसंद का शेष भाग हम पुनः लेकर हाजिर होंगे रात्रि 8:15 पर। फिलहाल आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी के पटना आगमन के कार्य पर आधारित रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं बिहार सरकार के नव नियुक्त मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।
1: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित बिहार सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में आज का दिन बड़ा खास रहा। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण के ठीक 22 दिन बाद आज दिनांक 7 मई 2026 को बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कैबिनेट का विस्तार किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सुबह 11 बजे आगमन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए गांधी मैदान पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के साथ साथ अन्य नेता भी उपस्थित थे। इस रोड शो के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने आम नागरिकों का अभिवादन स्वीकार किया, जबकि आम लोगों ने फूलों की बारिश कर माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया। गांधी मैदान पहुंचने पर सभी गणमान्य व्यक्तियों ने माननीय प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मंच पर बिहार के माननीय राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान, श्री गिरिराज सिंह, श्री जीतन राम मांझी और अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान और बिहार गीत से किया गया।

0: शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत माननीय राज्यपाल के मुख्य सचिव श्री गोपाल मीणा ने राज्यपाल की अनुमति से की। इस अवसर पर कुल 31 नए मंत्रियों को माननीय राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतकरण से निर्वाहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
2: न्याय करूँ
3: सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय
1: मैं दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जो विषय राज्य बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
0: माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में पांचों घटक दलों बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, हम और आरएलएम के प्रतिनिधियों को नई कैबिनेट में जगह दी गई। बीजेपी कोटे से 12, जेडीयू से 11, एलजेपी रामविलास से 4, हम से 2 तथा आरएलएम से 2 को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह की खास बात यह रही कि निशांत कुमार को पहली बार नए कैबिनेट में जगह दी गई। इस कैबिनेट में अनुभव और युवा जोश का तालमेल के साथ साथ सामाजिक समीकरणों का भी पूरा ख्याल रखा गया। इस मंत्रिमंडल में महिला सशक्तिकरण का ध्यान रखते हुए श्रीमती लेसी सिंह, श्रीमती शीला कुमारी, श्रीमती रमा निषाद तथा श्रेसी सिंह को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। शपथ ग्रहण को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। समारोह में शामिल महिला ने कहा,
4: मेरा नाम राजकुमारी देवी उर्फ किसान चाची, पद्मश्री से सम्मानित है। हमारा घर सरैया हुआ, जिला मुजफ्फरपुर हुआ। आज जब शपथ ग्रहण था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, इसमें हमको लोग बुलाए थे, हम आए थे, यहाँ पर सब कुछ देखे। लेकिन यहाँ पर हम लोग का आशा है, महिला का आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह जो अपना चलाए सरकार 20 साल, महिला को सम्मान किए, हम लोग आशा किए हुए हैं कि जो भी मुख्यमंत्री बने, जो भी मंत्री बने, महिला का सम्मान होना चाहिए। काहे कि जो बिहार में सरकार है, महिला के ऊपर है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर है, इसलिए कि महिला को घर में भी सम्मान नहीं मिला। लेकिन एक हम लोग के लिए भगवान के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो हम लोग को सम्मानित किए और महिला को सम्मान मिला। सबसे पहले हर जाति को आरक्षण दिए, हर जाति को सीट का बंटवारा बने, हर हालत में महिला सब सुखी संपन्न है। तो जो मुख्यमंत्री का पद लिए हैं, उनको महिला को सम्मान देना है, तभी बिहार में जदयू बीजेपी का सरकार बनेगा। महिला को सम्मान हमेशा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आए, वो भी महिला को सम्मानित करते हैं। सबसे बड़ा किसान को वो सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं। हर चीज, हर वृद्धा पेंशन, हर माने जो भी प्रधानमंत्री का काम है भारत सरकार का, सो बहुत।
5: कुमकुम भारद्वाज, मैं लखीसराय जिले से आती हूँ और आज का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, यह कितना प्रशंसनीय है यह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये बिहार के लिए और बिहार के डेवलपमेंट मॉडल को लेकर के जो मैं देखती हूँ हमेशा

0: से भाजपा की सरकार जो बिल्कुल अपने बातों को से ही नहीं अपने कार्यों के माध्यम से हमेशा बुलंद करती रही है, वह यह मंत्रिमंडल में देखने को मिला है। और यह पूरी आशा है क्योंकि आज नीतीश जी को भी स्टेज पे प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से मतलब उठा करके दिखाया कि हम भारत का विकास किस तरीके से करें, बिहार का विकास किस तरह से करेंगे। और मैं मानती हूँ कि भारत के विकास के लिए जो भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 2047 का विकास का मॉडल रखा है विकसित देश का, विकसित भारत का, उसमें बिहार का जो व्हील है, बिहार की जो का जो पहिया है, उसका चलना और बहुत तेज रफ्तार से चलना ये बहुत जरूरी है। और वह हमें यह पूरी मतलब उम्मीद सिर्फ मैं नहीं कहूंगी, मुझे मैं एकदम विश्वास है हमें इस देश के प्रधानमंत्री पे और इस राज्य की जो व्यवस्था बनने जा रही है नई सरकार में जो गठन हुआ है, यह उस मॉडल को काफी आगे बढ़ाएगा।
1: शपथ ग्रहण समारोह में शामिल व्यक्ति ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा,
2: बहुत आनंदित हैं, आह्लादित हैं, दरभंगा से आए हैं हम लोग और आज का दिन ऐतिहासिक दिन हुआ गया, हम लोग बहुत आनंदित और खुश हैं, तो पूरे बिहार की जनता भी बहुत खुश है। आज
3: क्या लग रहा है इस बार ये नई कैबिनेट का विस्तार जो
2: बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ेगी यह सरकार, डबल इंजन की सरकार, बिहार की चलेगी बहुत तेजी से रफ्तार और बहुत बेहतरीन काम करेगी और लोगों की आकांक्षा भी पूरा करेगी।
3: सुबह कब से आप लोग यहाँ पहुँचे?
2: नहीं, हम लोग यहाँ आ गए थे आठ बजे।
3: किस तरह से आप देख रहे हैं माहौल कैसे था?
2: माहौल तो एकदम, रास्ते में भी आए हैं लोग झूमते हुए आए हैं, यहाँ भी आप नजारा देखोगे सब बहुत खुशी और आनंदित महसूस।
4: मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं यही सिपारा लोकल पटना से हूँ, देखने के लिए ही मैं यहाँ आया था सुबह में। बट सुबह 10 बजे के आसपास मेरे घर के पास मीठापुर जो बस स्टैंड है वहीं पे पहले जाम लग गया, काफी टाइम लग गया वहीं पे, करीब 1.5 घंटा जाम में फंसे रह गए। हालांकि नई सरकार से मुझे बहुत अपेक्षा है और उम्मीद करते हैं कि अच्छा करेंगे भी।
1: कैबिनेट विस्तार समारोह में शामिल छपरा के माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा,
5: बहुत बहुत बधाई, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज बिहार के सरकार का 32 मंत्रियों का विस्तार हुआ और जिस प्रकार से शपथ हुआ, जो चेहरा दिखा वो सब नौजवानों का था, अनुभवियों का था और बिहार एक प्रगति के रास्ते पर है ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को बहुत बहुत मैं राजीव प्रताप रूढ़ी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबको बधाई देता हूँ।
1: इस अवसर पर वाल्मीकि नगर के माननीय सांसद सुनील कुमार ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा,
6: पूर्व में भी जो सरकार चल रही है वो भी अच्छा काम की है और जो विस्तार आज हुआ है जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री जी और राजनाथ सिंह जी आए थे, सभी लोग को शुभकामना है और बधाई है कि अच्छे ढंग से जो बिहार जो है 20 साल के कार्यकाल में नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चली उसमें समाज के हर तबके के विकास के लिए काम की गई और उन्हीं के मार्गदर्शन में यह सरकार भी चल रही है। आशा और विश्वास है कि जो है अब की बार जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें सभी मंत्रीगण अपने अपने विभाग का अच्छे से निर्वहन करेंगे और जनता के जो वाजिब तरीका है विकास कैसे होगा उस पर अपना अमल काम करते रहेंगे।
1: मंत्रिमंडल के मुख्य चेहरों में श्री रामकृपाल यादव, श्री नीतीश मिश्रा, श्री विजय कुमार सिन्हा, मोहम्मद जमा खान, श्री नंद किशोर राम, श्री मदन सहनी, श्री दिलीप जायसवाल, श्री सुनील कुमार, श्री रत्नेश सदा, श्री श्रवण कुमार और श्री अशोक चौधरी के साथ अन्य शामिल हैं।

इसी के साथ बिहार सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट समाप्त हुई। तकनीकी सहयोग अजित कुमार घोष और गौरव कुमार, संकलन सहयोग रुपेश कुमार रूप एवं हरेंद्र आजाद, स्वर सहयोग संजय किशोर और प्रस्तुति विभूति शंकर एवं

अभी आप सुन रहे थे पटना से प्रसारित माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी के पटना के आगमन पर कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम ई मनपसंद का शेष भाग।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं फिल्म एक दूजे के लिए, लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाज़ में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और आनंद बख्शी के बोल हैं। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है आप हैं छोटी बलियां फिल्म सिटी मुंबई से, अहमद भाई फुलवाले, दुखनी सदाफारजू, जूही इकबाल फुलवाले, इमरान अहमद फुलवाले, कपास हेडा बॉर्डर नई दिल्ली से आप हैं, आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया मंतसा, आशू अहमद फुलवाले, लखमीनिया जिला बेगूसराय से सहिमी अहमद राइन और आप हैं अखलाक अहमद फुलवाले। और आप हमारे श्रोता हैं नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस डाक बाबू, बेगम इसरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कुवात बिहार से आप हैं शेख जफर हसन, नरगिस जफर, कलेर बिहार से आप हमारे श्रोता हैं मोहम्मद आसिफ खान और निकाहत परवीन।

एक दूजे के लिए फिल्म का भी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाज़ों में आनंद बख्शी साहब के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार एवं साथियों की आवाज़ों में मोहब्बत फिल्म का ये गीत, इंदिवर के बोल हैं और बप्पी लहरी का संगीत है। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है, आप हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया।

और आप हमारे श्रोता हैं पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से। राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश।

और आप हमारे श्रोता हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसपुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरून निशा मोहम्मद नसीम पलक के लुबना और यश मंसूरी। और आप हमारे श्रोता हैं नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई मतीन भाई शेख चंद फारूक के फुलवाले आप हैं सैयद खलील और मुबीन भाई और यासीन।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना मोहब्बत फिल्म का ये गीत, इंदिवर के बोल थे और बप्पी लहरी का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए रोटी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है आप हैं गाँव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। और आप हमारे श्रोता हैं दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमनिया जिला गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गम्हरिया जमशेदपुर से आप हैं विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। आप हमारे श्रोता हैं जमनिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिम्पल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल।

और आप हमारे श्रोता हैं मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, उस्मान अली अंसारी, आसिफ अली अंसारी, आमना खातून अंसारी, सनबर परवीन अंसारी, सुमैला परवीन अंसारी और प्यारी बेटी गुड़िया रिया। सऊदी अरबिया से हमारे श्रोता हैं अशरफ अली अंसारी, शारिक अली अंसारी और साथ में रह रहे हैं इनके सभी दोस्त।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अंतराल के बाद पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं दोस्ताना फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी साहब के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है, आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से। दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा

और आप हमारे श्रोता हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। और आप हमारे श्रोता हैं ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांत कठेरिया और कमलेश कठेरिया। और आप हमारे श्रोता हैं टाउनशिप से।

आठ भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, नटखट आसमा श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर। और आप हमारे श्रोता हैं ताजपुर, मोरवा, समस्तीपुर, बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती और आकर्षण और जयश्री।

हम ई मनपसंद अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। कुछ ही देर में 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा, उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर आज सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था।
1: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
2: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
0: इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
3: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
3: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ साल में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है।

0: ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा यह नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
1: कनाडा में खालिस्तानी समूहों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि चरमपंथी और अलगाववादियों का कनाडा की जमीन को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करना चिंता का विषय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। ये सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि राज्य शनिवार को शपथ ग्रहण के साथ अपनी अगली सरकार के गठन की ओर अग्रसर है। एक रिपोर्ट।
4: बंगाल में भारी बहुमत से जीत के बाद बीजेपी नए सरकार की शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देना चाहती है। अगले शनिवार रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बंगाल की पहली बीजेपी सरकार की शपथ होगी। दो दिन पहले से ही ब्रिगेड में मंच और सुरक्षा तैयारियों का काम शुरू हो गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय नेता मौजूद रह सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित विभिन्न राज्य की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वेत्रिकड़गम टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिन भर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। एक रिपोर्ट।
5: दिन की शुरुआत टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर की बैठक से हुई। बैठक में नई सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल एल सुंदरेशन की कानूनी राय लेने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया गया। सिंगो तैयान और सीटीआर निर्मल कुमार जैसे टीवी के नेताओं ने सीपीआई और सीपीआईएम के नेताओं से उनकी पार्टियों से समर्थन मांगा। इस बीच एआईएडीएमके भी आज रात पुदुचेरी में पार्टी के महासचिव एडप्पाडी पलानीसामी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक कर रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया है कि आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हुई विधायक दल की बैठक में एआईसीसी अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
6: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने नव निर्वाचित विधायकों से नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि ये पर्यवेक्षक

0: अपनी रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इस बार निर्वाचित विधायकों में वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला सहित वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल वर्तमान में सांसद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने आज संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के विभिन्न घटक दलों के साथ भी चर्चा की। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधायक दल के नेता और अगले मुख्यमंत्री के बारे में अंतिम निर्णय इस सप्ताह के अंत तक लिया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल के चेन्नई से लौटने के बाद ही होने की संभावना है। राज्यपाल वर्तमान में तमिलनाडु से संबंधित आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति पल्लू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए आज गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: बैंकिंग के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत को टीम का सामना चीन से होगा। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला बारिश के कारण रुका हुआ है। मैच रुकने तक लखनऊ ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। इससे पहले बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय

कर्नाटक और रायल सीमा में कल तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरलम में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा, उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की, तमिलनाडु और केरलम में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9 बज चुके हैं। अब लीजिए सुनिए भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा।

इसी के साथ ही गजलों, माफ कीजिएगा, भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। अब लीजिए सुनिए गजलों का कार्यक्रम महफिल।

0: मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: और अब लीजिए सुनिए मेहंदी हसन की आवाज में ये गजल।

0: मेहंदी हसन के गाए इसी गीत के साथ ही महफिल कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार।
1: आप हैं विविध भारती के संग। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जिसके कुछ देशभक्ति गीत हमारे जहन में हर वक्त गूंजते हैं।

जैसा कि हमने आपसे कहा, आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं प्रेम धवन को। प्रेम धवन की शख्सियत के कई पहलू रहे हैं। वो गीतकार रहे, संगीतकार रहे, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ फिल्मों की कोरियोग्राफी भी की है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी जिंदगी की कहानी। इसके लिए हमें चलना होगा साल 1923 में अंबाला शहर में। अंबाला शहर में थे एक जेल सुपरिंटेंडेंट जिनके घर 13 जून 1923 को एक बालक का जन्म हुआ। ये बालक आगे चलकर प्रेम धवन के नाम से विख्यात हुआ। प्रेम धवन के पिता जेल सुपरिंटेंडेंट थे और कुछ ही दिनों में उनका तबादला हो जाया करता था, इसलिए प्रेम का बचपन कई शहरों में बीता और शहर शहर भटकते हुए परिवार का कारवां आ पहुंचा लाहौर। तब तक प्रेम धवन कॉलेज जाने की उम्र में पहुंच चुके थे। मशहूर लाहौर कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। यहाँ उनके सहपाठी थे इंद्र कुमार गुजराल और साहिर लुधियानवी। आई के गुजराल आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने और साहिर लुधियानवी एक जाने माने गीतकार। ऐसे जागरूक साथियों का साथ मिला और प्रेम धवन का रुझान युवा राजनीति में हो गया। उन्होंने उस जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी की लड़ाई में जुट गए। ये वो दौर था जब आजादी की लड़ाई के लिए चेतना जगाने का काम नौजवान करते थे। प्रेम धवन पंजाब में इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के बैनर तले प्रेम धवन अपने साथियों के साथ गांव-गांव, शहर-शहर जाते नाटक और गीत संगीत के जरिए आजादी के लिए चेतना जगाते, लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने की प्रेरणा देते और इस तरह एक दिन भारत आजाद हो गया।

प्रेम धवन की दिलचस्पी इप्टा के हर पहलू में थी, संगीत में, गीत में, यहां तक कि नृत्य में भी। उन्होंने पंडित रविशंकर से शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। उन दिनों में वे पंजाबी में गीत गाया कर

करते थे। यही वो दौर था जब रविशंकर के भाई मशहूर नर्तक उदय शंकर के साथ ही शांति वर्धन से प्रेम धवन ने शास्त्रीय नृत्य की तालीम ली। उन दिनों में वो डांस ट्रूप का हिस्सा हुआ करते थे। आगे चलकर प्रेम धवन मुंबई आ गए। उन दिनों के मशहूर संगीतकार खुर्शीद अनवर ने प्रेम धवन को अपना सहायक बना लिया। साल 1946 में प्रेम धवन की शुरुआत हुई बतौर गीतकार फिल्म पगडंडी के जरिए। सन 1948 में प्रेम धवन ने खेमचंद प्रकाश के लिए मशहूर फिल्म जिद्दी के गाने लिखे। आपको बता दें, जिद्दी वही फिल्म है जिसमें किशोर कुमार ने अपना पहला पार्श्व गीत गाया। हालांकि वो गाना जज्बी ने लिखा था, मरने की दुआएं क्यों मांगू, लेकिन इसी फिल्म में प्रेम धवन का लिखा लता मंगेशकर का गाया राग छाया नट पर आधारित ये गाना बेहद लोकप्रिय हुआ।

सलील चौधरी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है प्रेम धवन ने। सन 1955 में आई फिल्म तांगे वाली और इसका ये तांगा गीत।

सलील चौधरी के लिए प्रेम धवन ने फिल्म आवाज के गाने भी लिखे। अब बात करते हैं प्रेम धवन और हिंदी फिल्म संगीत जगत के बेहद वरिष्ठ संगीतकार अनिल बिस्वास की जोड़ी की। सन 1951 फिल्म तराना, तलत महमूद का ये गाना।

सन 1953 में अनिल बिस्वास ने कई रागों पर आधारित एक गाना बनाया जो रागावली कहलाता है। फिल्म हमदर्द का ये गीत मन्ना डे ने गाया। इसके बोल प्रेम धवन के थे।

प्रेम धवन और रवि ने हिंदी फिल्म संगीत जगत के कुछ बेमिसाल गाने दिए हैं। रवि की पहली कामयाब फिल्म 10 लाख का ये गाना।

प्रेम धवन की शख्सियत के कई पहलुओं में से एक था उनका संगीतकार वाला पहलू। हालांकि उन्होंने कई फिल्मों में संगीत नहीं दिया, गिनी चुनी फिल्में हैं उनके संगीत निर्देशन में। प्रेम धवन के दोस्त और मशहूर अभिनेता और निर्माता निर्देशक मनोज कुमार ने जिद करके फिल्म शहीद के संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी प्रेम धवन को सौंपी।

0: ये सन 1965 की बात है। इस फिल्म के निर्माण के दौरान प्रेम धवन ने शहीद भगत सिंह की मां से मुलाकात की। ये उनके लिए बहुत जज्बाती अनुभव था और उन्होंने इस यादगार मुलाकात को एक गाने में ढाल दिया और वो गाना है मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गाना।
1: तू न रोना के तू है भगत सिंह की माँ।

0: फिल्म शहीद के बाद प्रेम धवन ने पवित्र पापी फिल्म में संगीत दिया। इस फिल्म के ज्यादातर गाने किशोर कुमार की आवाज में थे।
1: तेरी दुनिया से होके मजबूर चला

प्रेम धवन की संगीत निर्देशन वाली कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनके हीरो रहे हैं तारा सिंह। इन फिल्मों के नाम हैं वीर अभिमन्यु, किसान और भगवान, मेरा देश मेरा धर्म, भारत के शहीद। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रेम धवन ने नृत्य की तालीम भी ली थी और फिल्म संसार में जब जब मौका आया उन्होंने कोरियोग्राफी की। सन 1949 में फिल्म सिंगार के लिए उन्होंने नर्तकी कुक्कू को कोरियोग्राफ किया था। फिल्म नया दौर के इस गाने का नृत्य निर्देशन प्रेम धवन का ही था।

0: इसके अलावा प्रेम धवन ने आरजू, धूल का फूल, वक्त और गूंज उठी शहनाई जैसी फिल्मों के लिए नृत्य निर्देशन किया। जब जब मौका लगता प्रेम धवन फौजियों के पास जरूर जाते। जब अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त ने अजंता आर्ट्स के जरिए फिल्मी सितारों के एक ट्रूप को फौजियों के पास पहुंचाया और उनके लिए कुछ कार्यक्रम किए, तब लद्दाख और नाथुला की यात्रा में प्रेम धवन उनके साथ थे। अपने बैनर त्रिवेणी पिक्चर्स के जरिए प्रेम धवन ने सामाजिक मुद्दों पर कई डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण किया। फिल्म संसार में योगदान के लिए सन 1970 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। एक बड़ी ही दिलचस्प घटना है। अभिनेत्री सुरैया अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। फिल्म का नाम था मोती महल और हुआ यूं कि स्टूडियो आते वक्त उनकी गाड़ी बिगड़ गई और वो शूटिंग के लिए बेहद लेट हो गई। जब वो शूटिंग के लिए फ्लोर पर पहुंची और उन्होंने ये किस्सा सुनाया कि उनकी गाड़ी बिगड़ गई थी, इस वजह से वो लेट आई। उफ, कभी ना बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में। बस प्रेम धवन ने इस घटना को गाने में ढाल दिया और ये गाना सुरैया ने ही गाया।
1: कभी ना बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, कभी ना बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, खड़े रहो बस बेबस होकर रस्ते में, कभी ना बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में।
0: आपको बता दें कि 7 मई सन 2001 को प्रेम धवन ने इस असार संसार से अलविदा कह दिया।

0: प्रेम धवन एक बेमिसाल कलाकार, एक नायाब गीतकार, एक अद्भुत संगीतकार और प्रतिभाशाली कोरियोग्राफर, बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी प्रेम धवन को हमारा नमन। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम का पहला गीत राज बर्मन की आवाज़ में रश्मि विरा

केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम का पहला गीत राज बर्मन की आवाज़ में रश्मि विराग के बोल हैं और जीत गांगुली का संगीत है और एल्बम का नाम है जी म्यूजिक ओरिजिनल्स।

राज बर्मन की आवाज़ में अभी आपने सुना जी म्यूजिक ओरिजिनल्स एल्बम का ये गीत। रश्मि विराग के बोल थे और जीत गांगुली का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए नेहा कक्कड़ की आवाज़ में जानी वे एल्बम का ये गीत। जानी के बोल हैं और बी प्राग का संगीत है।

तुलसी कुमार और दर्शन रावल की आवाज़ में अभी आपने सुना तेरा नाम एल्बम का ये गीत। गीतकार संगीतकार थे मनन भारद्वाज। और अब लीजिए सुनिए पल्लवी गाबा की आवाज़ में एल्बम तू ही तू का ये गीत। सुरेंद्र के बोल हैं और जीतू गाबा का संगीत है। ये गीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

पल्लवी गाबा की आवाज़ में अभी आपने सुना एल्बम तू ही तू का ये गीत, सुरेंद्र के बोल थे और जीतू गाबा का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए जुबैर नौटियाल की आवाज़ में मेरी तरह एल्बम का ये गीत, कुणाल वर्मा के बोल हैं और पायल देव का संगीत है।

असित त्रिपाठी के गाए इसी गीत के साथ ही गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्र।

तराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज़ों से, फिल्म प्यासा सावन से। संतोष आनंद के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना प्यासा सावन फिल्म का ये गीत, और अब लीजिए सुनिए आशा भोसले की आवाज़ों में मेरे सनम फिल्म का ये गीत। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और ओपी नैयर का संगीत है।

0: किस तरह से पहना जा सकता है, या कई कपड़े बहुत बार पहनने के बाद भी कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, कपड़ा अभी तक चल रहा है, तो अब इसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, ये जो तरीके हैं कि पुराने कपड़े को किस तरह से एक नया लुक देना है, इसके बारे में बात।
1: बिल्कुल, तो ये ज्ञान की बातें हो जाएंगी। और गर्मी के मौसम में सड़क पर चलते हैं तो कैसा लगता है, खुली सड़क पर जब निचाड़ धूप होती है तो बहुत तकलीफ होती है ना।
0: कई बार ऐसा होता है ना कि लगा हुआ है रेड सिग्नल, लेकिन क्योंकि धूप में खड़े नहीं रहना तो सिग्नल तोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, कि यातायात के नियमों का उल्लंघन कई बार गर्मी से बचाव में भी हो जाता है, लेकिन सड़क पर चलते हुए खुद के लिए भी और जो अन्य लोग चल रहे हैं, चाहे वो वाहन में है या पैदल है, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इसलिए कुछ बातें सड़क सुरक्षा की।
1: एक और जरूरी बात है, वो कौन सी है बताइए जरा, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि गर्मियों की जब बातें इतनी सारी चल ही रही हैं, तो एक बहुत विशेष उपकरण है रेफ्रिजरेटर, जो सबके घर में है, और कई बार उसकी अगर साफ सफाई ना की जाए या कुछ सामान ऐसे रख दिया जाए जिनमें से गंध अलग तरह की आने लगती है, तो जो अन्य खाने की सामग्री रखी है उसको भी वो प्रभावित कर देता है। तो उस गंध से कैसे बचा जाए, इसके टिप्स हमारी सखियां

0: पर्यावरण की ओर ध्यान देना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी प्रजाति के वृक्ष की मातृ वृक्ष को पहचानने की उनकी क्षमता के कारण तुलसी गौड़ा को वन का विश्वकोश कहा जाता था। वृक्ष देवी के नाम से भी वे जानी जाती थी क्योंकि उन्हें वनों का बहुत गहरा ज्ञान था। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी विरासत पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा एक प्रेरणा बनी रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को भी हमारी पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रेरित करती रहेगी।
1: और बहुत से पर्यावरणीय परिवर्तन और प्रदूषण जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी मनुष्यों की गतिविधियां, जैसे जो औद्योगिकरण बहुत बढ़ रहा है या वनों की कटाई हो रही है, इसके कारण जो भी उत्पन्न होते हैं उनसे वनों को भी बहुत क्षति पहुँचती है। इन्हीं वनों के संरक्षण के प्रति उनकी जो गहरी प्रतिबद्धता थी, इस क्षति को कम करने के लिए वो सहायक हो सकती थी। और इनकी शुरुआती जीवन की अगर हम बात करें तुलसी गौड़ा की, तो इनका जन्म हुआ साल 1944 में कर्नाटक के होन्नाली गांव में। बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ और जब वो सिर्फ 2 साल की थी तभी पिता का साथ भी छूट गया। इसलिए जब वो बड़ी हो रही थी तो अपनी माँ, जो काम किया करती थी एक स्थानीय नर्सरी में दिहाड़ी मजदूर के रूप में, उनके साथ वो चली जाया करती थी। और औपचारिक शिक्षा वैसे तो इन्हें कभी नहीं मिली, ना इन्होंने स्कूल जाकर कभी सीखा, लेकिन तुलसी गौड़ा कर्नाटक वन विभाग में नर्सरी में जो भी उगाए जाने वाले बीज थे उनके देखभाल का कार्य किया करती थी। उन्होंने बीजों के संरक्षण में अपने कार्यों और वनस्पति विज्ञान को देखते हुए स्थायी पद की पेशकश के लिए जाने तक अपनी माँ के साथ नर्सरी में दिहाड़ी मजदूर के रूप में 35 सालों तक काम किया और 70 साल की उम्र पूरा होने तक, यानी कि सेवानिवृत्त होने से पहले करीब करीब 15 वर्षों तक नर्सरी में इसी स्थायी पद पर उन्होंने काम किया था।
0: और इसके अलावा नर्सरी में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भूमि के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए वन विभाग के वृक्षारोपण प्रयासों में भी योगदान दिया और प्रत्यक्ष रूप से काम किया। पौधों को रोपने के साथ साथ उन्होंने वन्य जीवों को नष्ट करने वाले शिकारियों और जंगल की आग को रोकने के लिए भी काम किया।
1: तुलसी गौड़ा ने कर्नाटक वन विभाग में रहते हुए करीब 60 सालों से भी अधिक समय तक सेवा की इन जंगलों की, इन पेड़ पौधों की। और इसमें एक सामुदायिक अभ्यारण्य, 5 बाघ अभ्यारण्य, 15 संरक्षण अभ्यारण्य और करीब 30 वन्य अभ्यारण्य शामिल हैं। और उनका उद्देश्य गांवों को प्रकृति से फिर से जोड़ देना था क्योंकि लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं ना, इसीलिए। और तुलसी गौड़ा को पर्यावरणविदों ने वन का विश्वकोश कहा, जैसा कि आपने शुरू में बताया, और वृक्ष देवी के रूप में भी वो जानी जाती रही क्योंकि उन्हें वन और पौधों का बहुत ही गहरा ज्ञान था। और वन में कहीं भी लगाए हुए पेड़ों की प्रजाति के जो मातृ वृक्ष हैं उनकी पहचान किस तरह की जाती है, इसमें उनको एक अद्भुत क्षमता हासिल थी। तुलसी गौड़ा बीज इकट्ठा करने और उन्हें पहचानने में भी विशेषज्ञ थी। सभी तरह के जो पौधे होते थे उनकी प्रजातियों को फिर से जीवित किस तरह से करना है, दोबारा उनको विकसित करने के लिए मातृ वृक्ष से बीज किस तरह निकालना है, ये एक बहुत कठिन प्रक्रिया होती है, लेकिन तुलसी गौड़ा इसमें सक्षम थी।
0: और इसके अलावा तुलसी गौड़ा खुद भी कभी किसी को ये नहीं समझा सकी कि उन्होंने जंगल के बारे में इतना ज्ञान कैसे पाया, लेकिन वो ये जरूर कहती थी, ऐसा लगता है जैसे वो जंगल की भाषा बोल सकती हैं।

0: साथ बीज खोजने और उनकी देखभाल करने के बारे में सिखाना जारी रखा।
1: तुलसी गौड़ा ने अपने गांव की महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया और जब कुछ कहा सुनी के बाद कई ऐसे भी मामले होते हैं कि कुछ मार पिटाई भी हो जाती है, कुछ झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे मामलों में भी वो आगे आईं और किसी निरपराध को उन्होंने कभी सजा नहीं होने दी और पुरस्कार और सम्मान भी जब कोई ऐसा काम करता है तो वो भी उन्हें दिए जाते हैं। उन्हें क्या क्या मिला इसके बारे में बताते हैं। साल 1986 में तुलसी गौड़ा को इंदिरा प्रियदर्शिनी वर्ष मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया जिसे IPVM पुरस्कार के नाम से भी हम जानते हैं और ये पुरस्कार वनीकरण और बंजर भूमि विकास के योगदान के लिए किसी व्यक्ति या किसी संस्थान को दिया जाता है। इसके बाद साल 1999 में तुलसी गौड़ा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ जो कर्नाटक राज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और साल 2020 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च सम्मान है। और ये सम्मान मिलने पर भी तुलसी गौड़ा का कहना ये था कि पद्मश्री प्राप्त करके उन्हें खुशी तो है लेकिन फिर भी जंगल और पेड़ों को वो ज्यादा महत्व देती हैं
0: और उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी समुदायों को शामिल किया जो आसपास के समुदाय थे। इससे सामूहिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित हुई लोगों में और लोग खुद भी पहल करने के लिए आगे आए। उनके प्रयास से कर्नाटक के बहुत सारे बंजर क्षेत्रों को पुनर्जीवित करके फिर से पर्यावरण के संतुलन को बहाल किया गया और उन्होंने आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जंगलों और उनके संसाधनों के संरक्षण के महत्व के बारे में भी शिक्षित किया जिससे देश और समाज का कल्याण हो सकता है।
1: और फिर आया 16 दिसंबर 2024 का दिन जब उनकी उम्र करीब 86 साल की थी। इस समय वो इस संसार को छोड़कर, हम सभी को छोड़कर चली गई और तुलसी गौड़ा के

इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी गाड़ी में कितने ज़्यादा तेज़ आवाज़ की हमें ज़रूरत है, हम उतना ही। कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए या कहते हैं कि शो ऑफ करने के लिए, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इतनी तेज़ आवाज़ वाला हॉर्न अपनी मोटरसाइकिल में या अपनी गाड़ी में लगा लेते हैं, और इससे कई बार लगता है कि जैसे कान के पर्दे कहीं फट ना जाए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सड़क सुरक्षा के बारे में, और इसका मतलब होता है कि सड़क पर होने वाली जो भी दुर्घटनाएं हैं उसके खतरे को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। सड़क पर होने वाली जो भी दुर्घटनाएं हैं उनको कम करने के लिए यातायात के कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों का पालन करना ना सिर्फ खुद की सुरक्षा के लिए बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग, गति सीमा का पालन करना, नशे में गाड़ी ना चलाना, रेड लाइट का सम्मान करना, ये सारे नियम ऐसे हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं और जीवन रक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। और आज के समय में सड़कों पर वाहनों की संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक से हर कोई बदहाल

0: भी हुई है तो उपनगर है बोरीवली, लेकिन मरीन लाइंस और दादर इस तरह इस इन इलाकों में
1: जी
0: लेन का एक रूल है, अगर लेन बदला तो आपको फाइन भरना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप बाई तरफ ही चलें, वो ट्रैफिक रूल के आपको ट्रैफिक रूल समझ लेना चाहिए मुंबई की सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए। और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है, वरना उसके लिए भी फाइन हो जाता है। हम सब एक आध बार सीट बेल्ट के लिए कार में बैठकर फाइन भर चुके हैं, हमें लगता है।
1: कई बार लोग कहते हैं ना कि कुछ लड़के खासतौर पर कहते हैं कि हीरोपंती में गाड़ी चलाने के लिए वो हेलमेट नहीं पहनते, सिर्फ जब उनको ट्रैफिक सिग्नल पर से निकलना होता है कि सिग्नल आने वाला है, कहीं कोई ट्रैफिक पुलिस में ना हो तो उनसे बचने के लिए वो हेलमेट पहनते हैं। लेकिन आपको हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि
0: अपनी सुरक्षा
1: के लिए पहनना है, इस बात का ध्यान रखना है। और वाहन चलाते समय निर्धारित जो गति सीमा है उसका पालन करना ज़रूरी है, क्योंकि तेज़ गति जो है वो कई बार दुर्घटना का कारण बन जाती है। इसी तरह से ट्रैफिक के जो भी सिग्नल हैं उनका पालन करें। रेड लाइट का मतलब है कि आपको थोड़ी देर रुकना है, पीली बत्ती है कि आप तैयार हो जाएं, हरी बत्ती का मतलब है कि आप आगे बढ़िए। इसी तरह से मादक पदार्थों का सेवन करने के बाद ड्राइविंग ना करें, और ये कानूनन अपराध भी है। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बात कभी ना करें।
0: चंचल जी,
1: जी
0: यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि मोबाइल फ़ोन पर बात करते समय वाहन न चलाएं। ये कहना तो बड़ा आसान है लेकिन कोई मानता नहीं है। अब तो ईयरप्लग लगा के कार में तो आराम से लोग बातें करते हुए जाते हैं, अब तो कार में ये सुविधा भी है कि आप फ़ोन करो और आपका स्पीकर चल जाता है तो स्पीकर पे बात करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ख़तरनाक है। और जो मोबाइल बाइक पर हेलमेट के अंदर ईयरप्लग लगा के लोग आराम से बात करते हुए जाते हैं, जब ये ईयरप्लग नया नया आया था बाजार में तो कई लोगों को हमने देखा कि ये पागल है क्या, बंदा अपना बाइक पे चला जा रहा है और बातें करते हुए जा रहा है अपने आप से। तो बाद में पता चला कि ये सुविधा भी है कि आप आराम से बाइक चलाते रहो और बातें करते रहो, ये बहुत ख़तरनाक होता है। कहाँ पर आपका आपसे बात करने वाला कोई ऐसी बात कर रहा है कि आपका ध्यान भटक जाए,
1: बिल्कुल सही,
0: वो बहुत ख़तरनाक होता है।
1: इसी तरह से जो वाहन की लाइट्स होती हैं उनका भी सही उपयोग ज़रूरी होता है। कई बार हमें लेफ्ट या राइट जब लेना होता है, अपनी गाड़ी को टर्न करना होता है, मोड़ लेना होता है, उस वक्त के लिए कुछ बत्तियाँ हमारी गाड़ी में निर्धारित होती हैं, तो कई बार उनका लोग प्रयोग किए बिना ही आपने अगर सिग्नल पे से आपने टर्न ले लिया तो जो पीछे वाले जो लोग हैं जो अपने वाहन पर हैं उनके लिए चीज़ ख़तरा बन सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ज़ेबरा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई जाती है, इसीलिए जब भी ट्रैफिक रुकता है तो ज़ेबरा क्रॉसिंग पर जो लोग चल रहे हैं उन्हें रास्ता ज़रूर दें, और अगले वाहन से एक उचित दूरी ज़रूर बनाकर रखें ताकि दुर्घटना को टाला जा सके। दूसरे वाहनों को अगर दाईं ओर से ओवरटेक करने की नौबत आती है तो बड़ा सावधानीपूर्वक करना है ताकि आप भी सुरक्षित हों और जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हैं उनको भी कोई नुकसान ना हो। ज्वलनशील जो भी पदार्थ होते हैं उनको वाहन में ना लेकर जाएं। वाहनों का समय समय पर उचित रखरखाव जो है या प्रदूषण की जांच है ये भी करवाना ज़रूरी है। ये सड़क सुरक्षा का नियम नहीं है लेकिन ये आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने वाहन को उसी सड़क पर,
0: वरना धुआं उगलता हुआ वाहन आपके लिए नुकसानदेह है और सड़क पर जो चल रहे यात्री उनके लिए भी नुकसानदेह।
1: सड़क सुरक्षा का महत्व खुद के लिए भी और दूसरों के जीवन रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए यातायात के जो भी नियम हैं उनका पालन अगर करेंगे तो दुर्घटना या अकाल मृत्यु दोनों से बच सकते हैं, और ट्रैफिक जाम को भी हम कम कर सकते हैं, आवागमन तेज़ हो सकता है इससे। अगर हम इन नियमों का हम उल्लंघन करते हैं तो जुर्माना सज़ा कुछ भी हो सकता है। सिर्फ इनसे बचने के लिए नहीं अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी आप करिए। और कई बार तो हमें कहना चाहिए कि छोटे बच्चे जब, क्योंकि कई बार छोटे बच्चों को भी हम वाहन हाथ में दे देते हैं तो इन चीज़ों के बारे में उन्हें समझ हो। पहली बात उन्हें वाहन देना नहीं हाथ में, लेकिन बच्चे जब बड़े होकर वाहन चलाने लगे,
0: 18 साल से कम उम्र के बच्चों को
1: तो
0: वाहन देना है नीचे कानूनन अपराध है। और देखिए सड़क सुरक्षा के बहुत सारे नियम हैं, बच्चों को सड़क पार करने

0: के विषय पर मैं यही कहना चाहूँगा कि घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। हेलमेट
1: बिल्कुल
0: पहनना बोझ नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। आज की युवा पीढ़ी को रफ्तार से ज़्यादा अपनी और दूसरों की ज़िंदगी की कीमत समझनी चाहिए। याद रखें, सड़क पर आपकी समझदारी ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा है। एक अन्य संदेश में हमारे एक साथी ने लिखा है कि बेहतर सड़क सुरक्षा बेहतर जीवन सुरक्षा। जीवन को बचाना है तो नियमों का पालन करना है, सड़क पर चलना है तो नियमों को जानना है। यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। और क्यों ना ममता जी, एक गाना सुन लिया जाए।
1: गाने से पहले एक छोटी सी टिप्पणी है जो श्रोताओं तक पहुंचा दें। हमारे एक सुधीर श्रोता हैं जो नियमित रूप से विविध भारती सुनते हैं। इन्होंने लिखा है कि मोबाइल पर बात करते या ईयरफोन पर गाना सुनते हुए सड़क पार करने की वजह से कई बार लोगों की जान चली जाती है और ट्रेन से भी दुर्घटना होती है। कई बार लोग मोबाइल पर बात करते हुए ब्रिज का प्रयोग नहीं करते हैं और रेलवे क्रॉसिंग से क्रॉस करते हैं, तो इस वजह से भी कई बार दुर्घटनाएं घटती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, हमने वो बातें बताई हैं हालांकि, तो फिर भी इनका कमेंट हम शामिल कर रहे हैं। लिखा है इन्होंने कि सड़क सुरक्षा का अर्थ है सड़क का उपयोग करते समय दुर्घटनाओं और चोटों से बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन करना, हेलमेट सीट बेल्ट पहनना, गति सीमा का पालन, नशा न करना, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग, ट्रैफिक सिग्नलों का सम्मान करना इसमें शामिल है। कई बार देखा है कि लोग देखते हैं ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो चलो सिग्नल पार कर जाओ। तो हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ जुमला इस्तेमाल करते हैं कि अगर मान लो ट्रैफिक पुलिस ने नहीं देखा,

0: सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन ये सच है कि हम उसे उतना महत्व नहीं देते। इस विषय पर हमें बच्चों को स्कूल और घर से ही शिक्षा के एक रूप में देना चाहिए। आजकल पढ़े लिखे नौजवान, खासतौर पर नवयुवतियाँ भी फैशन के चक्कर में बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चलाते देखे जाते हैं, उनका चालान भी होता है।
1: और नवयुवतियों की जब बात हुई है तो नवयुवतियाँ भी कई बार फैशन में, वो सिर्फ जिस तरह का हेलमेट पहनते हैं वो सिर्फ एक टोपी जैसा होता है जिसमें सुरक्षा का कोई नामो निशान नहीं होता। ये सिर्फ आपको हम बार बार बता रहे हैं कि चालान से बचने के लिए ही बल्कि अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखने के लिए पहन

0: अकेले बाईं तरफ से दाहिनी तरफ जाने लगी तो मैंने मना किया। इस पर उसने कहा कि नहीं, दाहिने से ही चलो, कम से कम उधर से आते हुए वाहन दिखाई तो देते हैं, गाड़ी आ रही है तो हम पीछे हो सकते हैं। तब से मैं भी कई बार इस तरीके को अपनाने लगी हूँ।
1: लेकिन बस सजग रहना बहुत ज़रूरी है कि आप, पता चला मोबाइल देखते देखते चल रहे हो, सामने से कोई वाहन चला रहा तेज स्पीड में, तो आपका बैलेंस तो बिगड़ेगा ही और जान को बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। तो ये आपकी सजगता पर डिपेंड करता है। मोबाइल देखते हुए, फ़ोन पर बात करते हुए लोग चले जा रहे होते हैं। आजकल ये जो मोबाइल फ़ोन है वो सब बहुत सारी मुसीबत की जड़ हो गई है।
0: हाँ, लेकिन अगर ये मोबाइल फ़ोन आप कमेंट लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छा, हम कमेंट पढ़कर सुनाते हैं। अगला जो हमारा विषय है जिस पर हमें बात करनी थी, यानी कि पुराने कपड़े जिन्हें आपने बहुत पहन लिया लेकिन अभी वो अच्छी अवस्था में है, आपको उनको कोई नया रीयूज़ करना है तो किस तरह करेंगे, इसके बारे में जो कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। इस पर एक कमेंट बड़ा अच्छा आया है कि पुराने कपड़ों को थोड़ी मेहनत के साथ नया रूप दिया जा सकता है। पुराने सूट, साड़ी या जीन्स को नया डिज़ाइन देकर फैशनेबल बनाया जा सकता है। उन पर कढ़ाई, लेस, बटन, पैचवर्क, रंग बिरंगे कपड़ों को जोड़कर आकर्षक लुक दिया जा सकता है। पुराने दुपट्टे से स्टोल, कुशन कवर या बैग भी बनाए जा सकते हैं। पुरानी पैंट के थैले जो कि सामान लाने के लिए बहुत काम आते हैं वो बनाए जा सकते हैं। और ये बनाते हुए हमने अपनी मम्मी को बहुत देखा है। इस तरह पुराने कपड़ों को नया आकार देने से न केवल बचत होती है बल्कि रचनात्मकता भी निखरती है। तो कमेंट्स बहुत सारे हैं, पढ़ेंगे, पहले गीत सुन लेते हैं।
1: सुनते

कपड़ों की बहुत सारी चीजें तैयार।

0: सुंदर डिजाइनदार बना दिए जाते थे, झालरदार झालर बहुत सुंदर लगता था।
1: कई बार अलमारियां जो घर में होती थी, जैसे अब दरवाजे वाली अलमारियां होती हैं, जब पहले नहीं होते थे ऐसे आले होते थे, खुले होते थे, तो उन पर भी पर्दा लगाने के लिए जो घर के पुराने कपड़े हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था।
0: और एक बात और, जो बड़ा सा रेडियो हुआ करता था, टेबल पर एक परिवार के सदस्य की तरह बैठा रहता था मर्फी वाला रेडियो, तो उसके लिए भी कवर बनाया जाता था और वो बाकायदा डिजाइनदार कवर होता था कि वो स्पीकर दिखाई पड़े और कवर से पूरा रेडियो ढका रहे ताकि उसमें डस्ट ना जाए।
1: और कई बार होता है ना कि कोई बड़े चाव से हमने साड़ी खरीदी, कुर्ता खरीदा या कोई भी जीन्स खरीदी, उस पर कुछ ऐसी जगह पे वो अटक गया जिससे हर चीज की खरोंच लग गई या कुछ फट गया वो उस जगह से, तो हमें लगता है कि अब दोबारा नहीं पहनेंगे, मन में एक खटास सी आ जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद अलमारी में जब हम फिर से उसी कपड़े को देखते हैं तो मन करता है कि चलो कुछ नया करके इसको पहन लिया जाए। तो इस तरह से जो ये चीज़ें हमारी अन्य सखियों ने लिखी है ना कि पैच वर्क लगा कर, कुछ कढ़ाई बना कर या उसको कुछ काट छाट कर छोटा बड़ा करके, इस तरह से कई कपड़ों को नया लुक हम दे सकते हैं। और अगर वो दाग वहाँ पर कोई आ गया है तो उन्हें डाई करके, होते ना कई बार हमने मशीन में सारे कपड़े एक साथ में डाल दिए और कपड़े नए के नए ही दाग लगने से ख़राब हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से अलग तरह से डाई किया जाए या रंग बिरंगे जो छपाई की जाती हैं, इस तरह से उस कपड़े को हम नया लुक देकर फिर से पहन सकते हैं।
0: वैसे जो डिज़ाइनदार दुपट्टे होते हैं चुन्नी, उसके तो कुर्ते बनाए हैं आपने भी और हमने भी है ना, और तो वो बहुत सुंदर बनता है।
1: बहुत सारी जो कामकाजी महिलाएं हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता कि वो रोज़ साड़ी पहन सकें, और जब वो अपनी वार्डरोब को खोलती हैं तो लगता है कि हाय इतनी सारी साड़ियां हैं सभी पसंदीदा हैं, तो उनका
0: ये आप अपने दिल की बात कर रहे हैं
1: उनका
0: हम सभी दिल की बात है।
1: हम कई बार गाउन बना लेते हैं, कई बार उनसे प्लाजो सेट बना लेते हैं, तो और आजकल आप जाइए डिज़ाइनर्स के पास में तो वो इतने सारे उनके ये रीयूज़ बता देते हैं, और जिन कपड़ों को हम बहुत पहन चुके होते हैं तो उनसे तो आजकल इतनी तरह के बैग बनने लगे हैं, कुशन कवर बनने लगे हैं, तो ये जो रीयूज़ है ना ये बहुत ज़्यादा।
0: और बात आपने साड़ियों की निकाली है, तो साड़ियाँ तो ऐसे ललचाती हैं तो हम उसको रखे रहते हैं कि अब फला मौके पर फला साड़ी पहनेंगे, और उन साड़ियों को कई बार रखे रखे उसमें क्या कहते हैं कीड़े भी लग जाते हैं, ख़ासतौर से सिल्क की साड़ियों में। तो अगर आप टेलर के पास ले जाएं और ये कहें कि इसका एक डिज़ाइनदार जो आजकल बहुत चलन में था पिछले दिनों वेस्टर्न गाउन, जिससे कि आप कहीं बाहर फंक्शन में जाते थे पार्टी में और वो जब ख़रीदने जाते थे तो महंगे महंगे मिलते थे, तो साड़ियों का डिज़ाइनदार आप वेस्टर्न गाउन बनवा सकते हैं।
1: उनकी कलियां अलग अलग कटवा कर, तो जो ख़राब हिस्सा
0: अनारकली
1: कट जाता है तो छोटी छोटी कलियाँ कटवा कर उनकी स्कर्ट बन जाती हैं, उनके अनारकली ड्रेस बन जाते हैं, या आप स्कर्ट बना लीजिए, लहंगा बना लीजिए, ऊपर से कुछ कुर्ती या टॉप नया ले लीजिए, तो वो बहुत सारे नए लुक हैं। इस तरह से जो हमारे सुनने वाले हैं उन्होंने भी कुछ आइडियाज़ हमें दिए हैं, तो पुराने कपड़ों को नया लुक देने के लिए आप ब्लीचिंग या उनको डाई करना, कढ़ाई, पैचवर्क का उपयोग कर सकते हैं। टी शर्ट को क्रॉप टॉप में बदला जा सकता है, जीन्स को डिस्ट्रेट यानी कि फाड़कर स्टाइलिश बनाया जा सकता है, शर्ट पर बटन या लेस लगाकर उनको नया रूप दिया जा सकता है, डाई का उपयोग करके फीके पड़ चुके कपड़ों को फिर से चमकीला बनाया जा सकता है। इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे साथी ने जो हमें लिखकर बताया है कि कुछ रचनात्मक उपाय उन्होंने बताए हैं कि डाई से नया अंदाज किस तरह से दिया जा सकता है, पेंटिंग या कढ़ाई करके किसी भी शर्ट, टी शर्ट या साधारण से कुर्ते को भी फैब्रिक पेंटिंग उस पर लगा दीजिए, हाथ से कढ़ाई कर दीजिए तो एक फूल पत्ती बना देंगे तो नया डिज़ाइनर लुक आ जाता है। इसी तरह से जीन्स का कई तरीके से इस्तेमाल है, शॉर्ट्स बना सकते हैं, बैग या पाउच बना सकते हैं, कुशन या मोबाइल के स्टैंड बना सकते हैं, इस तरह से लैच और पैच वर्क कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, फिटिंग में बदलाव कर सकते हैं, कुछ एक्सेसरीज जोड़ी जा सकती हैं। और आगे उन्होंने संक्षेप में लिखा है कि इससे पैसों की बचत होती है, पर्यावरण संरक्षण होता है, रचनात्मकता का विकास होता है और यूनिक व्यक्तिगत फैशन का स्टाइल बन

0: होती हैं और जो पुलोवर होते हैं उनसे हम कार्डिगन बना सकते हैं।
1: लेकिन
0: और
1: ऊन कट जाता है अभी से, फिर उसको कैसे करें?
0: अरे मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ।
1: अच्छा
0: एक बार हुआ क्या कि ये तो उन दिनों की बात है जब मैं जयपुर में रहा करती थी और वहाँ ठंड बहुत होती है, तो पूरा तैयार हो गई, हेयरस्टाइल वगैरह अच्छे से बना लिया, बाद में आता है कि स्वेटर नहीं पहना है। अब स्वेटर पहनने में लगने लगे भाई, ऊपर से जब गले में से हम डालेंगे सर पे तो सारा हेयरस्टाइल ख़राब हो जाता है, और ये समस्या और भी लोगों को शायद होती होगी। तो उस दिन तो फिर मुझे दोबारा हेयरस्टाइल बनाना पड़ा, लेकिन इससे बचने के लिए मैंने परमानेंटली उस स्वेटर को काट दिया आगे से। और फिर वहाँ पर मम्मी ने, क्योंकि मम्मी सिलाई कढ़ाई किया करती थी, तो वहाँ पर मेरी माता जी ने एक जिप लगा दी और बड़ा सुंदर सा वो कार्डिगन बन गया। तो ये भी एक नया तरीका इस्तेमाल है। अगर आपका कोई पूरा ऐसा स्वेटर है जो आपको गले में से सर पे से डालकर पहनना पड़ता है, पूरा बंद है, और ये समस्या कभी आपके साथ भी हुई हो, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसको आगे से काट लीजिए, और वहाँ पट्टी लग जाती है तो वो उसको मोड़ दिया जाता है, तो ऊन के धागे निकलने का डर भी नहीं रहता, और जिप लगाने के बाद में उसे

0: सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। फ्रिज से जो दुर्गंध आती है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जिन्हें हम कई बार नज़रअंदाज करते हैं, फिर बैक्टीरिया फफूंद पनपने लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर इस गंध से आपको बचना है तो बेकिंग सोडा का जो घोल है उससे आप साफ कर सकते हैं। ये हमारे साथियों ने ये टिप हमें बताई है।
1: कटा हुआ नींबू का टुकड़ा रख देना चाहिए, उससे भी उसकी
0: ये
1: जो
0: जो आपने
1: स्मेल होती है
0: बताया
1: चली
0: ये
1: जाती
0: टिप भी
1: है।
0: हमारे साथियों ने हम तक लिख कर पहुँचाई है। अगर बेकिंग सोडे के घोल से आप पहुँच नहीं सकते हैं तो एक खुले बर्तन में कटोरी में आप बेकिंग सोडा रख दीजिए तो वो भी गंध को सोख लेता है। और अगर ये बदबू बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है तो सफ़ेद सिरका जो होता है उसे पानी में घोल कर एक मिश्रण तैयार कीजिए और इससे पोछा लगा